0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमबीसी रेडियो

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: This is Radio Marxist.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम अभी के साथ हैं। संध्या नमस्कार आपको, अभी
2: नमस्कार या श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। प्रथम संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स की उड़ान HM-48 से महाद्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशेल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिल्ले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। तब से मॉरिशस और सेशेल्स ने अपने सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाया। खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपिया सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। इस संगठन के सदस्य जयराज महादुआ के अनुसार इस संस्था की शुरुआत 80 सदस्यों के साथ हुई थी, जबकि आज इनके सदस्यों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इस समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना की और साथ ही साथ उनके अनुसार सीनियर सिटीजन संगठन मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गामा नाउजादिक का मानना है कि नर्सों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने डॉक्टरों को सार्वजनिक क्षेत्र

0: खासकर सरकारी अस्पतालों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के महत्व पर भी जोर दिया। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आया जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग हो गए हैं घायल। खबरों के मुताबिक ये धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह थोड़ी सी बारिश होगी खासकर पूर्व, दक्षिण तथा ऊंचे इलाके पर, जबकि दोपहर को थोड़े से बादल घेराएंगे और कुछ जगहों पर हल्की सी वर्षा होगी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर। रात के दौरान पूर्व, दक्षिण और ऊंचे ढलानों पर बरसात होने का अनुमान है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 2 मीटर वाली लहरें उठेंगी और समंदर खराब रहेगा, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 7:45 बजे जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: भोर की बेला कार्यक्रम में आपका स्वागत करते सुनिए आपका स्वागत करते हैं हम भोर की बेला कार्यक्रम में। और भोर की बेला कार्यक्रम आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए ये सुबह बहुत ही शांत रहे, आप लोगों के लिए ये सुबह बहुत ही मंगलमय रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। और सुबह की इस बेला में बस गहरी सांस लेकर जो हम आरंभ करते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, इसीलिए बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही प्रेम भाव के साथ आप इस दिन की शुरुआत कीजिएगा। आज रविवार 28 जून का ये दिन आपके लिए बहुत मंगलमय रहे, यही हमारी उम्मीद है। चलिए सुनते हैं आज का वैदिक वाणी कार्यक्रम और सुनिएगा आर्य सभा मॉरिशस के प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी से ये कार्यक्रम।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। श्रोताओं, इस वेद मंत्र के अंदर बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है। वेद का ज्ञान सब मनुष्य मात्र के लिए है, सार्वकालिक है, सब लोगों के लिए कल्याणकारी है। यदि हम जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हम वेद माता की शरण में आए। भगवान ने

सृष्टि के आदि में ये वेद का ज्ञान हम सब जीव मात्र के कल्याण के लिए प्रदान किया है। इसलिए भगवान इस अथर्ववेद के मंत्र में बड़ी अच्छी हमें उपदेश देते हैं कि स्तुता मया वरदा वेद माता, हम वेद माता की स्तुति करें। वेद माता को परमात्मा ने हम सब जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि के आदि में यह ज्ञान हमको प्रदान किया। ये वेद माता की शरण में आने से क्या होगा, कैसी है वेद माता, तो उसका वर्णन किया है, वरदा वेद माता वरों को देने वाली है, सुख को देने वाली है। हर व्यक्ति चाहता है मुझे जीवन के अंदर सुख मिले, हर व्यक्ति चाहता है मुझे शांति मिले, आनंद मिले, तो इसमें बहुत अच्छी प्रार्थना की गई है, वरदा वेद माता पावमानि द्विजानाम, हम सब मनुष्य मात्र को ये पवित्र करने वाली है, हमारे विचारों को पवित्र करने वाली है, हमारे मन के अंदर शुभ संकल्प हों, हमारे जितने भी अच्छे अच्छे विचार हो। इसलिए वेद में ये भी कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन अच्छे शिव संकल्प वाला हो, हम अपना भी अच्छा करें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचें। हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे कुछ न कुछ वरदान मिले, कुछ न कुछ इच्छाएं उसकी होती हैं। क्या इच्छाएं होती हैं, उसकी अभिलाषा क्या होती है? व्यक्ति चाहता है कि मुझे जीवन में सबसे पहले लंबी आयु मिले, और परमात्मा ने मानो हम सब जीवों के कल्याण के लिए हमें मनुष्य का जीवन दिया है, इसके साथ साथ में हमें कुछ वर भी प्रदान किए हैं, तो मानो भगवान कहते हैं कि देखो सबसे पहला वर तुम्हें आयु है। इसीलिए तो कहा ना पावमानि द्विजानाम, इसमें आगे वरों का वर्णन किया गया है, क्या अच्छा, क्या हमें चाहिए, अभिलाषा हमारी क्या है, हमारी डिजायर्स इच्छाएं क्या हैं, उसके बारे में लिखा है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, ये इस प्रकार के वर हैं। हमारी सब प्रत्येक मनुष्य की पहली इच्छा होती है आयु, अर्थात वो चाहता है कि मैं लंबा जीता रहूं इस दुनिया में। जीवन नरो भद्र शतानि पश्यति, मनुष्य लंबे काल तक जीता हुआ अनेक भद्र को देखता है, अनेक कल्याणकारी चीज़ों को देखता है, सुनता है, इसलिए सबसे पहली उसकी इच्छा आयु की होती है। आयु के लिए प्रार्थना की जाती है वेदों में, जीवेम शरदः शतम शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्, अर्थात हम लंबे दीर्घ आयु को प्राप्त करने वाले बने। हम जीवेम शरदः शतम की प्रार्थना सबके लिए, प्राणी मात्र के लिए करते, अर्थात मनुष्य मात्र के लिए करते हैं, और हमारी सबकी इच्छा मानो सबसे पहले यही है आयु। हमारा प्राणम दूसरी इच्छा होती है रेस्पिरेशन, हमारा श्वास प्रश्वास अच्छा रहे, हम शरीर से स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसीलिए तो कहा कि प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, निरोग रहता है। इसलिए प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल करके हम डीप ब्रीदिंग करें। 21 जून को आने वाला योग दिवस प्राणायाम के महत्व को ही बताता है। योग के साथ साथ प्राणायाम की चर्चा हमें जरूर करना चाहिए। तो दूसरी इच्छा मनुष्य मात्र की होती है, वो स्वस्थ रहें, वो विचारों से स्वस्थ रहें, शरीर निरोग हो उसका, आयु प्राणम। और तीसरी इच्छा हम सब जीवों की होती है, वो है प्रजाम प्रोजनी, हमारे बच्चे अच्छे हों, संस्कारवान हों। और इसीलिए बच्चों के लिए निर्माण के लिए ऋषि ने कहा था, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जो माता पिता और आचार्य गुरुजन हमको मिले हैं वो हमारे संस्कारों को बनाते हैं, हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। प्राणम आयुः प्राणम प्रजाम, और चौथी बात कही है पशुम, हमारे घरों में किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता न हो, अन्न की प्रचुरता हो, धन धान्य भौतिक ऐश्वर्य ईश्वर की कृपा से हमको मिलते रहें। आयुः प्राणम प्रजाम पशुम, अगली जो हमारी इच्छा होती है कि कीर्ति, कीर्ति का मतलब है जो भी जीवन में अच्छे कर्म हम करते हैं वो हमेशा दुनिया के लोग उसको याद करते हैं। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है, कीर्तिर यस्य स जीवति, अर्थात जीना उसी व्यक्ति का है जो सत्कर्मों को करता है, अच्छे कर्मों को करता है, मानव की भलाई जिसमें हो, प्राणी मात्र की भलाई जिसमें हो, ऐसे कर्तव्य कर्मों को जो करता है उसकी कीर्ति हमेशा बनी रहती है। और इसीलिए कहा ऐसा व्यक्ति ही उसका जन्म लेना सार्थक माना।

माना जाता है। आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिम। अगली प्रार्थना हमारी वेद के इस मंत्र में आई है द्रविणम। द्रविणम का मतलब है ऐसा धन भगवान से मांगा जाए जो हमारे कल्याण के लिए तो हो ही हो, साथ में समाज के लिए भी हो, राष्ट्र के लिए भी हो। केवल मात्र उस धन का उपयोग हम अपने लिए न करें, यदि समाज में कहीं कोई काम अच्छा हो रहा हो, शुभ काम हो रहे हों, तो उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए। तो द्रविणम का मतलब है, इसलिए वेदों में अनेक जगह धन की प्रार्थना की गई है। वयम श्याम पतयो रईणाम, हम धनेश्वरियों के स्वामी हों, शरीर से निरोग हों, मन से स्वस्थ रहें, हमारा शरीर मन बुद्धि अच्छी तरह से विकसित हो और हम जीवन में हमें हमेशा तरक्की करें। तो द्रविणम का मतलब है धन धान्य ऐश्वर्य की पुष्टि हमें मिले। अगला जो सबसे बड़ा वर है, सबसे बड़ी जो इच्छा हमारी है, वो है ब्रह्म वर्चसम, अर्थात हमें ब्रह्म वर्चस मोक्ष की प्राप्ति हो। भारतीय संस्कृति में चार पुरुषार्थ माने हैं और इसीलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर् भवेन्यम। अर्थात वैदिक संस्कृति ये कहती है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय हैं हमारे जीवन के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम अच्छे कार्यों को करें, अच्छे कार्यों को करते हुए अर्थोपार्जन करें, धनोपार्जन करें, बिना धन के तो कोई भी काम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा द्रविणम और अंतिम इच्छा हमारी रहती है ब्रह्म वर्चसम, अर्थात वह चेतना, वह ईश्वर, वह परमात्मा हम सबको अपना वर्चस प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही हमें जीवन में मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है, और यदि हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं तो यही मृत्यु का कारण बनता है। ब्रह्म वर्चस का अर्थ है ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर की छाया, जिसके लिए वेद में कहा है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, अर्थात वह परमात्मा हमको मोक्ष की तरफ ले जाए, ऐसा आनंद जीवन में जो कई कई वर्षों तक, कितने अरबों वर्षों तक हमें मिलता रहे, ऐसा जो मोक्ष है जीवन के अंदर, हमें शारीरिक जीवन न मिलते हुए भी उस मोक्ष सुख में सब प्रकार का सुख हमको मिलता है। तो ये कुछ गणनाओं की चर्चा की गई है, अर्थात हर व्यक्ति की इतनी ही इच्छाएं होती हैं। वैसे तो इच्छाएं हमारी अनंत होती है, पर हमारी इच्छाओं को यदि हम गिने मूल रूप से, तो यही इच्छा होती है आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम। ये इस प्रकार की इच्छा आयु की, प्राण की, प्रजा की, पशु की, कीर्ति की, और अंत में यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, उस ईश्वर का आशीर्वाद, उसकी कृपा हम सदा प्राप्त करते रहें। भगवान कहते हैं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्, अर्थात जब तुम मोक्ष लोक को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो, साल्वेशन को प्राप्त करो, तो कहते हैं ये सब चीज़ें मानो मुझे ही लौटा दो, और तुम व्रजत ब्रह्म लोकम, ब्रह्म का लोक, ब्रह्म का अर्थ है ईश्वर, ब्रह्म का अर्थ है सच्चिदानंद स्वरूप। और हमारे दार्शनिक विद्वानों ने जो मोक्ष के ऊपर इतना चिंतन किया, इतना विस्तार से वर्णन किया है, हम सबकी इच्छा ये रहती हम सब प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लें। मुच्यन्ते सर्व दुख ही सा मुक्ति, अर्थात जिसमें सब प्रकार का दुख हो, मिट जाए, समाप्त हो जाए, उसी के लिए हम प्रार्थना करें। ऐ वेद माता ऐ ज्ञान जननी, जीवन हमारे उज्ज्वल बनाना। तेरा नाम वरदा तेरा नाम सुखदा, तेरा तुझे पावमानी कहते हैं जानी। तू ही सरस्वती तुझसे मती है, ज्योतिर्मयी हमको तू ना भुलाना। तेरी सच्ची पूजा है तुझको समझना, तुझको समझना, तुझको समझना। तुझको हम समझें तुझको हम ज्ञाने, हमें ज्ञान मेधा से उन्नत बनाना। अमर ज्योति बिखरी है चारों दिशा में, अज्ञान पर्दा जो छाया हुआ है, मिटाकर उसे ज्ञान पथ को दिखाना। पाखंड तम से भव जो भरा है,
ऐसी दयामयी दे ज्ञान दृष्टि।

ऋचा के रहस्यों का बोधन कराना। आइए इस वेद माता की शरण में आएं और हम अपने जीवन में सब प्रकार के वरों को प्राप्त करें। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रवीणम ब्रह्म वर्चसम। श्रोताओं, इस वेद मंत्र को अपने जीवन का सार बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब श्रोताओं का मैं प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री बहुत

0: करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।

0: Radio, 24 hours a day.
1: इस समय सुबह के 6:18 हुए हैं। आइए एक विज्ञप्ति पढ़ते हैं हम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मोसलमों सैंत औंद्रे के निवासियों को सूचित करता है कि हमलेट रोड, डीएवी कॉलेज और लोलो सुपर मार्केट के इलाकों में और आसपास के इलाकों में आज रविवार 28 जून को सुबह 8 बजे से दिन के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम कर लेने की मांग करती है। इस समय इस सुबह के 6:19 हुए हैं, बल्कि कुछ ही सेकंड्स में 20 मिनट हो जाएंगे। सुनिएगा आज का सत्यार्थ प्रकाश पर ये वार्ता, और सत्यार्थ प्रकाश पर ये वार्ता मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा की ओर से सुनिएगा पंडिता सुभग जी के की आवाज़ में।
2: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मा मध्यमेधयाग्नि मेधाविनम कुरु ओम शम। सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पार्वती सुबह का सादर सप्रेम अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश मास के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह कार्यक्रम मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश में नारी का स्थान। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन काल में उनके जैसे ऐसा कोई पक्षपात रहित विद्वान नहीं हुआ जिसने नारी का सम्मान इतनी श्रद्धा, दृढ़ता, निडरता और आत्मीयता के साथ किया हो। महर्षि दयानंद जी की सोच और विचारधारा वेदों, वेद अनुयायी, ऋषियों और उनके विचारों के साथ मेल खाता है। इसलिए अपने स्वरचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में महर्षि जी ने उन सभी मनीषियों की धार्मिक व सांस्कृतिक और सृजनात्मक रचनाओं का सार्वजनिक रूप से प्रमाण सहित समर्थन किया। महर्षि जी के जीवन काल में समाज कुरीतियों और कुव्यवहारों से दूषित था। भ्रमात्मक रीति रिवाज, मिथ्या प्रथा और गलत धारणाएं बढ़ती ही जा रही थी। महर्षि जी ने अपने दृढ़ विश्वास तथा अटल संकल्प के साथ एक एक करके इन कुरीतियों और अंधविश्वास को जड़ से उखाड़ने का निश्चय किया और कार्यरत हुए। भारतीय जनता के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए महर्षि जी घूम घूम कर वे ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। अनेक बार उन्होंने पाखंडियों को शास्त्रार्थ के माध्यम से परास्त भी किया। समाज सुधार में कार्यरत होते हुए भी महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अलावा कितने धार्मिक ग्रंथ भी लिखे और आर्य समाज की स्थापना के साथ साथ आर्य समाज के नियम भी बनाए। अपने अनेक धार्मिक कार्यों के अंतर्गत स्वामी जी ने नारी उत्थान के प्रति विशेष ध्यान रखा। उस समय भारतीय नारियों पर बहुत अन्याय और अत्याचार किया जाता था। नारी की दयनीय स्थिति को परखते हुए महर्षि जी ने उस

स्थिति को एक विचारणीय विषय का रूप दिया और पूरे संकल्प और पूरी दृढ़ता के साथ अपने उस सराहनीय कार्य की पूरी सफलता के साथ संपन्न किया। सबसे पहले नारी को शिक्षा देना, पाठशाला भेजना समाज की ओर से निषेध था। नारी को नीचा दिखाने के लिए गलत श्लोक का निरंतर प्रयोग किया जाता था, जो इस प्रकार है, नारी शूद्रो न धीयता मिति श्रुति ही, अर्थात नारी और शूद्र को वेदों का अधिकार नहीं है। इस श्लोक को गलत श्लोक सिद्ध करते हुए महर्षि जी ने अथर्ववेद के मंत्र से प्रमाण द्वारा वैदिक दर्शन का प्रमाण दिया। मंत्रांश है, ब्रह्मचर्ये न कन्या युवानम विंदन्ते पतिम, अर्थ है जैसे एक युवक एक विद्या युक्त विदुषी ब्रह्मचारिणी युवती से विवाह कर सकता है, वही अधिकार कन्या को भी है। महर्षि जी कन्या को मातृशक्ति से संबोधित करते थे। किसी ने नारी को तारण का अधिकारी कहा तो किसी ने नारी को नारी नरकस्य द्वारः कहा, अर्थ है नारी नरक का द्वार है, जबकि महर्षि जी ने सत्यार्थ प्रकाश में इसकी सच्चाई शतपथ ब्राह्मण के कथन गृहावय पत्नी प्रतिष्ठा बताई, अर्थ है पत्नी को घर की प्रतिष्ठा मानी जाती है। एक दूसरा उदाहरण है आचार्य यास जी का, माता निर्माता भवती, अर्थ है माता के रूप में संतान को जन्म देने से माता निर्माण करने वाली कहलाती है। परिवार में या समाज में नारी को सर्वोच्च सर्वोत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ मर्यादित दर्जे से सम्मानित किया जाता है। नोपदेश मनतरा ज्ञानोपति ही, इस मंत्रांश का अर्थ है कि उपदेश या शिक्षा के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है शिवा एदत रूपम यत पत्नी, अर्थ है पत्नी के रूप में नारी को श्री और लक्ष्मी की उपमा दी गई है। नारी सुख शांति का स्रोत मानी जाती है। नारी गृहस्थ आश्रम की शक्ति मानी जाती है। नारी प्रेरणा और समृद्धि की निर्मात्री होती है। मनु महाराज के शब्दों में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जिस कुल में नारी का मान सम्मान और आदर किया जाता है वहाँ देवता वास करता है। जहाँ नारी का अपमान और निरादर होता है वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। वेद में आया है कि नारी में सभी गुण विद्यमान है, स्तुति करने में, पूरे परिवार को आनंद देने में और समर्पण करने में, प्रकाश या ज्योति प्रदान करने में, अखंड भाव रखने में नारी की पूरी योग्यता वरदान के रूप में समाई हुई है। नारी सुखों का भंडार है, सुंदरता की प्रतिमा है, पवित्र बुद्धि वाली मेधाविनी है और परिवार की उत्तम ज्ञान देने वाली निर्मात्री है। यजुर्वेद के आधार पर विदुषी नारी गृहस्थ के लिए शरीर के सिर के समान विशेष स्थान रखती है। वह सुकर्म और धर्म का स्रोत होती है। ईश्वर ने नारी को प्रकृति के सारे दैविक गुणों से सजाया है, जिसका पूरा लाभ परिवार तथा समाज को जाता है। इन सभी बातों का निरीक्षण करते हुए महर्षि जी ने नारी की शिक्षा पर प्रबल निश्चय के साथ यह घोषणा की कि कन्या को शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि आज की कन्याएं कल की माताएं हैं। यदि एक कन्या शिक्षित नहीं होगी तो माता के रूप में अपने संतान को कैसे शिक्षित कर पाएगी। माता की गोद तो संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना गया है। महर्षि जी ने नारी शिक्षा के लिए कन्या पाठशालाएँ खुलवाई, बाल विवाह और सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगवाया और नारी का खोया हुआ सम्मान और अधिकार पुनः दिलवाया। यदि महर्षि दयानंद

0: हाँ जी, इस संसार में नहीं आए होते तो सामाजिक कुरीतियों, ढोंग, मिथ्या ज्ञान, बलि प्रथा, नारी की दुर्दशा आदि पीड़ित स्थिति से समाज नहीं उभर पाता। सत्यार्थ प्रकाश मानव जीवन के हर क्षेत्र में सत्य का प्रकाश डालने वाला ग्रंथ है। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: आज आपने सुना पंडिता सुभग जी को। बस सही समय 6:28 हुए हैं। थोड़ी ही देर में सुनिएगा आज का समाचार बुलेटिन, जिसे लेकर आएंगे अभी। और फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जिससे हिम्मत आपकी बनी रहेगी।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: अपनी घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। रविवार 28 जून 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में स्वागत है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स के उड़ान H-148 से माही द्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। ऑल एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपिया सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। मौके पर उपस्थित गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दी श्रद्धांजलि। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गाम नाउजादिक का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का है प्रावधान। और विदेशी स्तर पर पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी हुई। इस हमले में 4 लोगों की हो गई है मौत, जबकि 3 लोग हो गए हैं घायल। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स की उड़ान HM-48 से माही द्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिल्ले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। तब से मॉरिशस और सेशेल्स ने अपने सहयोग को एक नए

0: स्तर पर पहुंचाया है। खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशेल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान उस अवसर पर मस्कारेंस कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के संयुक्त प्रबंधन क्षेत्र के सतत विकास पर एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों पर भी जोर दिया गया। आज रविवार को मॉरिशस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि इस समारोह के मुख्य मेहमान हैं, इसके अलावा अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ और चीनी व रूसी सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद होंगे। सेशेल्स की स्वतंत्रता के 50 साल पूरे होने का यह जश्न नू पेप नू लिडेंटिटे नू डेस्टिन यानी कि हमारा लोग हमारी पहचान हमारा भाग्य जैसे विषय के तहत मनाया जा रहा है। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपिया सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। संगठन के सदस्य जयराज महादुआ के अनुसार इस संस्था की शुरुआत 80 सदस्यों के साथ हुई थी जबकि आज इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 1300 हो गई है। गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल भी इस समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके अनुसार सीनियर सिटीजन संगठन मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं। हमारी सहयोगी अश्मिता बांटू ने जयराज महादुआ से बात की, उनको सुनते हैं विवरण रजनी बेकर के साथ।
1: इन बुजुर्ग लोगों के लिए सक्रिय जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कई वर्षों तक काम करते रहे, अपने परिवार को संभालते रहे। ओल्ड एज पेंशनर्स एसोसिएशन में 1300 सदस्य हैं। 1974 में ये कायम हुआ। इसकी सीट सैपिया में है। वे सप्ताह के दिन रोज यहाँ मिलते हैं और योगा करते हैं, कुछ पिताओं खेलते हैं, क्विज भी करते हैं और धर्मों एवं संस्कृतियों पर भी बात की जाती है।
2: Je suis partie de la Commission nationale du sport féminin. Me donne un cours d'exercice. Faire d'exercice pour nous aînés, c'est un plus, c'est une chose qui est bien motivant et nous trouve avec sourire.
3: Je me prends part devant une compétition qui est là ici, dans l'activité qu'il fait. Il détend tout en même temps. On passe un moment avec mes camarades, tout ça.
4: Nous avons envie qu'il commence à troisième âge, après qu'il y ait tant d'années de passer dans notre enfance, dans notre jeunesse, etc. Il faudrait qu'ils restent bien. Nous avons plusieurs activités, chanté, danse, yoga, Scrabble.
1: राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने बुजुर्ग लोगों के समुदाय में व्याप्त एकजुटता की सराहना की।
5: C'est eux qui préservent nos valeurs et transmettent ces valeurs là à la nouvelle génération. Et moi pense que nous besoin rendre hommage à tout moment.
1: 50वीं वर्षगांठ के मौके पर वर्तमान एवं पूर्व सदस्यों को सम्मानित किया गया। अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया।
0: जूनियर मंत्री धनेश्वर दामगी ने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम ने ही सामाजिक सुरक्षा उपायों की शुरुआत की थी, विशेष रूप से बुजुर्गों के कल्याण के लिए। और जिस तरह से हमने इस बात की चर्चा की है सुर्खियों में कि नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गाम नावजादिक का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने डॉक्टरों को सार्वजनिक क्षेत्र खासकर सरकारी अस्पतालों में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के महत्व पर भी ज्यादा बल दिया। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर आए हैं जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। उनके अनुसार सरकार ने उन कुछ क्षेत्रों के विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेने की भी घोषणा की है जहां विशेषज्ञता की कमी है। साथ ही चिकित्सा और

0: नर्सिंग कर्मचारियों के लिए अधिक विशिष्ट प्रशिक्षण यानी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करने की भी बात कही है। हमारी सहयोगी शबनीज उजागिया ने राम नावजादिक से बात की, उनको सुनते हैं तीना बुदना का विवरण।
1: नर्सेस मॉरिशस में काम करने के लिए लाइन में नहीं लगती है, ज्यादातर यूरोप या न्यूजीलैंड जाकर काम करना पसंद करती है। मैंने पहले भी कहा था कि एक पूरा स्कूल ऑफ नर्सिंग कैंपस बनाना चाहिए जहां सभी जरूरी फैकल्टीज हो और शुरुआत से ही नर्स को ट्रेनिंग दी जा सके। क्या एक डॉक्टर का वेतन किसी सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव से कम नहीं होना चाहिए? हम डॉक्टरों को उनके मौजूदा सैलरी स्केल में बांध कर नहीं रख सकते। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक अलग हेल्थ कमीशन बनानी चाहिए। आज एक बच्चा डॉक्टर बनने के लिए लाखों रुपए खर्च करता है और फिर सिर्फ 50,000 या 60,000 की नौकरी के लिए पब्लिक सर्विस में आए, ये आकर्षक नहीं है। नर्सेस को एक ही समय में लगभग 50 मरीजों की देखभाल करनी पड़ती है, वहीं पुराने उपकरण और पुराने बिस्तर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई एरिया हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर सिर्फ आधे दिन के लिए आते हैं, इसलिए ट्रेनिंग और व्यवस्था दोनों में सुधार की जरूरत है। मैं मंत्री अनिल बेचू से अनुरोध करता हूं कि एक स्कूल ऑफ नर्सिंग कैंपस स्थापित किया जाए, डॉक्टरों को सरकारी अस्पतालों में काम करने के लिए प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव दिए जाएं और एक अलग हेल्थ कमीशन बनाई जाए जिसमें बेहतर सैलरी स्ट्रक्चर हो ताकि अधिक डॉक्टर पब्लिक सर्विस में शामिल होने के लिए प्रेरित हो।
2: फिर एन कैंपस स्कूल ऑफ नर्सिंग दिन मान इंसेंटिव मान डॉक्टर पूरा डाल लोपिटल फैन कमीशन ला सांते कि सोला पेई एन लुट ला पेई कि ली अटिरे पुलिरां डान ले सर्विस पब्लिक।
0: बजट 2026-2027 के तहत सरकार प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड अर्ली इंटरवेंशन यूनिट बनाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है उन बच्चों की सहायता को मजबूत करना जिन्हें अपने विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द इंक्लूजन स्टेशन नामक एक मल्टी डिसिप्लिनरी सपोर्ट स्ट्रक्चर की निदेशिका और स्पीच थेरापिस्ट नाजिया अब्बासाकोर के अनुसार शुरुआत में ही हस्तक्षेप करने से बच्चे की प्रगति को बेहतर ढंग से सहारा दिया जा सकता है। हमारी सहयोगी अंजलि सिरतन फूलचंद ने उनसे बात की, विवरण अदिति अवतार का।
3: Un diagnostic précoce profite à tout l'écosystème autour de l'enfant.
4: The Inclusion Station की निदेशिका नाजा बसाको कहती हैं एक अर्ली स्क्रीनिंग बच्चे के संपूर्ण कल्याण के लिए सही होता है, बच्चे का बेहतर विकास होता है, उसका उचित समावेश होता है, परिवार को जरूरी समर्थन और मदद मिल सकती है तथा शिक्षक परिवार के साथ मिलकर उन्हें पेशेवर सहायता दे सकेंगे ताकि उचित उपकरणों के इस्तेमाल से उन्हें फायदा हो।
0: बजट में स्पेशल एजुकेशन नीड संस्थानों, अर्गोथेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट और फिजियोथेरापिस्ट की भर्ती के साथ साथ विशेष उपकरणों की खरीद और कक्षाओं को आधुनिक बनाने का भी प्रावधान है। यह एक ऐसी सहायता प्रणाली है जो न केवल बच्चे के विकास पर बल्कि उनके परिवारों और शिक्षकों पर भी बेहद सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। समाचारों को आगे बढ़ाते हैं। बजट 2026-2027 में अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स से मेडिकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को बाहर रखा जाना चाहिए। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव वशिष रामकलावन ने यह मांग की है। वे शुक्रवार 26 जून को बजट के उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए मीडिया के सामने आए थे। उनका मानना है कि इस टैक्स से मॉरिशस के नागरिकों में स्वास्थ्य बीमा लेने के प्रति उत्साह कम होने का खतरा है। उनके अनुसार ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, यह बेहद जरूरी है कि आबादी को खुद को सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, न कि एक नया टैक्स लगाकर बीमा की लागत को और बढ़ाया जाए। तीना बुदना।
5: मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर और

0: अधिक चर्चा की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है और इसमें बुनियादी सुधार की आवश्यकता है। मैंने पहले भी समझाया था कि पेंशन के बाद अगर किसी चीज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए तो वो स्वास्थ्य है। इस पर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च होता है। इसके लिए उचित फंडिंग होनी चाहिए। ये हमें सीधे कैश के रूप में नजर नहीं आती बल्कि सेवाओं के रूप में मिलती है। आज जो 5% की बात हो रही है उसे स्वास्थ्य पर लागू नहीं करना चाहिए क्योंकि ये विरोधाभासी होगा, यानी कंट्राडिक्शन। एक ही उत्पाद पर एक तरफ टैक्स इंसेंटिव देना और दूसरी तरफ उसी पर टैक्स लेना बिल्कुल उचित नहीं है।
1: देश और दुनिया भर में संत कबीर की जयंती श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जा रही है। उनका प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। सत्य, समानता, प्रेम और मानवता का संदेश देने वाले संत सतगुरु कबीर साहब की शिक्षाएं आज भी समाज को नई दिशा देती हैं। इस अवसर पर विभिन्न संस्थानों पर भजन, सत्संग और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महंत आचार्य सर्वेश्वर दास हमें कबीर सद्गुरु कबीर साहब के प्राकट्य दिवस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं।
2: श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर साहब का इस वर्ष हम सभी कबीरपंथी भाई बहन 628वां प्राकट्य महामहोत्सव मना रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य के बारे में एक प्रसिद्ध साखी है। 1455 साल गए चंद्रबार एक ठाठ ठहे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। इसके अनुसार विक्रम संवत 1455 तदनुसार ईस्वी सन 1398 को 628 वर्ष पूर्व भारत उत्तर प्रदेश वाराणसी, जिसे हम काशी के नाम से भी जानते हैं, वहाँ के लहर तालाब में एक बृहद कमल पुष्प पर सदगुरु कबीर साहब का अवतरण हुआ था। उनकी वाणियों में सदगुरु कबीर साहब ने कही कि सब घट मेरा साइया सोनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जाघट प्रकट होय। अर्थात परमात्मा हर जगह है लेकिन हम अपनी साधना से उसे प्रकट कर सकते हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति के जीवन में अहंकार है वो परमात्मा का आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता और इसके लिए आवश्यक है उसे अहंकार रहित होना, क्योंकि वे कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाहीं, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ज्ञान का दीपक जब अंतर में जलता है तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जीवन में प्रेम का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, वाणी में भी प्रेम होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसी प्रकार जिसके जीवन में प्रेम है उसे सदगुरु कबीर साहब पंडित मानते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। हमारे जितने भी भाई बहन हैं इस देश में सभी को सदगुरु कबीर साहब का यह प्राकट्य महामहोत्सव मंगलमय हो और सबके लिए विकास का मार्ग प्रशस्त हो, ये सदगुरु से प्रार्थना करते हैं। जय सत्यनाम।
1: विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार को 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। खबरों के मुताबिक ये धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तरों के पास हुआ। अधिकारियों ने तुरंत धमाके की वजह या किसी के हताहत होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके में ये धमाका और उसके बाद गोलीबारी की खबर मिलने पर पुलिस और बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचे। अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते के केवल 10 दिन बाद ही तनाव फिर खुलकर सामने आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने एक व्यापारिक जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रेडर केंद्रों पर हवाई हमले किए। इस सप्ताह आए दो जबरदस्त भूकंपों के बाद

द बेहाल वेनेजुएला के लोग और बचाव दल बचे हुए लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। सरकार ने बताया कि काराकास और आसपास के इलाकों में भूकंप में भारी तबाही के बाद 172 लोग फंसे हुए हैं, 920 लोगों की मौत हो गई है और 3,360 लोग घायल हो गए हैं। 50,000 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है।

और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण पूर्व की ओर से बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित करने लगेगा अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान। आज सुबह बादलों के घेराव के साथ थोड़ी सी बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण और ऊंचे इलाके पर, जबकि दोपहर को थोड़े से बादल घेराएंगे, खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर, जबकि दिन के दौरान बरसात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समंदर खराब रहेगा और ऊंची लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न निकलने की मांग की जाती है। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और आज सूर्योदय 7:45 बजे, जबकि सूर्यास्त शाम के 5:40 पर।

0: चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स की उड़ान HM-48 से माहिद्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। ऑल एज पेंशनर्स एसोसिएशन इस वर्ष अपने अस्तित्व के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर कल सैंपियर सामाजिक केंद्र में अपने सदस्यों को एकत्रित किया। मौके पर उपस्थित गणराज्य के राष्ट्रपति धर्म गोकुल ने देश के विकास में बुजुर्गों के योगदान की सराहना करते हुए दी उन लोगों को श्रद्धांजलि। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि गम नौजादिक का मानना है कि नर्सों की ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय की एक बड़ी आवश्यकता है। बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की दिशा में 2220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का किया गया है प्रावधान। और विदेश में पाकिस्तान के कराची शहर में कल शनिवार 27 जून की रात जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। इस हमले में 4 लोगों की हो गई है मौत जबकि 3 लोग हो गए हैं घायल। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों व मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

आइए शोक समाचार सुनते हैं। एवेनी गांधी स्टैनले रोजल में 78 साल की

28 years old ki Miss Bibi Afroz Juman, Miss Bibi Afroz Juman, जिन्हें सब लोग अफरोज के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा कल रात के 9 बजे उन्हीं के मकान एवेन्यू गांधी स्टैनले रोजिला से निकालकर दफना दिया गया है सैन मोंटे का कब्रिस्तान। फ्यूनरल यस्टरडे एट 9 PM मोसेलमो कबन बॉम्बू में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री हेमराज मागो, जिन्हें सब लोग कृष्ण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मोसेलमो कबन बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताए सैंपिया बॉम्बू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड्स में 70 ईयर्स ओल्ड की मिस बीबी कुर्शीदा तुगाबाली, जिन्हें सब लोग कुर्शीदा के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गई है। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके भाई जनाब अख्तर तुगाबाली के मकान तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड से निकालकर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यूर में 50 साल की श्रीमती प्रेमिला कालीचरण पैदाइशी नाम रामरा का, और जिन्हें सब लोग पूनम के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री नवीन कालीचरण के घर महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM रॉयल रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 67 ईयर्स ओल्ड के श्री बिदानन रामेश्वर, जिन्हें सब लोग मनन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके बेटे श्री मानव रामेश्वर के घर रॉयल ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट नून मोंटोशियो लेन सुरीनाम में 70 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसवंती समन, पैदाशी नाम जगन्नाथ, और जिन्हें सब लोग प्रेमिला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पति श्री कुमार समन के घर मोंटोशियो लेन सुरीनाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM बाबूलाल लेन मोंडालबेया में 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल, पैदाशी नाम गिरधारी, और जिन्हें सब लोग इंदिरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उन्हीं के घर बाबूलाल लेन मोंडालबेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM नंबर 99 पुस गली थ्रेंगबो पोर्टलुई में 61 ईयर्स ओल्ड के श्री रमेश शिवपाल, जिन्हें सब लोग फ्रेया राज के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के सवा दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती माई शिवपाल के घर नंबर 99 पुस्गली थ्रेंगबो पोर्टलुई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भूले वाले दुपहर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:15 ब्लॉक नंबर 24 ए सीते अनुष्का 16 मिल

0: यूपी में 70 साल की 70 years old की कुमारी कमलाबाई सुखदिन, कुमारी कमलाबाई सुखदिन जिन्हें सब लोग चित्रा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर ब्लॉक 24A सीते अनुष्का से जिया मिल क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। रॉयल रोड पुज दे फ्लैक में 79 साल की 79 years old की श्रीमती देवंती उचिगादू, श्रीमती देवंती उचिगादू पैदाशी नाम खुदी सिंह और जिन्हें सब लोग सबित के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सपहर के तीन बजे उनके बेटे श्री राजेश उचिगादू के घर रॉयल रोड पुज दे फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मॉ लुबिन बेलमा किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमोरो एट 3 PM। गांधी रोड एनएस फ्लोरों में 65 साल की 65 years old की श्रीमती इंदिरा बंगारीगादू पैदाशी नाम रुबेरिया नाइको और जिन्हें सब लोग रेणुका के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के ढाई बजे उन्हीं के घर गांधी रोड एनएस फ्लोरों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 28 जून को फ्लोरिडा तेगूज आर्य समाज में सुबह के 7:30 बजे, त्रियोले आर्य समाज में सुबह के 9 बजे और फोंजिसा के आर्य समाज में दिन के 2 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। रविवार 28 जून को सुबह के 10 बजे कालीमाई लेन लागोजा के लागोजा नव जीवन शिवालय नव जीवन महिला समाज के मिले जुले सहयोग से काली पूजा का आयोजन कर रहा है। लयबुआ के नर्मदेश्वर काली माता मंदिर द्वारा रविवार 28 जून को सुबह 6:30 बजे काली पूजा का आयोजन किया है।
3: रविवार 28 जून को दिन के 11:30 बजे श्री कबीर काउंसिल शोल्डिगोल एवेन्यू लकावे नंबर 2 वाकवा में सदगुरु कबीर प्राकट्य समारोह मनाया जा रहा है। जनता आमंत्रित है। रविवार 12 जुलाई को इंजन पेट्रोल स्टेशन नालवीस काठरबोन में ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया है, यानी कि रक्तदान का आयोजन किया गया है सुबह के 8 बजे से दिन के 1 बजे तक। जनता आमंत्रित है।
4: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
5: सुबह के 7:55 हुए हैं।
6: Sports News.
5: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार वादाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। इंग्लैंड का बेड़ा पार हो गया। कप्तान हैरी केन ने विश्व कप में अपना 11वां गोल बनाकर गैरी लिनेकर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो लास्ट 32 राउंड में द थ्री लायंस खेलेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के विरुद्ध, जिसका ये मेडन वर्ल्ड कप है। कल इनकी जीत हुई 3-1 से। किंतु सबसे पहले लाइव मैचों की चर्चा करें जो इसी समय खेले जा रहे हैं। ग्रुप जे में ये 2 मैच आज सुबह 6 बजे शुरू किए गए। जोर्डन की हार हो रही है, जोर्डन 0 अर्जेंटीना 2। जोवानी लो सेल्सो और लुतारो मार्टिनेज का 1-1 गोल अर्जेंटीना की ओर से। अभी हाफ टाइम चल रहा है और इसी में अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया के बीच मैच ड्रॉ है। अभी 1-1 मैच जारी है, एक पूरा हाफ अभी खेलना शेष है। इससे पहले ग्रुप

यूके में आज सुबह ही 3:30 बजे जो दो मैच शुरू किए गए उनमें पोर्चुगल और कोलंबिया के बीच कोई भी गोल न बन पाया। कोलंबिया 0-0। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नया इतिहास रचा। युआन विसा का एक डबल। कोंगो का ये पहला पार्टिसिपेशन है, पहली भागीदारी है और वे लास्ट 32 राउंड में भी पहुंच गए। हार्दिक बधाई। अफ्रीका का एक और शेर आगे बढ़ पा रहा है। कोंगो 3-1। अब कोंगो का मुकाबला 1 जुलाई को इंग्लैंड से होगा। ग्रुप एल में क्रोएशिया ने कल रात गाना को 2-1 से हराया और इंग्लैंड की जीत हुई 2-0 से पनामा के विरुद्ध। पनामा 0-2। कह सकते हैं कि एक कन्विंसिंग जीत नहीं थी, हालांकि इंग्लैंड की जीत हुई और ये बहुत ही जरूरी है। जूड बेलिंगम का पहला गोल 62वें मिनट पर और हैरी केल ने 5 मिनट बाद 67वें मिनट पर एक और गोल स्कोर करके इंग्लैंड को 2-0 से जितवा दिया। अब लास्ट 32 राउंड में इंग्लैंड का मुकाबला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से है। सो इस समय दो मैच खेले जा रहे हैं। हाफ टाइम जॉर्डन 0-2 अल्जीरिया 1-1। अब आज रात 11 बजे से ही लास्ट 32 राउंड शुरू। आज दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला कनाडा से होगा। कनाडा जो एक सह मेज़बान देश है, अपने देश में स्वागत करेगा साउथ अफ्रीका का और बड़ा ही कड़ा मुकाबला होगा इन दोनों के बीच, साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा, आज रात 11 बजे। फिर कल सुबह से ब्राज़ील का मुकाबला कल जापान से है, जर्मनी वर्सेस पराग्वे। फिर मंगलवार को नेदरलैंड्स वर्सेस मोरक्को, ये सबसे ज़बरदस्त मुकाबला साबित होने वाला है। नेदरलैंड्स का मुकाबला मोरक्को से है। आइवरी कोस्ट वर्सेस नॉर्वे, फ्रांस खेलेगा स्वीडन के विरुद्ध। फिर बुधवार 1 जुलाई को मेक्सिको इक्वाडो, इंग्लैंड टक्कर लेगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो से। तो इसी में बेल्जियम खेलेगा सेनेगल के विरुद्ध। गुरुवार की रात यूएसए वर्सेस बोस्निया हर्ज़ेगोविना, स्पेन टक्कर लेगी आज के विजेताओं से, यानी ग्रुप जे में जो सेकंड पोजीशन पर आएगा, अभी शेष है। और शुक्रवार की बात करें तो पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया, स्विट्जरलैंड खेलेगा इस थर्ड, अभी तक एक टीम बाकी है, बेस्ट ऑफ 8 में आना बाकी है आज के मैचों के बाद। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इजिप्ट, तो अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्दे से, केप वर्दे को भी हार्दिक बधाई। सो इतना सब कुछ वर्ल्ड कप को लेकर। अभी भी दो मैच जारी हैं, बता दें कि इस समय अल्जीरिया 1-1, जॉर्डन 0-2। सेकेंड हाफ अभी शुरू होने जा रहा है। बात करें यदि क्रिकेट की, तो भारत और आयरलैंड के बीच T20 मुकाबलों का एक दूसरा मैच आज खेला जाएगा बेलफास्ट में। सो पहले मैच में आपको बता दें कि आयरलैंड ने भारतीय टीम को 34 रनों से हराकर चौंका दिया था। आज दूसरा मैच खेला जाएगा इन दो देशों के बीच। फिर फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री में आज क्या होगा, किमी एंटोनेली कल केवल चौथे स्थान पर आया, पोल पोजीशन से कौन शुरू करेगा, देखते रहिए और सुनते रहिए। क्षेत्रीय स्तर पर मॉरिशस की रेस्ट जूनो वेटेरन फुटबॉल टीम सेशेल्स में एक त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भाग लेने जा रही है। सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। पहला मैच आज ही रविवार को खेला जाएगा, पेल रेस्ट जूनो वर्सेस प्रालिन इन आयरलैंड, और दूसरा मैच 1 जुलाई को सेशेल्स लेजेंड्स के विरुद्ध। और द वन एंड ओनली गोल्डन स्टार्स फुटबॉल क्लब स्वर्गीय अजय बिकारी के सम्मान में स्वांसी फुटबॉल क्लब के सहयोग से आज रविवार 28 जून 2026 की शाम एक फुटबॉल फेस्टिवल आयोजित कर रहा है। आज दिन के 2 बजे प्लेंडे पापाई के फुटबॉल मैदान पे क्रिस्टल बीच रिजॉर्ट होटल और स्वांसी फुटबॉल क्लब के बीच एक पहला मैच खेला जाएगा। फिर रेडिसन ब्लू अजुए होटल का मुकाबला सिलेक्शन प्लेंडे पापाई से। सो बता दें कि समय जो मैच खेले जा रहे हैं, सेकंड हाफ शुरू होने जा रहा है, अल्जीरिया 1-1, जॉर्डन 0-2। सुनते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार और शुभ दिन।

0: hour, every hour. Radio Marches.
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि OTP SMS या ईमेल द्वारा। ये OTP आपको अपने स्क्रीन पर एंटर करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या OTP के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट्स स्ट्रीम्स। ज्यादा जानकारी या मदद के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच में फोन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन सपोर्ट को 433-3135 या 433-2871 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर ऑन 5944-6800।
2: NBC Radio 24 hours a day.
3: इस समय 7:10 हुए हैं। एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सुदनाक और कथोबोन के निवासियों को सूचित करता है कि अवेन्यू बेंगाली दुदो कर्डिनल एपेविये फ्लामों मोसिल मारूमा इरोंडेल किवी इबिस पेड्री और हिलक्रेस्ट और SSO अवेन्यू के एक भाग में मरम्मत कार्यों की वजह से कल सोमवार 19 जून को सुबह 9 बजे से दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे। इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने इन ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी एक विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।

0: सुबह होता है एक प्यारा सा नजराना, नजराना लेके जो ऊपर वाला आता है आपके पास, तो इस नजराने को आप ऊपर वाले की कृपा ही मानिएगा।
1: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।
0: सुबह का नजराना शो आप लोगों के नाम, अभी 7:12 हुए हैं, हमारा आपका साथ 9 बजे तक है और 9 बजे तक हमारी आपकी इस मुलाकात में एंटरटेनमेंट का आपका पूरा बंदोबस्त है। अभी चलिए हम आप लोगों के नाम करते हैं एक ऐसा गाना जिसे आपने हमेशा सुना हुआ है और सुनकर इसे गुनगुनाया हुआ है, और आज सुनकर शहंशाह मूवी का ये गाना आपकी जबान भी नहीं रुक

लगेगी, आप भी गुनगुनाना शुरू कर देंगे। चलिए साथ साथ चलते हैं, साथ साथ गुनगुनाते हैं, एंटरटेनमेंट का ये सिलसिला साथ साथ एंजॉय करते हैं।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। मनुष्य अपने जीवन में मान और अपमान दोनों की अनुभूति करता रहता है। कभी उसे सम्मान मिलता है तो कभी अपमान। दोनों को किस भाव से ग्रहण करना चाहिए, आइए विचार करें। सम्मान से सुख मिलता है और हर व्यक्ति सम्मान के सुख को पाना चाहता है। एक दिन एक व्यक्ति ने टेलीविजन पर देखा कि एक संस्था ने किसी समाज सेवक को उसकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया था। यह देखने पर व्यक्ति ने सोचा, मैं भी समाज के कामों में अपना समय देता हूँ, फिर क्यों न कोई संस्था मुझे भी सम्मानित करती है। ऐसा सोचने पर व्यक्ति के मन में सम्मान पाने की इच्छा जगी। उसने अनेक संस्थाओं के प्रधानों से भेंट की, उन्हें अपनी सामाजिक सेवा के बारे में बताया और उनसे निवेदन किया कि वे उन्हें सम्मानित करें। उस व्यक्ति के सेवा कार्यों को लोग पहचानने लगे थे और उनका आदर भी करने लगे थे। परंतु जब वे जगह जगह पर सम्मान की मांग करने लगे, तब लोग उन पर हंसने लगे। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, अपितु उत्तम कर्म करने से मिलता है। इसीलिए हम सम्मान के पीछे न दौड़ें, केवल अच्छा कर्म करने पर अपना ध्यान लगाएं। मान और सम्मान दोनों ही स्थितियों में क्या हम बराबर रह सकते हैं? एक दफ्तर में एक बॉस ने अपने दो कर्मचारियों को बुलाया। उसने एक कर्मचारी की खूब प्रशंसा की और दूसरे को डांटते हुए कहा कि अपना काम वह ठीक से नहीं कर रहा है। जिस कर्मचारी की प्रशंसा की गई, उसके मन में अभिमान आया और जिसे डांटा गया, उसके मन में बॉस के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। सम्मान पाने पर इतराना और अपमानित होने पर विचलित हो जाना, दोनों मन की कमजोरी का चिन्ह है। जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है, वही मान और अपमान दोनों स्थितियों में बराबर रहता है। एक सुबह श्री राम को पता चला कि वे अयोध्या के राजा बनेंगे, उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया जाएगा। उसी दिन की शाम को श्री राम को बताया गया कि वे राजा नहीं बनेंगे, उन्हें वन में भेजा जाएगा। राजा बनने की सूचना पाकर श्री राम उत्साहित नहीं हुए थे और वनवास मिलने की सूचना पाकर वे क्रोधित भी नहीं हुए थे। मान और अपमान दोनों स्थितियों में वे मुस्कुराते रहे। यही कारण है कि वनवास भी उनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। श्रोताओं, यदि हमें कभी घोर अपमान मिले तो हम उसे वरदान

0: के रूप में देखें। एक शहर में गायन का एक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में एक गायक अपना गीत प्रस्तुत करने लगा तो किसी ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ, तुम्हें गाना नहीं आता है, अपना समय बर्बाद न करो, चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। यह सुनकर गायक शर्म के मारे मंच से उतर गया। अगले दिन वह अपने गुरु के पास गया और नए सिरे से गायन सीखने लगा। कई महीनों तक वह गायन का अभ्यास करता रहा। अंत में उसकी मेहनत रंग लाई। वह जिस मंच पर गाने लगता था वहां सुनने वालों की संख्या बढ़ती जाती थी। वह देश विदेश में प्रसिद्ध गायक बन गया। जो अपमान उसे मिला था वह सचमुच उसके लिए वरदान सिद्ध हुआ। श्रोताओं, जीवन में मान और अपमान बारी बारी से होता रहता है। मान से सुख मिलता है, परंतु सम्मान के पीछे हम न दौड़ें। अपनी भावनाओं को संतुलित रखें। मान और अपमान दोनों स्थितियों में हम बराबर रहें। यदि भारी अपमान मिले तो इसे आशीर्वाद मानकर हम अपने दोषों को दूर करें, अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएं और जीवन में प्रगति करें। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

इस समय 7:25 हुए हैं। हमारा आपका साथ रेडियो मॉरिशस पर है। बस खुशी मिले आपको, सुख मिले, चैन मिले आपको, यही हमारी उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे सुबह का नजराना शो में।

0: झलकियां
1: झलकियां। चलिए जरा देखिए हम कौन कौन से प्रोग्राम हमारे रेडियो मॉरिशस पर रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं के साथ मिलकर हम ये साझा करते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम हमारे साथ आप सुन सकते हैं। इनफैक्ट अभी तो हम आपके लिए सुबह का नजराना पेश कर रहे हैं। 8 बजे आप भोजपुरी समाचार सुनिएगा अभी से, उसके बाद होगा आज का पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। आप लोगों के साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम पेश करेंगे। 9 बजे संक्षिप्त समाचारों के बाद आप सुन पाएंगे आज का मंगल आचरण कार्यक्रम विकास जी की प्रस्तुति में। 10 बजे होंगे संक्षिप्त समाचार, उसके बाद उर्दू प्रोग्राम निसार पेश करेंगे। फिर 11 बजे के संक्षिप्त समाचारों के बाद सुंदरम पेश करेंगे आज का तमिल प्रोग्राम। राजेंद्र तेलुगु प्रोग्राम लेकर आएंगे 12 बजे और 1 बजे मराठी प्रोग्राम शिरीष लेकर आएंगे, जिन पेश करेंगे चाइनीज़ प्रोग्राम 2 बजे से 3:30 बजे तक, जिसके फौरन बाद आप सुनिएगा आज का गुजराती प्रोग्राम रत्ना जी की प्रस्तुति में। 4 बजे आप और हम कार्यक्रम पूजा से सुन पाएंगे और 5 से 6 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम होगा संत कबीर पर। फिर 6 बजे आप सुनिएगा आज का समाचार बुलेटिन। 6:30 बजे होगा आज का चाइनीज़ प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में। युवा

आगा सन तमिल प्रोग्राम लेकर आएंगे इस शाम के 7 बजे, शाम के 7:30 बजे आप सुनिएगा तेलुगु प्रोग्राम वंदना से। शिरीष मराठी प्रोग्राम पेश करेंगे गीत गंगा 7:50 पर, और 8:10 पर रोशनी लेकर आएंगे आज का हमारा भज ले प्रभु का नाम कार्यक्रम 8:40 पर। महफिल शब प्रोग्राम होगा, समीर पेश करेंगे। प्रताप लेकर आएंगे आज का भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रात्रि के 9 से 11 बजे तक। 11 बजे आप सुनिएगा आज का सुनहरे पल प्रोग्राम, पुराने गानों का प्रोग्राम होता है ये, गिनीशा लेकर आएंगी रात्रि के 12 बजे तक। तो चलिए साथ हमारा आपका दोस्ती हमारी आपकी हमेशा बनी रहे, यही हमारी दुआ, यही हमारी कोशिश और यही हमारी उम्मीद रहती है। रेडियो मर्शस आप लोगों की सेवा में, चलिए इस सेवा में कबूल है, कबूल कीजिएगा लव लेटर, फर्स्ट लव लेटर का ये गाना, और लता मंगेशकर की आवाज़ में अपनी आवाज़ ज़रूर मिलाइएगा, हम भी साथ साथ चलेंगे आपके।

0: रसोई, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: दारू की दुकान पड़ती है कभी घर के आसपास?
2: घर के थोड़ा आगे चल के
1: बाई तरफ,
2: दाई तरफ है।
1: आते वक्त तो बाई तरफ पड़ती होगी ना।
3: हर कुत्ते का दिन आता है, कुकू का भी आएगा और सब बदल जाएगा।
4: बातें बची बहुत बताने के लिए, जिंदगी तेरे संग बिताने के लिए।
0: रविवार 28 जून को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुकु माथुर की जंड हो गई। 2014 की ये मूवी सिद्धार्थ गुप्ता और सिमरन कौर पर फिल्माई गई कुकु माथुर की जंड हो गई। NBC TV रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: दारू की दुकान पड़ती है कभी घर के आसपास?
2: घर के थोड़ा आगे चल के
1: बाई तरफ,
2: दाई तरफ है।
1: आते वक्त तो बाई तरफ पड़ती होगी ना।
3: हर

0: जी बहुत बताने के लिए, जिंदगी तेरे संग बिताने के लिए।
1: रविवार 28 जून को NBC4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म कुकु माथुर की जंड हो गई, 2014 की ये मूवी सिद्धार्थ गुप्ता और सिमरन कौर पर फिल्माई गई कुकु माथुर की जंड हो गई। सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर
2: खुशियां मिलती रहे आपको और तरक्की मिलती रहे आपको। ऐसी दुआएं तो हम करते हैं आपके लिए और करते रहेंगे, और बस यही उम्मीद रखते हैं कि आप भी इस तरक्की को अपने अपनों के साथ बांटिए, औरों के साथ बांटिए, बल्कि ये तरक्की आप औरों को भी देने की कोशिश कीजिएगा, औरों की हिम्मत बंधाइएगा, औरों के बारे में सोचिएगा और औरों को आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा। बस ऐसा हुआ तो ज़माने में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, शांति ही शांति नज़र आएगी।
3: अभी अलविदा मत।

महेंद्र कपूर की आवाज का ये गाना है निकाह मूवी से लिया गया। हर लम्हा हर पल हर मोड़ आता है ऐसा जहाँ कोई न कोई बिछड़ता है, बस एक उम्मीद दिल में यही रहती है कि कहीं न कहीं उनसे मुलाकात जरूर हो।

0: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
1: सात बजकर 51 मिनट हुए हैं। चलिए समय की बात जो छिड़ी तो धैर्य और सही समय पर आधारित एक कहानी आपके लिए। एक बार एक व्यक्ति अपनी लगातार सफलताओं से निराश होकर सब कुछ छोड़ने का फैसला कर चुका था। वह जीवन से हार कर एक साधु के पास जंगल में गया और अपनी परेशानी बताई। साधु ने उसे अपने आश्रम के पीछे ले जाकर दो पौधों को दिखाया और कहा, मैंने कुछ साल पहले यहाँ एक फर्न या एक छोटा सा पौधा और एक चीनी बांस यानी चाइनीज बांबू का बीज बोया था। पहले साल में फर्न का पौधा बहुत जल्दी बड़ा हो गया और बहुत हरा भरा हो गया, लेकिन बांस के बीज में कोई बदलाव नहीं दिखा। फिर भी मैंने धैर्य रखा और पानी देता रहा। दूसरे और तीसरे साल में फर्न का पौधा घना हो गया, इतना हरा भरा हो गया कि देखकर दिल जीत लेता था, लेकिन बांस की जमीन में कोई हलचल नहीं हुई। चौथे साल में बांस का बीज वैसे का वैसा ही रहा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। और पांचवें साल में जमीन से एक छोटा सा अंकुर बाहर आया और उसके मात्र 6 हफ्तों के भीतर वह बांस का पौधा 90 फीट ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया। साधु ने उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या तुम्हें यह लगता है कि यह बांस सिर्फ 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, उन 5 सालों में वह जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था ताकि 90 फीट ऊंचे पेड़ का बोझ संभाल सके। तुम्हारा यह कठिन समय भी तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने के लिए है, धैर्य रखो। व्यक्ति को साधु की बातों पर बहुत आश्चर्य भी हुआ और उस पर बहुत विश्वास भी हुआ। उसने नए उत्साह के साथ फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया। हाँ जी, जरूर, आप सही समझे, आपके प्रयासों का तुरंत परिणाम ना निकले तो निराश ना होइएगा। आपका कठिन

मैं आपकी जड़ों को यानी कि आपकी क्षमता और अनुभव को मजबूत कर रहा होता है। सही समय आने पर आपकी सफलता भी बांस के पेड़ की तरह ऊंची होगी और मजबूत होगी। चलिए हम अपनी दृढ़ता को मजबूत बनाएं, हम अपनी बुद्धि को अपनी मानसिकता को दृढ़ बनाएं। इसी दृढ़ता के साथ हम अपने जीवन में सफलता पाएं।

थोड़ी ही देर में यानी कि 3 मिनट में 8 बज जाएंगे और 8 बजे आप भोजपुरी समाचार सुनिएगा अभी से। और भोजपुरी समाचारों के बाद हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए आपका प्रोग्राम पैगाम आपके नाम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घरी मिला ले जा इबखत फजर के 8 बजल बा। सबको एक नमस्ते और वादा। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुना जा। प्रधानमंत्री और उनकर पत्नी काल सांझ के एसेशल्स के उड़ान HM-48 के महाद्वीप पहुंच लंजा। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकर पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशल्स के स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के समारोह खातिर राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हवंजा। सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य महानुभाव प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकर पत्नी के स्वागत कर लंजा। आज दिमास के डॉक्टर नवीन राम गुलाम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ, चीनी और रूसी सरकार के प्रतिनिधि के संगे उपस्थित रहियंजा। बजट 2026-2027 के तहत सरकार के बगल से प्राथमिक स्कूल में 3 से 5 बरिस के उम्र के लयका लोगन खातिर एगो स्पेशलाइज अर्ली इंटरवेंशन यूनिट कायम करे के योजना बनावल जाता। एकर उद्देश्य उ लयकवन के सहायता के मजबूत करे के जे अपन विकास में कठिनाई के सामना करे लंजा। नर्सिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि राम नावजादिक के अनुसार नर्स लोगन के ट्रेनिंग करे खातिर एगो समर्पित कैंपस बनावे के आज के बखत में बहुत ही जरूरी बाते, एगो आवश्यकता बन गल बाते। उनकर अनुसार ई कदम नवा पीढ़ी के तैयार करे के और स्वास्थ्य प्रणाली के बढ़ती जरूरत के पूरा करे खातिर महत्वपूर्ण बाते। बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारी लोगन के संख्या बढ़ावे खातिर 2,220 स्वास्थ्य पेशेवर के भर्ती के प्रावधान बाते। तो दूसर देश में पाकिस्तान के कराची शहर में काल सामदी के रात के कस के धमाका भल, एकर बाद ताबड़तोड़ गोलीबारी भी होल जिमें 4 जना के मौत हो गल बाते और 3 आदमी के कस के घाव लग गल। ई धमाका पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स के दफ्तर के भिरी होल रहल। और कल रात और आज फजरे फजरे होल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले में ग्रुप एल से इंग्लैंड पनामा के 2-0 से हरा दिलक। क्रोएशिया भी गाना के 2-1 से हरा दिलक। ग्रुप के में कोलंबिया पुर्तगाल से ड्रो खेलल, कोंगो उज्बेकिस्तान के 3-1 से मात दिलक और हब ये ही अर्जेंटीना जोर्डन के खिलाफ खेलन और इसको रहल 3-1 और है जो मैच बाते अभी ही फिनी हो गल। तो दूसर देने में अल्जीरिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच अभी ही फिनी हो गल और ओकर हालिया जो स्को बाते उद्रो माने 3-3 बाते। तो एक संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान खातिर धन्यवाद, नमस्ते और आदाब।
2: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

આવો મરનીકે ખબર સુના જા તેમની સ્ત્રીઓલે મેં ચોવન સાલ કે મને દુકોરી ચૌદહ બરીસ કે સેકન્ડ કાથો કે શ્રી નીરજ રામકન શ્રી નીરજ રામકન જેકરા જિનકરા સબ લોગ નીરજ કે નામ સે જસી જાના થલન જા ઉનકર મૃત્યુ હો ગલ બાતે ઉનકર માટી આજ दोपहर की दो बजे उनकर घरवे से मानी तेमिनिस्त्रियोली से उठा के क्रियाक्रम खातिर तेमिनिस्त्रियोली की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 2 PM मोसेलमोकोबन बोम्बू में 3 कोरी 16 बरिस के 76 ans के श्री एमराज मगर जिनकरा सब लोग कृष्ण के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बातें उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरवे से मोसेलमो कुबन बोम्बू से उठा के क्रियाक्रम खातिर मोताए सैपिया बोम्बू की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 11 AM तमिल टेम्पल रोड गुडलैंड्स में 3 कोरी 10 बरिस के 70 ans के मिस बीबी कुर्शीदा तुराबाली जिनकरा सब लोग कुर्शीदा के नाम से जैसी जाना थलंजा गुजरगल हवन उनकर जनाजा आज दिन के 11 बजे उनकर भाई जनाब अख्तर तुराबाली के मकान तमिल टेंपल रोड गुडलैंड से निकाल के दफनाए खातिर बेलमो गुडलैंड्स का कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 11 AM महात्मा गांधी रोड क्रेवकोर में 50 बरिस के 2 कोरी 10 बरिस के श्रीमती प्रेमिला कालीचरण पैदाइशी नाम राम राका और जिनकरा सब लोग पूनम के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर पति श्री नवीन कालीचरण के घरे महात्मा गांधी रोड क्रेवकोर से उठा के क्रियाक्रम खातिर बुआ मोशों की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुडे एट 11 AM रॉयल रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट में 3 कोरी 7 बरिस के 67 ans के श्री बिदानंद रामेश्वर जिनकरा सब लोग मनन के नाम से भी जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर बेटा श्री मानव रामेश्वर के घरे रॉयल रोड ग्रैंड रिवर साउथ ईस्ट से उठा के क्रियाक्रम खातिर बोशों की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट नून मोंटोशियो लेन सुरीनाम में 3 कोरी 10 बरिस के 70 ans के श्रीमती जसवंती समन पैदाशी नाम जगन्नाथ और जिनकरा सब लोग प्रमिला के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पति श्री कुमार समन के घरे मोंटोशियो लेन सुरीनाम से उठा के क्रियाक्रम खातिर सुयाक की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 12:30 PM बाबूलाल लेन मोंडालबेयर में 3 कोरी 7 बरिस के 67 ans के श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल पैदाशी नाम गिरधारी और जिनकरा सब लोग इंदिरा के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाती उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर घरवे से बाबूलाल लेन मोंडालबेयर से उठा के क्रियाक्रम खातिर प्रेमायों की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमिशन टुडे एट 1 PM नंबर डी 99 पुसगली थ्रैंगबो पोतलुई में 3 कोरी 1 बरिस के 61 ans के श्री रमेश शिवपाल जिनकरा सब लोग फ्रेयराज के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बाते उनकर माटी आज दोपहर के सवा दो बजे उनकर पत्नी श्रीमती माया शिवपाल के घरे नंबर D99 पुसगली थ्रैंगबा पोतवी से उठा के क्रियाक्रम खातिर सिपाही भूले वाले दोपहर के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन दिस आफ्टरनून एट 2:15 ब्लॉक 24 ए सीते अनुष्का 16 मिल ट्रियोले में ब्लॉक

0: से ए सीते अनुष्का सिजिया मिल क्यूपिप में तीन कोरी दस बरिस के सोसेंजीजों के कुमारी कमलाबाई सुखदीन, कुमारी कमलाबाई सुखदीन जिनकरा सब लोग चित्रा के नाम से जसी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाती, उनकर माटी आज दोपहर के दो बज के आधा, आज दोपहर के दो बज के आधा उनकर घरवे से ब्लॉक 24 ए सीते अनुष्का सिजिया मिल क्यूपिप से उठा के क्रियाक्रम खातिर बिगाहा के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट हाफ पास्ट टू। रॉयल रोड पुज दी फ्लैक में, रॉयल रोड पुज दी फ्लैक में तीन कोरी 19 बरिस की 79 वों की श्रीमती देवंती उचिगादू, श्रीमती देवंती उचिगादू पैदाशी नाम कुदी सिंह और जिनकरा सब लोग साबित के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाते, उनकर माटी आज, उनकर माटी काल सांझ के 3 बजे, काल सांझ के 3 बजे लंदी के उनकर बेटा श्री राजेश उचिगादू के घरे रॉयल रोड पर जेफ्लाक से उठा के क्रियाक्रम खातिर मॉ लुबिन बेलमा की शमशान भूमि ले जावल जाए। फ्यूनरल टुमोरो आफ्टरनून एट 3। गांधी रोड एन एस फ्लोरों में, गांधी रोड एन एस फ्लोरों में तीन कोरी 5 बरिस के 65 के श्रीमती इंदिरा बंगिरा बंगारी गादू, श्रीमती इंदिरा बंगारी गादू पैदाशी नाम रोबेरिया नाइको और जरा और जिनकरा सब लोग रेणुका के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनकर मृत्यु हो गल बाते, उनकर माटी आज दोपहर के 2 बज के आधा, आज दोपहर के 2 बज के आधा उनकर घरवे से माने गांधी रोड एन एस फ्लोरों से उठा के क्रियाक्रम खातिर बोशों की शमशान भूमि ली जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास 2 PM। तो जितना जो परिवार दुख में हवन जा, दुख के ई घड़ी में MBC के बगल से सब कोई के हमने सहानुभूति प्रकट करत है सा।
1: की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

0: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, रेडियो मॉरिशस।
1: आइए जानते हैं एमबीसी प्ले पर न्यू वर्ल्ड स्पोर्ट्स पैक में सब्सक्राइब करने का तरीका। स्टेप वन, सब्सक्राइबर को पहले एमबीसी प्ले ऐप खोलना होगा और जाना होगा टीवी सेक्शन में। अब जब किसी भी न्यू वर्ल्ड चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टू अ सिक्योर मिप्स पेमेंट पोर्टल। स्टेप टू, अब आपके सामने होंगी दो पेमेंट ऑप्शंस। एक तरीका मोबाइल बैंकिंग एप्स के जरिए पेमेंट करने का, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। सो आपको सिलेक्ट करना होगा अपना प्रेफर्ड मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन, यानी कि जूस, ब्लिंक या पॉप। अब इन पेमेंट एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ रजिस्टर्ड मोबाइल फोन नंबर आपको एंटर करना होगा। ऐसा करने के बाद उस बैंकिंग एप्लीकेशन के द्वारा एक सिक्योर पुश नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर दिखेगी। यूजर को उस नोटिफिकेशन को खोलना है, ट्रांजैक्शन और उसकी डिटेल्स को रिव्यू करना है और सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट एंड पे। और वहीं पर अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का ऑप्शन चुनते हैं, सो पहले मांगी हुई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स आपको भरनी होंगी और उसके बाद आपके बैंक के द्वारा आपको मिलेगा एक सिक्योर्ड वन टाइम पासवर्ड, यानी कि ओटीपी SMS या ईमेल द्वारा। ये ओटीपी आपको अपने स्क्रीन पर एंटर

करना होगा टू ऑथराइज द ट्रांजैक्शन। तीसरा और अंतिम स्टेप, एक बार यूजर ने पेमेंट को ऑथराइज कर दिया अपने बैंकिंग ऐप या ओटीपी के द्वारा, तो उनको अपना स्क्रीन नहीं बंद करना बल्कि इंतजार करना चाहिए कि ये जो प्रोसेस है पूरी तरह कंप्लीट हो जाए ऑन द एमबीसी प्ले एप्लीकेशन। अब बस सक्सेसफुल पेमेंट कंफर्मेशन होते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली यूजर को रीडायरेक्ट कर देगा एमबीसी प्ले होम पेज पर और अनलॉक कर देगा इमीडिएट एक्सेस टू द प्रीमियम स्पोर्ट।

0: 1 या 433-3145 या 433-2905 या 5251-6363 या फिर on 5944-6800.
1: इस समय 8:19 हुए हैं और हम सुरेखा आपके साथ हैं, लेकर आए हैं आपके लिए आपका प्रोग्राम पैगाम आपके नाम। जो कोई खुशी का मौका हो, कोई भी इवेंट हो आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच में, आप ज़रूर हमारे इस प्रोग्राम में भाग लीजिएगा। बताइएगा कौन सा मैसेज भेजना चाह रहे हैं, कौन से विशेष भेजना चाह रहे हैं आप अपने अपनों को, ताकि उनका इवेंट और भी प्यारा हो जाए और भी खुशगवार हो जाए। पैगाम आपके नाम। अब वैसे हमारा आपका साथ तो सुबह 6 बजे से चल रहा है और सुबह 6 बजे से हमारे कई श्रोता हमारा साथ दे रहे हैं और हमें प्यारी प्यारी बहुत प्यार भरे मैसेजेस भेज रहे हैं। रिवेदिका से साधना जी हमारा साथ दे रही हैं और माला सुमाहू जी कथोपोन से हमारा साथ दे रही हैं। माला सुमाहू जी ने तो हमारी दोस्ती को एक बहुत ही प्यारा नाम दिया है। दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती, दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती, यूं ही कच्चे धागे से ये दोस्ती, इस धागे से मजबूत तो कोई जंजीर भी नहीं होती। बहुत सही फरमाया आपने माला सुमाहू जी। माला सुमाहू जी हमारा साथ अपने बच्चों के साथ साथ मिलकर दे रही हैं। उनके बेटे सुयश, बहू आशा और पोतियां हैं आयुषी, पोती आयुषी भी है जो कनाडा से आए हुए हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। सो आप लोगों का इससे बहुत ही प्यारा रहे, बहुत ही फ्रूटफुल रहे, यही हमारी दुआ है। और उधर त्रियोले से सूरज शर्मा सजादा जी हमारा साथ दे रहे हैं और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इधर विश्वानी जी हमारा साथ दे रही हैं वाकवा से। विश्वानी जी ने हमें बताया कि उनके यहाँ हनुमान पूजा रखी है उन्होंने और महाप्रसाद की तैयारी में लगे हुए हैं इस वक्त, और यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है हनुमान जी से कि सुख शांति उनके परिवार में रहे, सारे संसार में रहे। तो विश्वानी जी की तरफ से उनके पूरे परिवार के नाम, उनकी बहनें शुभा और इंदिरा के नाम, सखियों नीला और प्रतिभा के नाम, शारदा जी, गीता गजाधर जी के नाम और सभी लोगों के नाम, अब बस यही प्रार्थना है हनुमान जी से कि आपके जीवन में सुख शांति का वास हो। उधर हमें बहुत प्यारा सा मैसेज मिला है लक्ष्मण सिगोबिन जी की तरफ से। लक्ष्मण सिगोबिन जी अपने पूरे परिवार को और क्लेफों वाकुआ के शिव मंदिर के भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। ये रविवार उन लोगों के लिए बहुत मंगलमय रहे, यही

आपका साथ जब विशेष के साथ है तो बेशक बेस्ट विशेष हम ज़रूर पढ़ेंगे। हमारा साथ दे रही है मीला गामसामी जी। मीला गामसामी जी का आज जन्मदिन है और मीला जी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। उम्मीद यही करते हैं कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय रहे, आपके जीवन में बहुत सारा सुख, बहुत सारी शांति रहे। मीला जी, मीला जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको शुभकामनाएं मिली हैं उनकी मामा प्रेमा सन्यासी जी की तरफ से, बहन सिमी आपालू की तरफ से, उनकी बेटियों की तरफ से रुदीना, शिवना और लोना, उनकी नातीने हैं कायरा और आनिया, और उनके पति श्याम की तरफ से, उनके दामाद नीलेश और दिलान की तरफ से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको बहुत बहुत सारी खुशियां मिले, बहुत सारे ऐसे पल मिले जिनमें छोटी छोटी ऐसी खुशियां हो जिससे आपका जीवन बरकरार रहे खुशियों के बीच। जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, यही उम्मीद करते हैं कि आपका जन्मदिन आपके लिए बहुत स्पेशल रहे। और ऐसे में हमारी आपकी इस मुलाकात में जिस गाने की फरमाइश आपने की वही हम चला रहे हैं, क्योंकि है बर्थडे आपका, सो आपको नहीं करेंगे निराश। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे।

और चलिए ये ब्लेस्ड संडे है आप सबों के लिए, यही हमारी उम्मीद है और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं की भी उम्मीदें हैं। उम्मीदें यूं ही बरकरार रखिएगा क्योंकि इन्हीं उम्मीदों के सहारे हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, बहुत सुकून हासिल कर सकते हैं। सुदेवी जी वाकवा से हमारा साथ दे रही हैं और त्रियोले की दीदी ललिता और कुशल फैमिली को ये संडे की मंगल कामनाएं दे रही हैं। आत्माराम भैया के लिए, ऑस्ट्रेलिया के विमल, वर्षा, वीर, निया के लिए और जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं उन सबको मंगल कामनाएं भेज रही हैं सुदेवी जी। मालेगा के राम रतन परिवार को भी वंडरफुल संडे की मंगल कामनाएं भेज रही हैं। उधर साधना जी हवेदे खेल से अपनी पूरी फैमिली को, लवली फैमिली को बहुत सारा प्यार भेज रही हैं। अपने पति देवानंद, उनके सब, उनकी बहनों के लिए, पद्मा के लिए, शारदा, हेवंती, सुरेखा, बेला और बहुत सारे बहुत लोगों के लिए जिन जिनको जानती है, उनकी सब ननंद हैं और जीवन परिवार है वेदिक रेवल के, उन सबको मंगल कामनाएं। संडे उनका बहुत ही प्यारा रहे, बहुत ही सुकूनदायक रहे, यही उम्मीद है। और इधर आकाश चेतन मनसुख बॉम्बू से हमारा साथ दे रहे हैं और उनके साथ उनकी मामा प्रीति, पापा क्रिश, उनकी दोनों बहनें उर्वशी और विश्नी, जीजू विनेश, उनके नेफ्यू केहान, नानी गीता ऑफ क्यूपी फ्रेसाइड और उनके दोनों दोस्त दिशाल और युदीन हैं और पूरा मनसुख परिवार बॉम्बू से हमारा साथ दे रहा है। तो चलिए बढ़ जाते हैं हमारे कार्यक्रम में अच्छे गानों के साथ, प्यारे गानों के साथ। आरजू मूवी का ये गाना उदित नारायण की आवाज़ में।

पैगामों का ये गुलदस्ता है। पैगामों के गुलदस्ते में जो फूल हमारे हाथ लगा है, अभी हम बताएं आपको कितना सुंदर फूल है। ये फूल भेजा गया है सुनीता जी की तरफ से, जो कि दागुचे की रहने वाली है। शुभ रविवार सभी को विश किया है उन्होंने, और दिविश के जन्मदिन के अवसर पर क्यूपिप के सूरत परिवार की तरफ से दिविश जी को बहुत बहुत मंगल कामनाएँ भेजी है। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू दिविश जी, आपके पूरे परिवार की तरफ से, पत्नी दुषिका, दादी विद्यावंती की तरफ से, मामा सीता, पापा सुधीर, शान की तरफ से, शुभम, शौविन की तरफ से, भवन की तरफ से, और चाचा सुनील, चाची पूर्णिमा और छोटा अश्रय की तरफ से दागुच

के बिहारी परिवार, फूफू सुनीता, संदीप, प्रिया और श्रवण की तरफ से बहुत बहुत सा आशीर्वाद, और दिविश को बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारी तरक्कियाँ मिले, ऐसी दुआ की गई की है सुनीता जी ने और पूरे परिवार ने मिलकर। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। दिविश जी, आपको एक बहुत ही प्यारा सा बर्थडे मिले और बहुत प्यारे पल मिले।

जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम देते हैं मयूर को। बुधगदो के मयूर जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी पत्नी लक्ष्मी की तरफ से, पापा प्रेमनाथ की तरफ से, मामा सुनीता, भाई मनीष और मानव की तरफ से, भाभी अंजलि की तरफ से, प्यारे से छोटे से विवान की तरफ से, और मयूर जी की बहन दर्शनी की तरफ से मयूर जी को बहुत सारी मंगल कामनाएँ मिली हैं। और पप्पू विश्वानी जी ने तो बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मयूर जी। हमारी पूरी टीम आपको बर्थडे विश कर रही है।

इधर कविदास सोयजादा जी का जन्मदिन था कल और उन्हें विशेष मिल रहे हैं पूरे सोयजादा परिवार की तरफ से, लोबित फैमिली की तरफ से, स्पेशली प्रयान की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको कविता जी हमारी पूरी टीम की तरफ से।

और चांदनी पुरुषोत्तम जी ने ब्रिटानिया से मैसेज भेजा है कि 30th जून को उनके पति प्रीतम का जन्मदिन है और उनको मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं पूरे परिवार की ओर से, उनकी पत्नी चांदनी की तरफ से बेशक, बेटी युषा, बेटे रुद्र की तरफ से, सासू माँ सीता, पुरुषोत्तम परिवार और चौथी परिवार की तरफ से जो सैंपिया के रहने वाले हैं।

और चलिए बौद्ध विश करते हैं हम प्यारे से हिदायत को पौंपाने के हिदायत अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उन्हें दादी की तरफ से ढेर सारी दवाएं मिली हैं, उनके पापा गालिब की तरफ से, मामा शाजिया, चाचा चाची की तरफ से, कजिन्स की तरफ से ढेर सारी मंगल कामनाएं। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हिदायत, उम्मीद करते हैं कि आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको ढेर सारी खुशियाँ मिले और ढेर सारी तरक्कियाँ मिले और आपके परिवार के बीच में आप हमेशा खुश रहें, हमेशा सुखी रहें। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हिदायत।

बस इसी गाने के साथ, इसी विश के साथ हमारा पैगाम आपके नाम कार्यक्रम समाप्त होता है। उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा ये प्रोग्राम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारा साथ दिया। 9 बजे आप सुन पाएंगे आज का आज के संक्षिप्त समाचार, और उसके बाद आप सुनिएगा आज का मंगलाचरण कार्यक्रम जिसे पेश करेंगे विकास। तो हमारी आपकी अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। शुभ रविवार, नमस्कार।

जाते जाते हम प्रहलाद धनु जी को हैप्पी बर्थडे कहते चलते हैं। अभी अभी मैसेज आया उनका, सो चलिए उनके लिए मंगल कामना का गुलदस्ता तो ज़रूर हम पेश करेंगे। उनकी बेटी आशा, उनके दामाद धीरज की तरफ से बेटे किशन और उनकी पत्नी मीता की तरफ से सिस्टर इन लॉ अनीता, शकुंतला साधना, प्रतिमा की तरफ से ब्रदर इन लॉ प्रकाश की तरफ से कोमल की तरफ से, फिर ग्रैंडसन कृष्णा, उद्धव की तरफ से कियान और वियान की तरफ से।

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार अभी से। अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स की उड़ान HM-48 से माही द्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना राम गुलाम सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले, राजदूत इयान मैडलेन और अन्य लोगों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशेल्स में दूसरी यात्रा है और मस्कारेंस कॉन्टिनेंटल शेल्स के संयुक्त प्रबंधन के क्षेत्र के सतत विकास में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाले मजबूत रिश्तों पर भी जोर दिया गया। नर्सिंग एसोसिएशन की प्रतिनिधि गामा नावजादिक का मानना है कि नर्सों के ट्रेनिंग के लिए एक समर्पित कैंपस का निर्माण आज के समय में बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार ये कदम नई पीढ़ी को तैयार करने और स्वास्थ्य प्रणाली की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रस्ताव ऐसे समय में आए हैं जब बजट 2026-2027 में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए 2,220 स्वास्थ्य पेशेवरों की भर्ती का प्रावधान किया गया है। बजट 2026-2027 के तहत सरकार प्राथमिक स्कूलों में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक स्पेशलाइज्ड अर्ली इंटरवेंशन यूनिट बनाने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य है उन बच्चों की सहायता को मजबूत करना जिन्हें अपने विकास में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द इंक्लूजन स्टेशन नामक एक मल्टीडिसिप्लिनरी सपोर्ट स्ट्रक्चर की निदेशक और स्पीच थेरापिस्ट नज़ा के अनुसार शुरुआत में ही हस्तक्षेप करने से बच्चों की प्रगति को बेहतर ढंग से सहारा जा सकता है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कराची शहर में कल शाम को 27 जून की रात खासकर जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद गोलीबारी भी हुई। हमले में 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हो गए। 28 जून को यानी कि आज ग्रुप जे, के और एल के अंतिम मैचों के साथ ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो गया। जी हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, जहां पर इंग्लैंड, अर्जेंटीना, क्रोएशिया जैसी बड़ी टीमों ने अपने मुकाबले जीते जबकि पुर्तगाल और कोलंबिया का हाई प्रोफाइल मैच रहा। जूड बेलिंगहैम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड ने 2-0 से जीत दर्ज की। हैरीकेन ने भी एक गोल दागकर इंग्लैंड के लिए नया इतिहास रचा। क्रोएशिया ने गाना को 2-1 से हराया। निकोला व्लासिक ने अंतिम समय में निर्णायक गोल किया। उधर मियामी में खेला गया एक रोमांचक मुकाबला यानी कि कोलंबिया बनाम पुर्तगाल, जहां पर ड्रॉ रहा 0-0। कोलंबिया ग्रुप में शीर्ष पर रहा और पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रहकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचा। उधर कोंगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। और जहां तक अल्जीरिया बनाम ऑस्ट्रिया की बात है तो इस दौड़ में सबसे रोमांचक मैच रहा। रियाद महरेज के 2 गोलों की मदद से अल्जीरिया ने ऑस्ट्रिया के साथ 3-3 से थ्रिलर ड्रॉ खेला। उधर डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से आसानी से हराकर ग्रुप में पहला स्थान हासिल किया। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: विक्टोरिया रोड थ्रू द डूस में, विक्टोरिया रोड थ्रू द डूस में 76 साल के 76 इयर्स ओल्ड के श्री प्रेमचंद सिधियान, श्री प्रेमचंद सिधियान जिन्हें सब लोग बुलेल के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे, आज सपहर के 3 बजे उन्हीं के घर विक्टोरिया रोड थ्रूडूस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉन्डेमास का कृष्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट 3:30 PM बाबूलाल लेन मोंडालबिया में, बाबूलाल लेन मोंडालबिया में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल, श्रीमती इंद्रावती बाबूलाल पैदाशिया नाम गिरधारी और जिन्हें इंदिरा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे, आज दिन के 1 बजे उन्हीं के घर बाबूलाल लेन मोंडालबिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेमायों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM और एवेन्यू हिरोंडेल लापे पीटों में, एवेन्यू हिरोंडेल लापे पीटों में 48 साल की 48 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती मालिनी मुकेन, श्रीमती मालिनी मुकेन पैदाइशी नाम चेंगन और जिन्हें सब लोग वानिदा के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के 3 बजे, आज सपहर के 3 बजे उनके पति श्री मगावेन मुकेन के घर एवेन्यू हिरोंडेल लापे पीटों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीटों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रोमेशन टूडे एट 3 PM इन सभी शुक्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
2: 819 kHz पर, 19 kHz पर, Radio Mauritius.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम है मंगलाचरण रेडियो मॉरिशस पर। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी भाव के साथ आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ेंगे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारणी सभा से डॉक्टर आचार्य सुनील जी और साथ होंगे आचार्य सूर्य प्रकाश खेदू शास्त्री जी। आज के कार्यक्रम का विशेष विषय रहेगा सत्यार्थ प्रकाश। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मंत्र पाठ के साथ।
1: ओम युक्त्वा यसविता देवान् स्वर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुवातितात्।
2: प्रकाश स्वरूप परमात्मा भक्तों को भरपूर सुख प्रदान करता है। वही भक्तों को शुभ कर्म एवं दिव्य गुणों के साथ जोड़ने की प्रेरणा देता है। वह उपासकों की बुद्धि एवं मन और आत्मा में अपनी आनंद स्वरूप किरणों को फैलाता है। जैसे सविता देव सूर्य अपने ऊर्जामय किरणों से सबको लाभ पहुंचाता है, उसी प्रकार परमात्मा अपनी बृहद ज्योति से सबके हृदय को प्रकाशित करता है। वही सबको जन्म प्रदान करता है और ज्ञान अन्न धन आदि साधनों से सबको प्रसन्न रखता है।

मनुष्य जब धार्मिक श्रेष्ठ विद्वानों के संपर्क में आता है और उनसे उत्तम शिक्षा ग्रहण करता है, तभी उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। जब मनुष्य सत्य विद्या एवं पदार्थ विद्या को प्राप्त करता है, तभी पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थों के सही ज्ञान द्वारा सुख प्राप्त करता है। शिक्षा और संस्कार जीवन के विकास के मूल स्तंभ हैं। उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार, उत्तम सत्संग और सत्य विद्या को पाकर एवं अंतर्यामी परमेश्वर के उपदेश को ग्रहण कर मनुष्य अज्ञान अंधकार में इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि अपनी और अन्यों की उन्नति में अपना योगदान देते रहते हैं।

0: जिस प्रकार उत्तम संविधा के विधिवत प्रयोग से यज्ञाग्नि को बढ़ाया जाता है और मनोवांछित फल प्राप्ति हेतु मंत्र पूर्वक उत्तम हवि की आहुतियां दी जाती हैं, उसी प्रकार हम सद्विद्या, उत्तम संस्कार और सद्व्यवहार द्वारा अपनी वाणी, बुद्धि और मन को पवित्र तथा सामर्थ्यवान बनाए, ताकि अन्न एवं धन की प्राप्ति के लिए हम महान पुरुषार्थ करते रहें। हम सदा उन महापुरुषों के संपर्क में रहें जो हमें उन्नति के पथ पर चलाते हैं और हमें सुख का दर्शन कराते हैं।
1: ओम श्री

0: जानह।
1: परमात्मा उपदेश करते हैं कि हे याजिक लोगो, तुम उत्तम बुद्धि द्वारा अनुष्ठानी बनकर यज्ञ का सेवन करो, यज्ञ करते रहो, क्योंकि तुम्हारे तप से उत्पन्न हुआ तुम्हारे मनोरथ को परिपूर्ण करता है। जब तक पुरुष पूर्ण तपस्वी बनकर अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए उद्यत नहीं होता, तब तक उस लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती। इसलिए धर्म प्रेमी, यज्ञ करने वाले याजिक लोग अपने वैदिक लक्ष्यों की पूर्ति तपस्वी बनकर ही करनी चाहिए।

0: धनी सदन्तेषं जना यदा शुषेवहं ता।
1: सत्य ज्ञान और विज्ञान से भरपूर विद्वानों के लिए परमात्मा आज्ञा देते हैं कि जिन जिन स्थानों में प्रजाजन निवास करते हैं उन उन स्थानों में जाकर प्रजा के कल्याण के लिए विद्या एवं धनैश्वर्य की वृद्धि करो। अनेक प्रकार की औषधियों के प्रयोग के विषयों में उत्तम से उत्तम ज्ञान दो, सत्य ज्ञान दो। प्रजा के स्वास्थ्य की सदा रक्षा करो। प्रजा को संगठित और निष्ठावान बनाने के लिए नीति विद्या में उन्हें निपुण बनाओ। विज्ञान एवं विमान विद्या की शिक्षा दो। अन्य विद्याओं को भी उपलब्ध करते कराते हुए अपने याजकों के ऐश्वर्य बढ़ाने में सहायक बनो।

0: मंत्र पाठ के बाद आइए मिलते हैं डॉक्टर आचार्य सुनील जी से, जिनका आज का विषय रहेगा धर्म अधर्म आचार और अनाचार।
1: ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर नमन। मंगलाचरण कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है सत्यार्थ प्रकाश में धर्म अधर्म आचार और अनाचार का उल्लेख। धर्म क्या है? महर्षि दयानंद जी का मानना है कि जो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य भाषण आदि युक्त ईश्वर आज्ञा का पालन और जो वेदों से अविरुद्ध हैं अर्थात वेद अनुकूल कार्य हैं उसको धर्म कहते हैं। अधर्म क्या है? महर्षि जी का मानना है कि जो पक्षपात से जुड़ा हुआ अन्याय करना, मिथ्या भाषण अर्थात झूठ बोलना, ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करना, वेद के विरुद्ध चलना उसको अधर्म कहते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में धर्म के चतुर्विध लक्षण का उल्लेख है। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का पहला लक्षण है वेद। वेद परमात्मा का ज्ञान है। वेद परमात्मा की अमर वाणी है। वेद अपौरुषेय है, यानी कोई सामान्य पुरुष द्वारा नहीं रचा गया बल्कि परमात्मा के द्वारा चार पवित्र आत्माओं के हृदय में उतारे गए। सृष्टि के आरंभ में वेद का ज्ञान प्रथम ऋषियों के हृदय में प्रकाशित किया गया। चार ब्रह्म ऋषियों ने अपने तप के द्वारा वेद ज्ञान को श्रवण किया, श्रवण करके आत्मसात किया, फिर अन्य ऋषियों को सुनाया। अग्नि वायु आदित्य और अंगिरा ये चार ब्रह्म ऋषियों को वेदों का ज्ञान इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वे सृष्टि के आरंभ में सर्वाधिक पवित्र आत्माएं और परम योगी थे। अग्नि ऋषि को ऋग्वेद, वायु ऋषि को यजुर्वेद, आदित्य ऋषि को सामवेद और अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद प्राप्त हुआ। इन चार ब्रह्म ऋषियों ने वेद ज्ञान को ग्रहण कर अन्य ऋषियों को सुनाया। सुनने सुनाने की परंपरा वहीं से आरंभ हुई। यदि सुनने सुनाने की परंपरा समाप्त हो जाती तो वेदों का ज्ञान लुप्त हो जाता। वेद परमात्मा का वह दिव्य वाणी है जो मानव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। चारों वेद मानव को सही रूप से जीना सिखाते हैं। धर्म का दूसरा लक्षण है स्मृति। स्मृति का अर्थ है ऋषियों द्वारा स्मरण किए हुए वेदानुकूल ज्ञान। वह ऋषियों द्वारा रचित मनुस्मृति आदि ग्रंथ जिनमें अनेक नीति नियम निर्धारित किए गए हैं। धर्म का तीसरा लक्षण है सदाचार, अच्छा आचरण, अच्छा चरित्र, अत्यंत श्रेष्ठ कर्म, पक्षपात रहित धार्मिक महात्मा एवं उत्तम विद्वान पुरुषों व महापुरुषों

पुरुषों का व्यवहार सदाचार कहलाता है। वेदादि शास्त्र एवं महान पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना भी सदाचार कहलाता है, उनके विपरीत चलना दुराचार कहलाता है। सदाचार पुण्य एवं श्रेष्ठ आचरण का परिचायक है, दुराचार पाप एवं दुष्टाचरण का पर्याय है।

कर्मः श्रुत युक्तः स्मार्थ एव च। वेद एवं शास्त्र के अनुकूल श्रेष्ठ आचरण ही परम धर्म कहलाता है। धर्म का चौथा लक्षण है स्वस्य प्रियमात्मनः, जो अंतरात्मा को प्रिय लगे, जो अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अनुसार हो, जो अपनी आत्मा के अनुकूल हो। आत्मा व अंतरात्मा की वह आवाज़ जिसमें किसी भी झूठ या अन्याय के लिए कोई स्थान न हो। अंतरात्मा की आवाज़ धर्म का पर्याय है, अंतरात्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ है। पक्षपात रहित न्याय, सत्य को स्वीकारना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। इसके विपरीत पक्षपात करना, अन्याय करना और असत्य का आचरण करना, असत्य को अपनाना अधर्म है। धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। महर्षि दयानंद ने वेद को सर्वोपरि माना है। उनके विचार स्पष्ट हैं कि यदि किसी स्मृति, पुराण या अन्य ग्रंथों की बात वेदों से टकराती है, वेदों के विपरीत में आती है, तो वेदों की बात को ही परम सत्य माना जाएगा। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में धर्म संचय, दुष्टाचरण व दुराचार से दूर रहने का उल्लेख इस प्रकार किया है। धर्म शनै संचिनुयाद बल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वभूतानि अपीडयन्। स्त्री पुरुष को चाहिए कि वे किसी भी जीव को पीड़ा दिए बिना धीरे धीरे धर्म का संचय करें। धर्म का संचय कैसे करें, तो उत्तर मिलता है कि दीमक के समान, जैसे दीमक मिट्टी के कणों से धीरे धीरे अपना घर बना लेती है, इसी प्रकार अगले जन्म के लिए धर्म इकट्ठा करते रहना चाहिए। चौथे समुलास में ही महर्षि दयानंद ने धर्म को जीव का सच्चा साथी बताते हुए पाप कर्म से दूर रहने का उपदेश दिया। महर्षि जी ने महाभारत के उद्योग पर्व से एक श्लोक प्रस्तुत किया, जिसमें बताया गया कि पाप कर्म का मुख्य कर्ता ही दोष व पाप का भागी बनता है। एकाह पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजनः भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते। एक व्यक्ति पाप करता है, परंतु उसका फल पूरा परिवार या समूह भोगता है। भोगने वाले तो बाद में मुक्त हो जाते हैं, परंतु पाप करने वाला मुख्य कर्ता ही दोष का प्रमुख भागी बनता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति पाप करता है वही पाप का मुख्य भोगता होता है, परंतु जो पाप करने वाले के साथ होता है या साथ देता है, तो उस पाप का कठोर प्रभाव साथ रहने वाले को भी प्रभावित करता है, उन्हें भयभीत और दुखी करता है। चौथे समुलास में ही आगे महर्षि दयानंद बताते हैं, जीव अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। वह अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भी अकेला ही भोगता है। मृत्यु के पश्चात जीव के साथ क्या जाता है? मृत शरीर को मिट्टी के ढेले के समान माना गया है। मृत्यु उपरांत जीव का परम सहायक कौन है, इस पर महर्षि जी वर्णन करते हैं, मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठ लोष्ठ समम क्षितौ विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्तम अनुगच्छति नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता चतिष्ठतः न पुत्रदारम न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवलः। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके संग संबंधी उसके शरीर को मिट्टी के ढेले के समान मृतशय्या अर्थात छिता पर छोड़कर अंतिम संस्कार के बाद लौट आते हैं। कोई भी उसके साथ नहीं जाता, केवल उसका संचित कर्म व किया हुआ धर्म ही, अपनाया हुआ धर्म ही उसका एकमात्र साथी होता है। इसलिए कहा गया है, जो जैसा बोता है वह वैसा ही फसल काटता है। परलोक में केवल धर्म ही मित्र और रक्षक के समान होता है।
संसार में

एक धर्म ही मित्र हैं जो मृत्यु के पश्चात भी साथ जाता है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट कहा है कि कभी अधर्म का आचरण न करें। किया हुआ अधर्म कभी निष्फल नहीं होता। अधर्म का परिणाम एक दिन भोगना ही पड़ता है। जैसे गाय की सेवा का फल दूध आदि सात्विक आहार तत्काल प्राप्त नहीं होता, वैसे ही किए हुए पाप व अधर्म का फल भी तुरंत प्राप्त नहीं होता, किंतु धीरे धीरे अधर्मी के सुखों को रोकता हुआ सुख की जड़ों को काट देता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए महर्षि दयानंद ने मनुस्मृति का प्रमाण प्रस्तुत किया है। अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। छल कपट और बेईमानी करने वाला अधर्मी मनुष्य शुरुआत में उन्नति करता हुआ दिखाई देता है। वह सुख सुविधा और ऐश्वर्य भी प्राप्त कर लेता है और अपने शत्रुओं पर भी विजय पा लेता है। अंत में वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान समूल नष्ट हो जाता है। धर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर, समाज और राष्ट्र में शांति बनी रहती है, और अधर्म के कार्यों में प्रवृत्त होने से घर, समाज और राष्ट्र की शांति भंग हो जाती है। अतः चौथे समुलास में स्पष्ट किया गया है, अधर्मी मनुष्य जड़ समेत पूरी तरह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे जड़ कट जाने पर एक हरा भरा पेड़ नष्ट हो जाता है। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में ही समझाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और हिंसक, क्रूर या दुराचारी लोगों की संगति से दूर रहता है, वह सच्चा धार्मिक है। संसार के सभी व्यवहार वाणी पर ही निर्भर करते हैं। जो व्यक्ति छल कपट और मिथ्या भाषण द्वारा अपनी वाणी को दूषित करता है, वह सब पापों का भागी बनता है। चौथे समुलास में ही बुरे आचरण के दुष्परिणामों को रेखांकित किया गया है। पहला है सामाजिक निंदा, ये पहला दुष्परिणाम है। दुराचारी व्यक्ति समाज और सज्जनों के बीच हमेशा निंदा व अपमान का पात्र बनता है। दूसरा दुष्परिणाम है दुख और रोग। दुराचारी व्यक्ति जीवन में निरंतर दुखों का भागी बनता है और सदैव कमजोरियों एवं बीमारियों से घिरा रहता है। तीसरा दुष्परिणाम है अल्पायु। कुसंस्कारों और गलत आदतों के कारण दुराचारी मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। वह अल्पायु अर्थात कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्यों को दुराचार से बचने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। सत्यार प्रकाश के चौथे समुलास में महर्षि दयानंद का स्पष्ट कथन है, सदा धर्मयुक्त कर्मों का सेवन करें, अधर्मयुक्त कर्मों का हमेशा त्याग करें। धर्मयुक्त कार्यों में पुण्य की वृद्धि होती है और अधर्मयुक्त कार्यों में पाप की वृद्धि होती है। तृतीय समुलास में महर्षि दयानंद जी ने मनुस्मृति के श्लोक को धृत करते हुए सदाचार अर्थात नैतिक आचरण पर जोर दिया है और उसे परम धर्म माना है। आचार परमो धर्म श्रुतयुक्त स्मार्त एव च तस्मात् अस्मिन् युक्तो नित्यं स्यात् आत्मवान् द्विजः। आचार परम धर्म है अर्थात वेद एवं शास्त्र अनुकूल आचरण ही धर्म कहलाता है। जब हम इसे नित्य अपने जीवन से जोड़ देते हैं तभी हम धार्मिक कहलाने के योग्य होते हैं। तृतीय समुलास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदोक्त कर्म और सदाचार का महत्व बताते हुए आचारहीनता का दुष्परिणाम भी बताए हैं। उनका कहना है कि जो व्यक्ति वेदों और शास्त्रों को पढ़ता या सुनता है परंतु उसके अनुकूल श्रेष्ठ आचरण नहीं करता, वह पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। सच्चा सुख तभी मिलता है जब मनुष्य धार्मिक और सदाचारी जीवन जीता है। आचारात द्विजह युतो विप्रो न वेद फलमश्नुते आचारेण तु संयुक्तः
संपूर्ण फल भाग भवेत, अर्थात कहने

0: सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने का फल यही है कि जो वेद और वेदानुकूल स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म का आचरण करना, इसलिए धर्म आचरण में सदा युक्त रहें, धर्म संबंधी व्यवहार में सदा जुड़े रहें, क्योंकि जो धर्म आचरण से रहित हैं वह वेद प्रतिपादित धर्मजन्य सुख स्वरूप फल को प्राप्त नहीं हो सकता, और जो विद्या पढ़ के धर्म आचरण करता है वही संपूर्ण सुख को प्राप्त करता है। महर्षि दयानंद के इस कथन से क्या समझ में आया? महर्षि जी के कथन का अभिप्राय यह है कि धर्म केवल प्रत्यय या ज्ञान तक सीमित नहीं, अपितु धर्म की सिद्धि आचरण से होती है। जी हाँ, धर्म की सिद्धि आचरण से ही होती है। तीसरे समुल्लास में महर्षि दयानंद ने वेदों की निंदा करने वाले को नास्तिक की संज्ञा दी, नास्तिको वेद निंदकः। जो व्यक्ति वेदों और उनके अनुकूल ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथों का अपमान करता है या अवहेलना करता है उसे नास्तिक कहा गया है। ऐसे नकारात्मक और समाज को गुमराह करने वाले व्यक्ति को समाज और श्रेष्ठ पुरुषों की संगति से दूर रखना चाहिए और बहिष्कार भी करना चाहिए। परोपकार करना, अन्यों का हित करना, पक्षपात रहित न्याय, सत्य को स्वीकारना और असत्य को छोड़ना ही धर्म है। इसके विपरीत पक्षपात करना, अन्याय करना, अत्याचार करना, दुख देना, किसी का अहित करना, हिंसा करना, असत्य के पक्ष में रहना, चालाकी से किसी को धोखा देना अधर्म है। महर्षि दयानंद ने वेद को सर्वोपरि माना है, क्योंकि धर्म का आदि स्रोत वेद ही है। इस प्रकार से महर्षि जी के विचार स्पष्ट हैं कि यदि किसी स्मृति, पुराण या अन्य ग्रंथों की बात वेदों से मेल नहीं खाती हो अथवा वेदों के विरुद्ध हो, तो इस स्थिति में वेदों की बात को ही परम प्रमाण और परम सत्य माना जाएगा और दूसरी बात को अमान्य कर दिया जाएगा। जो धर्म के ज्ञान की इच्छा करें वे वेद द्वारा धर्म का निश्चय करें, क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के ठीक ठीक नहीं होता। महर्षि दयानंद ने सत्यार प्रकाश के 10वें समुल्लास में धर्म को आचरण का विषय माना। उन्होंने धर्म को आचरण में लीन होने की प्रेरणा दी, क्योंकि सही आचरण में ही धर्म का सुख छिपा होता है। धर्माचरण करने वाले को आंतरिक सुख और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जीवन को सुखी बनाने के लिए आचरण के 4 स्तंभ बताए गए हैं। प्रथम स्तंभ, धर्म युक्त कर्मों में प्रवृत्त होना, राइटस एक्शन, एवं पाप कर्म से दूर रहना। दूसरा स्तंभ है सुशीलता, अर्थात चरित्र, वाणी और व्यवहार को शुद्ध करना, कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट ऑफ कैरेक्टर, स्पीच एंड मैनर्स। तीसरा स्तंभ है सत्पुरुषों का संग, अच्छे लोगों के साथ रहना, एसोसिएशन विद वर्चुअस पर्संस। चौथा स्तंभ है सद्विद्या के ग्रहण करने में रुचि, लव ऑफ ट्रू नॉलेज। सत्यार प्रकाश के 3rd समुल्लास के इस नैतिक प्रकरण से क्या सीखा? प्रथम, मार्गदर्शन का महत्व। वेद, स्मृति, सदाचार और आत्मा की आवाज हमारा मार्गदर्शन करते हैं। द्वितीय, जब कभी धर्म या आचरण को लेकर मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो तो वेदज्ञ आप्त पुरुष, महात्मा विद्वान और अनुभवी गुरु ज्ञानी शुभचिंतक लोगों से परामर्श लेकर आगे बढ़ें और वेद का अनुसरण करें। तृतीय, समाज में यत्र तत्र धार्मिक बातें अधिक होती हैं, आचरण कम। केवल धार्मिक बातें जानना पर्याप्त नहीं। महर्षि दयानंद का मानना है कि धर्म का वास्तविक फल अपने व्यवहार और आचरण में उतारने से मिलता है। चौथा है, धर्माचरण के लिए अच्छे संस्कारों की आवश्यकता होती है। पांचवा है, वेद शास्त्रों के अनुकूल किया गया व्यवहार व आचरण मनुष्य को महान बनाता है। छठा है, धर्माचरण में सुख का कारण, अर्थात धर्माचरण करने से मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: आपकी वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सुनील जी। आइए एक भजन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कार्य

0: आइए मिलते हैं आचार्य सूरज प्रकाश खेदू शास्त्री जी से, जिनका आज का विषय रहेगा सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति का उल्लेख।
1: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पां सुडे। ओम शांति शांति शांति ही। मंगलाचरण कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में आए मुक्ति विषय पर प्रकाश डालेंगे। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत महर्षि दयानंद जी ने जीवन व समाज के अनेक भौतिक एवं आध्यात्मिक विषयों पर शास्त्र सम्मत मंतव्य रखे हैं। जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है कि वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करे। अनंत जीवात्माएं अनंत शरीरों में विद्यमान होकर अपने अपने कर्मों का भोग कर रहे हैं, परंतु जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मानव शरीर ही एकमात्र साधन है। अर्थात जीवात्मा मानव शरीर में आकर के उपासना आदि के माध्यम से मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर पाता है। इसी मानव चोला को माध्यम बनाकर हम सांसारिक आवागमन से छूट पाते हैं। परंतु यह मुक्ति है क्या? स्वामी जी लिखते हैं, मुंचन्ति पृथक भवन्ति जना यस्याम सा मुक्ति ही। जीवात्मा जब दुख से छूटकर परम सुख को प्राप्त होता है एवं ब्रह्म की व्यवस्था में रहता है, इसी का नाम मुक्ति है। जीवात्मा का किसी शरीर में आना ही अपने आप में एक दुख होता है, और जो बंधन में होता है उसी को मुक्ति की आवश्यकता होती है। स्वामी जी लिखते हैं कि जीवात्मा अविद्या के कारण बंधन में पड़ता है, अतः जब तक जीवात्मा अविद्या में पड़ी रहेगी तब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होगा। विपरीत ज्ञान को अविद्या कहा गया है। इस कारण आर्य समाज के 8वें नियम में स्वामी जी लिखते हैं, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 14वें मंत्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, विद्यांचा यस्तद्वेदो भयंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह अविद्या अर्थात कर्म उपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। कहने का भाव यही है कि विद्या से मुक्ति एवं अविद्या से बंधन की प्राप्ति होती है। उपनिषद में भी आया है, यदा पंचा वतिष्ठन्ते जानानि मनसा सह बुधिश्चन विचेष्ठन्ते समातामासु परमां गतिम। जब मन एवं पंच ज्ञान इंद्रियां विद्या आदि से शुद्ध होकर जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय

स्थिर होता है तब उस आत्मा को परम गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति का प्रथम साधन यहाँ पर विद्या है। विद्या के साथ साथ महर्षि दयानंद जी मुक्ति के और अन्य चार मुख्य उपायों का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि यदि कोई मुक्ति चाहे तो वह मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों से अलग रहें, क्योंकि पाप का फल दुख होता है और पुण्य का फल सुख। बंधन अपने आप में दुख हैं और मुक्ति सुख। धर्माचरण करने से सुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि दुख का पाप आचरण और सुख का धर्माचरण मूल कारण है। छिन्ने मूले वृक्षे नश्यति तथा पापे क्षिणे दुखम नश्यति। जैसे पेड़ को जड़ से काट देने से वृक्ष नष्ट हो जाता है, वैसे ही पाप को छोड़ने से दुख नष्ट हो जाता है। अतः दुख के मूल कारण को नष्ट कर देने से सुख की प्राप्ति होती है। दुख नाश के लिए सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत्संग से ही हम धर्म को जान पाते हैं तथा पाप से दूर रहते हैं। स्वामी जी मुक्ति का दूसरा साधन वैराग्य लिखते हैं। देखे व सुने हुए विषयों में जब चित्त के अंदर कोई तृष्णा नहीं उभरती, उस अवस्था को वैराग्य कहा जाता है। स्वामी जी ने वैराग्य के लिए विवेक शब्द का प्रयोग किया है। विवेक बुद्धि से सत्य एवं असत्य की पहचान किया जाता है। स्वामी जी के अनुसार विवेक द्वारा सत्य को अपनाना तथा असत्य का त्याग करना ही वैराग्य है। इससे परमेश्वर पर्यंत सभी पदार्थों का यथार्थ गुण, कर्म एवं स्वभाव जाना जाता है। ईश्वर का आज्ञा पालन अर्थात भक्ति और उपासना में हमेशा लीन होना ही वैराग्य होता है। तीसरा साधन है षट संपत्ति। षट संपत्ति का अर्थ होता है छह प्रकार के कर्म, जिससे हम सांसारिक बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। वे छह प्रकार के कर्म हैं शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा एवं समाधान। जीवात्मा जब इन छह प्रकार के कर्मों को अपने जीवन में अपना लेता है तब मुक्ति संभव होता है। इन छह साधनों को पहले हम देखें। इनमें सबसे पहला शम आया है। शम धातु का अर्थ होता है शांति, कल्याण व रोकना। स्वामी जी लिखते हैं जिससे अपने आत्मा और अंतःकरण को अधर्माचरण से हटाकर धर्माचरण में प्रवृत्त करना। शम का अर्थ होता है आत्मा नियंत्रण। जीवात्मा को यदि मुक्ति चाहिए तो उसे पहले आत्मा एवं अंतःकरण को धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए तथा मन को गलत विचारों से हटाना चाहिए। हर क्षण धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। गलत भावों को हमेशा दूर रखना ही शम कहलाता है। शम का पालन करते हुए आत्मा में शांति की अनुभूति होती है तथा गलत व अधर्म कर्मों से हम दूर रहते हैं। अतः मुक्ति चाहने वाला जीवात्मा हमेशा गलत विचारों से दूर रहते हुए धर्माचरण में लीन रहता है। दूसरी संपत्ति है दम। स्वामी जी लिखते हैं जिससे श्रोत आदि इंद्रियों और शरीर को व्यभिचार आदि बुरे कर्मों से हटा कर जितेंद्रियत्वादि शुभ कर्मों में प्रवृत्त रखना। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये पांच कर्मेंद्रिय होते हैं। इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना ही दम कहलाता है। शारीरिक रूप से साधक को बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए तथा अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इंद्रियों का वश में न रहना ही पाप का कारण होता है। महर्षि मनु जी लिखते हैं श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ग्रात्वा च।

नरः न हृष्यति ग्लायति वासा विज्ञेयो जितेन्द्रियः। सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर या सूंघकर जिस व्यक्ति को न प्रसन्नता होती है और न ग्लानी, वह व्यक्ति जितेंद्रिय हैं। जितेंद्रिय होने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा मन भी पवित्र होता है। एक स्वस्थ शरीर में ही जीवात्मा ईश्वर की उपासना कर पाता है तथा जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो पाता है। तीसरा संपत्ति है उपरति, जिससे दुष्ट कर्म करने वाले पुरुषों से सदा दूर रहना। उपरति का अर्थ होता है कुसंग का त्याग करके बुरे कार्य करने वाले व्यक्तियों से पृथक रहना। कहा भी गया है अय दुर्जन संसर्गे पतिष्यति पतिष्यति, कुसंग में रहने वाले व्यक्ति पतित हो जाता है। दुष्ट व्यक्ति का संग करने से उसका दुष्टपन हम में आ जाता है। कुसंग के प्रभाव से सज्जन पुरुष भी दुर्जन बन जाता है। इस कारण कभी भी बूढ़े लोगों का संग नहीं करना चाहिए। कुसंग में फंसकर जीवन भर दुखी दुख की प्राप्ति होती है। अंग्रेजी भाषा में भी एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू बी अलोन दैन इन ए बैड कंपनी। दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा अकेला रहना अधिक अच्छा है। चौथा साधन है तितिक्षा। चाहे निंदा स्तुति हानि लाभ कितना भी क्यों ना हो, परंतु हर्ष शोक को छोड़ मुक्ति साधनों में सदा लगे रहना। कहने का भाव यही है कि सहनशील बन करके साधना फलीभूत होता है। कोई हमारे बारे में कुछ भला या बुरा कह रहा है, कोई मान या अपमान कर रहा है अथवा कहीं हानि या लाभ हो रहा है, इन विषयों पर ध्यान न देकर मात्र साधना में लीन रहने का नाम तितिक्षा कहलाता है। ये सब भाव साधन में बाधा एवं अड़चन लाते हैं, अतः सभी परिस्थितियों में सम रहना चाहिए, तभी मुक्ति संभव है। साधक का मात्र एक ही कार्य होता है कि वह अपने साधना में लीन रहें। पांचवा संपत्ति है श्रद्धा। स्वामी जी लिखते हैं, जो वेद आदि सत्य शास्त्र हैं और इनके बोध से पूर्ण आप्त विद्वान सत्य उपदेष्टा महाशयों के वचनों पर विश्वास करना। साधना में श्रद्धा एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रद्धा शब्द सत्य से बना है। जिसको सत्य से धारण किया जाए वह श्रद्धा है। प्रायः श्रद्धा का अर्थ विश्वास भी किया जाता है, परंतु यह विश्वास सत्य से पूर्ण होने चाहिए। अतः वेद आदि आश ग्रंथों पर एवं आप्त विद्वान पुरुषों के सत्य उपदेशों पर विश्वास रखना ही एक साधक का कर्तव्य होता है। अंतिम संपत्ति है समाधान। चित्त को एकाग्र करना ही समाधान है। योग दर्शन में भी आया है योगश्चित वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग कहलाता है। स्थिर चित्त में ही योग संभव है। चित्त की चंचलताएं व विचारों पर रोक लगाना ही योग है। साधना में चित्त को स्थिर करके परमेश्वर का ध्यान किया जाता है। ध्यान के समय कोई भी बाहरी विचार चित्त में आनी नहीं चाहिए, मात्र ईश्वर का ही ध्यान होनी चाहिए। साधक जब इन छह प्रकार के कर्मों को अपने जीवन में अपनाता है तो ये मुक्ति में सहायक बनते हैं। षट संपत्ति के बाद स्वामी जी मुमुक्षुत्व को मुक्ति का चौथा साधन मानते हैं। मुमुक्षुत्व का अर्थ होता है मुक्ति साधन और मुक्ति के अतिरिक्त दूसरे और कोई विषय में प्रीति न होना। जो पुरुष इन सब साधनों से युक्त होते हैं वही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं, और मुक्ति के लिए एक ही जन्म पर्याप्त नहीं होता, इसकी प्राप्ति अनेक जन्मों में होता है। जन्म जन्मांतरों के तपस्या

0: एवं साधना से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्वामी जी मुंडुक उपनिषद का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिनद्ये सर्व संशया क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जब जीवात्मा के अंतःकरण की अविद्या एवं अज्ञानी रूप गांठ कट जाती हैं, सब शंकाएं निर्मूल हो जाते हैं एवं सब बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तभी उस परम देव परम ब्रह्म जो आत्मा के भीतर एवं बाहर व्याप्त हैं उसमें निवास करता है। आज के लिए इतना ही। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: आज के कार्यक्रम का विशेष विषय रहा सत्यार्थ प्रकाश। हमारे आज के अतिथियों को अनेकों धन्यवाद कि समय निकालकर हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े। हमारा धन्यवाद जाता है मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारणी सभा को और आप सभी को जिन्होंने वक्त निकालकर हमारा साथ दिया इस कार्यक्रम में, धर्म अधर्म आचार और अनाचार और साथ ही में सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति का उल्लेख आज हमने इस कार्यक्रम में किया। जल्द ही मुलाकात होगी। साथ देते जाइए MBC रेडियो का। धन्यवाद।

0: सभी को नमस्कार। आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के साथ। 28 जून यानी कि आज ग्रुप जे, के और एल के अंतिम मैचों के साथ ग्रुप स्टेज का सफर समाप्त हो गया। इंग्लैंड, अर्जेंटीना और क्रोएशिया जैसी बड़ी टीमों ने अपने मुकाबले जीते, जबकि पुर्तगाल और कोलंबिया का हाई प्रोफाइल मैच ड्रो रहा। जूड बेलिंगम के शानदार प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड और पनामा के बीच हुए मैच में इंग्लैंड ने 2-0 से जीत दर्ज की है। हैरी केन ने भी एक गोल दागकर इंग्लैंड के लिए नया इतिहास रचा। क्रोएशिया ने गाना को 2-1 से हराया। निकोला व्लासिक ने अंतिम समय में निर्णायक गोल किया। हार के बावजूद गाना भी अगले दौर में पहुंच गया। मियामी में खेला गया ये रोमांचक मुकाबला 0-0 से ड्रो रहा, यानी कि कोलंबिया ग्रुप में शीर्ष पर रहा और पुर्तगाल दूसरे स्थान पर रहकर राउंड ऑफ 32 में पहुंचा। उधर कोंगो ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर नॉकआउट स्टेज के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। सबसे रोमांचक मैच में रियाद महरेज ने 2 गोलों की मदद से अल्जीरिया ने ऑस्ट्रिया के साथ 3-3 से थ्रिलर ड्रॉ खेला, जबकि डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से आसानी से हराकर ग्रुप में अपना पहला स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी कल शाम को एयर सेशल्स की उड़ान HM-48 से महाद्वीप पहुंचे। डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनकी पत्नी श्रीमती वीना रामगुलाम सेशल की स्वतंत्रता की 85 वर्षगांठ के समारोह के लिए राष्ट्रपति पैट्रिक एमिनी के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का स्वागत उपराष्ट्रपति सेबास्टियन पिले, राजदूत यान मैडलेन और अन्य महानुभावों द्वारा किया गया। ये प्रधानमंत्री की सेशल्स में दूसरी यात्रा है। इससे पहले वे अक्टूबर 2025 में राष्ट्रपति एमिनी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए आए थे। तब से मॉरिशस और सेशल्स ने अपने सहयोग को एक नए स्तर पर पहुंचाया, खासकर मार्च में राष्ट्रीय दिवस के मौके पर सेशल्स के राष्ट्रपति की मॉरिशस यात्रा के दौरान। बजट 2026-2027 में अल्पकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म बीमा पर प्रस्तावित 5% टैक्स से मेडिकल इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा को बाहर रखा जाना चाहिए। इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के महासचिव वशिष खाम कलावन ने ये मांग की है कि शुक्रवार 26 जून को बजट के उपायों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेस को बुलाया था। उनका मानना है कि इस टैक्स से मॉरिशस के नागरिकों में स्वास्थ्य बीमा लेने के प्रति उत्साह कम होने का खतरा है। उनके अनुसार ऐसे समय में जब स्वास्थ्य संबंधी खर्च लगातार बढ़ रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच 18 जून को हुए अंतरिम युद्ध विराम समझौते के केवल 10 दिन बाद ही तनाव फिर खोलकर सामने आ गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक व्यापारिक जहाज पर कथित ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के मिसाइल ड्रोन ठिकानों और तटीय रेडर केंद्रों पर हवाई हमले किए। तो ये थी अब तक की खबरें। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। थोड़ी देर में शोक समाचार। मोसेलमो ओबन बोम्बुमे 76 साल के 76 के श्री हेमराज मागा, जिन्हें सब लोग कृष्ण के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उन्हीं के घर मोसेलमो ओबन बोम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोताई सैंपिया बोम्बू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टुडे एट 11 AM। तमिल टेंपल रोड गुडलैंड्स में

0: लेंस में 70 साल की 70 years old की मिस बीबी कुर्शीदा तुगाबाली, मिस बीबी कुर्शीदा तुगाबाली जिन्हें सब लोग कुर्शीदा के नाम से भी जानते थे वो इंतकाल कर गई हैं। उनका जनाजा आज दिन के 11 बजे उनके भाई जनाब अख्तर तुगाबाली के मकान तमिल टेंपल रोड गुडलैंड से निकाल कर दफनाने के लिए बेलमो गुडलैंड का कब्रस्तान ले जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यूर में, महात्मा गांधी रोड क्रेवक्यूर में 50 साल की 50 years old की श्रीमती प्रेमिला कालीचरण पैदाशी नाम रामरा का और जिन्हें सब लोग पूनम के नाम से भी जानते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके पति श्री नवीन कालीचरण के घर महात्मा गांधी रोड खैवक्या से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामोशों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ यह है रेडियो मॉरिशस।

मोहतरम सामईन, करबला का हर लम्हा सिर्फ तारीख का एक वाकया नहीं बल्कि एक पैगाम है, कुर्बानी का, सब्र का और सबसे बढ़कर इबादत का। इमाम आली वक़ार हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किसी भी वक्त नमाज न छोड़ी। ज़रा सोचिए तो सही, वो कौन सा जज्बा था जो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को सजदे से ना रोक सकी। वो अल्लाह से कुर्बत थी, नमाज का इश्क था, वो बंदगी का कमाल था। वाकया करबला हमें सिखाता है कि नमाज कोई रस्म नहीं, ये ईमान की रूह है। और जब इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसा सरदार मैदान जंग में नमाज अदा कर सकता है तो हम किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। सामईन, हमें अपना पहला पैगाम मिल चुका है। कौमाली और बंधु फैमिलीज़ में जितने भी लोग इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह तबारक व ताला उनकी मगफ़रत फरमाए, आमीन। आप भी इसी तरह अपने पैगामात, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं 5251700 पर 5251700 5।

मोहतशम सामईन, अगर हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन से मोहब्बत का दावा करते हैं, हमें इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन की सुन्नत को अपनाना होगा। और उनकी सुन्नत यही कहती है कि नमाज हर हाल में और हर कीमत में। सामईन, मैं जानता हूँ कि ज़िंदगी में मसरूफियात बहुत हैं, कभी वक्त नहीं मिलता, कभी नींद गालिब आ जाती है, मगर याद रखिए, क़यामत के दिन पहला सवाल नमाज होगा। आइए हम सब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन के नक्शे कदम पर चलें। हालात चाहे जैसे भी हों, मौसम चाहे जैसा भी हो, दिल पर बोझ हो या दिल या दुनिया की मसरूफियात, नमाज हमें हर हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। सामईन, अगला पैगाम हमें तियागूज से मौसूल हुआ है। तियागूज से जनाब मोहसिन की तरफ से एक कलाम की फरमाइश आई है, मैं बंदाए आसी हूँ, बहुत ही मशहूर कलाम है। तो आइए ये अगला कलाम जनाब मोहसिन के नाम, उनकी फैमिली के लिए और उनके तमाम दोस्तों के लिए

आम उन लोगों के लिए हैं जो रोज आजमाइशों में होते हैं। करबला हमें बताती है कि ईमान की राह में आजमाइशें आएंगी, कभी पानी रोका जाएगा, कभी खेमे जलेंगे, कभी अपने बिछड़ेंगे, मगर दिल में यकीन बाकी रहे तो जिंदा शिकस्त नहीं खाता। हम इंसान रोज दुख दर्द, मुश्किलात, गुर्बत, बीमारी या नाइंसाफी से गुजरते हैं, मगर उस वक्त करबला को याद कीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्ने दुखों की इंतहा में भी अल्लाह तबारक व ताला से रिश्ता नहीं तोड़ा, सजदा नहीं छोड़ा, सब्र का दामन न छोड़ा, हमेशा हक पर कायम रहे। सामईन, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। लावेनिया सैंपिया से मोहतरमा बीबी परविन की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ है। आज उनके शौहर जनाब फिरोज़ बुदू की सालगिरह है। सबसे पहले तो हम उन्हें सालगिरह की मुबारकबादी पेश करते हैं पूरे एमबीसी टीम की जानिब से, और उनके बच्चों की तरफ से भी ढेर सारी दुआएं।

मोहतरम सामईन, उर्दू नशरियात बज़्मे अक़ीदत में निसार अख्तर एक बार फिर आपका इस्तकबाल करता है। आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। प्लेंदे पापाई से मोहतरमा महनाज बज्जू कहती हैं कि आज उनके शौहर जनाब अबू बज्जू की सालगिरह है, तो हम दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनकी ज़िंदगी में खुशियों और बरकतों के नए दरवाज़े खोल दे, उनके आने वाले साल को कामयाबियों, रहमतों और रोशन दिनों से भर दे। आमीन। आखिर में उन्होंने एक कलाम की फरमाइश की है। पैगामात के बाद हम एक कलाम चलाएंगे उनके लिए। अगला पैगाम ये है कि आज फिनिक्स से बीबी आदिला पीगू की आज सालगिरह है, तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उन पर हमेशा बनी रहे। अल्लाह तबारक व ताला उनको सेहत, सुकून, रिज़्क़े हलाल और बेहिसाब खैर अता फरमाए। उनकी ज़िंदगी का हर नया साल पहले से ज़्यादा खूबसूरत और बाबरकत हो। अख्तर आकिला आदिल आकिल और पीगू फैमिली की तरफ से ढेर सारी दुआएँ।

सामईन कराम, सैयदुश्शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्ह वो हस्ती हैं जिनकी शख्सियत सिर्फ मैदान करबला में नहीं बल्कि हर दौर, हर दिल, हर राह में रोशनी बिखेरती हैं। उनके किरदार का हर पहलू एक दर्स है, एक दावत है, एक रास्ता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्ह की ज़िंदगी का बुनियादी सुतून हक था, जो हक के लिए उठे, हक के लिए बोले और हक के लिए कुर्बान हो गए। सामईन, पोंप ग़ासलें पोंपलेमुस से हमें एक पैगाम मौसूल हुआ है। मोहतरमा मुनेज़ा अपने दो बेटे शकील और शुहैल के साथ कल उमरे के लिए जा रही हैं। ब्यागी जानू यागू फैमिलीज़ की तरफ से ढेर सारी दुआएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके इस मुक़द्दस सफ़र को आसान फरमाए और कबूल फरमाए, आमीन। तो ये अगला कलाम उन तीनों के नाम।

मोहतशम सामईन, ये सादत भरी उर्दू महफिल बज़्मे अकीदत जहाँ दिलों ने रब्बे दुलजलाल को याद किया, अब खामोशी की दहलीज पर हैं। सामईन, अगला आशुरा अब साल बाद आएगा, मगर हुसैन बनने का मौका हर दिन आता है। ये सिर्फ मुहर्रम का पैगाम नहीं, ये ज़िंदगी भर का रास्ता है। या रब्बे कदीर, हमें वो सब्र दे जो ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने दिखाया, वो यकीन दे जो अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर था, और वो सजदा दे जो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मैदान करबला में अदा किया। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, अब रुख्सत की घड़ी आ पहुँची। जी चाहता है ये सिलसिला यूं ही चलता रहे, मगर हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर होता है। बस यही इल्तिजा है अपने इस हमसफ़र निसार अख्तर को, दुआओं के साथ, यादों के साथ दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: 70!
1: Yeah.
2: Number five.
1: படத்தின் பெயர் மனிதன் தெய்வ மகளம்.

0: Number one. Number one.
1: Album Talli Pogra.

0: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, रेडियो मॉरिशस।
1: मुत्याल स्वरालू

好，听众朋友，接下来让我们继续来收听好歌送给您的节目。

好，听众朋友，一首优美动听的歌曲之后呢，让我们继续来收听另外一首。好，下面有请大家一起来收听

听众朋友，现在正在为您播送的是《灰姑娘》，音乐优美动听，歌声悠扬，希望大家能够喜欢。

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए इस समय या शाम के 4:13 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। श्रोताओं, कहा जाता है समय सबसे बड़ा बलवान है। समय के आगे किसी को कुछ भी नहीं मिलता और आजकल के इस आधुनिक युग में, इस कलयुग में जब भी कोई कुछ भी करता है तो वो कहता है हो गया सो हो गया और आगे चलते हैं बिना सोचे समझे कि उनका भी एक कर्म है। जो बीज बोया है उसका फल भी मिलता है। तो आज चलिए हम समय के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028085 पर, 402-80-85 पर। आप सभी का इंतज़ार है हम और आप कार्यक्रम में।

0: चलिए लाइन पर कुछ श्रोतागण अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उनके उनको हम सुनते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते लीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक। और आज हम बात कर रहे हैं लीला जी समय पर, आपका क्या कहना है इस विषय के ऊपर?
1: विषय तो बहुत बढ़िया है, आपने चुना है तो अच्छे ही चुना है। हमारे लिए समय तो निकालना ही पड़ता है, क्योंकि कैसे आज ही मैं कहूँगी, आज तो मैं घर पर हूँ, नहीं तो हर शनिवार को कहाँ पूजा होते हैं तो हम कीर्तन भजन करने चले जाते हैं ना। तो देखा आज तो समय मिला तो आपसे बात हो रही है, और समय निकालना ही पड़ता है। समय कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमें मिल जाता है, हमें खुद हमें समय निकालना पड़ता है, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए। कैसे अभी मैं कर सकती हूँ, मैं आपको फोन नहीं करती, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं आज तो समय है ना।
0: जी,
1: समय मिल गया,
0: आज
1: है।
0: समय है।
1: तो समय बहुत बड़ा चीज है, हमें निकालना ही पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में भी हम होते हैं तो हमें समय निकाल कर जाना ही पड़ता है। कहाँ पूजा है या कहाँ किसी की यहाँ शादी है, समय निकालना ही पड़ता है ना पूजा जी।
0: जी,
1: और आपके क्या, आप कैसे हैं? आप ठीक है ना?
0: मैं ठीक हूँ, बस आपको सुन रही हूँ और बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो पा रही है।
1: बहुत दिनों के बाद, मैं तो सोचती हूँ कि कब मुझे समय मिलाएगा तो आपसे बात करूंगी, लेकिन कभी लाइन नहीं मिलता है, कभी मुझे ही समय नहीं मिलता है कि आपसे बात करने के लिए।
0: इतने प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लीला जी। कहते हैं ना, कभी कभी अपने नहीं होते पर पराए हो जाते हैं अपने, और आपने समय निकाल कर मुझे जो है इस कार्यक्रम में भाग लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और आपसे बात हो गई तो अब मालूम नहीं है कब समय मिलेगा आपसे बात करने के लिए।
0: मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
1: यही समय तो बहुत बड़ा बलवान है ना, कहते हैं ना समय बड़ा बलवान, भैया समय बड़ा बलवान।
0: जी जी,
1: तो बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी, और आपको कहेंगे शुभ संध्या
0: आपको भी। धन्यवाद, नमस्ते। और आइए, एक और श्रोता है लाइन पर, उनसे हम मिलते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो इंदिरा जी, नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी,
0: कैसी हैं आप इंदिरा जी?
2: ठीक हूँ, कैसे हैं आप?
0: मैं भी ठीक।
2: ओके, समय का पंछी उड़ता चला जाए तो समय भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा जिंदगी है, उसका बहुत भारी जिंदगी है, उसको गुजरना पड़ता है। कभी दुख, कभी सुख, कभी जो भूख धूप, कभी जो आते हैं जिंदगी में, कुछ करते हैं, कुछ उसको पालना पड़ता है, उसकी समस्या करना पड़ता है, ठीक है ना, घर के परिवार, बच्चे लोगों, जब इस समय जैसे होते हैं, कभी तेज, कभी गर्म, कभी ठंडी, कभी मौसम भी जैसे ऐसा, ठीक है ना।
0: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: हम लोग ये साथी हैं, उस साथ देते हैं।
0: धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो हरीश जी, नमस्ते।
3: नमस्ते पूजा जी,
0: कैसे हैं आप?
3: तो ठीक हूँ, सिर्फ ये ठंड थोड़ा हमको अफेक्ट कर रहा है।
0: समय की बात है, नहीं समय की बात है।
3: आवाज को कुछ मैं आपको सुनाएगी तो मैं कहूँगा मेरे विचार से, हर कोई हमको 24 आवर्स मिलता है, 24 घंटे बोलते हैं ना, हम सबको 24 घंटे मिलते हैं इन वन डे, एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं हम सबको। मैं कहूँगा कि हमको कभी समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, एक मैक्सिमम यूज जितना हो सके जो भी हमको करना चाहिए समय से फायदा उठाकर करना चाहिए। एक गाना है, आई डोंट नो इफ यू नो इट, कहते हैं उस गाना में, एक पुराना गाना है, बचपन खेल कूद में बिताया और जवानी आया तो रंग रलियों में मनाई, और आज जब बुढ़ापा आया तो देख कर रोया, तो हमको ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहिए
0: जी।
3: कि समय को व्यर्थ गवाए और जब हम बुढ़ापा हो जाए तो बस रो रहे कुछ नहीं कर पाए, ये नहीं। नहीं, समय अनुसार हमको अपने जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, डिसिप्लिन जैसे अनुशासन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, हमको ऑर्गेनाइज करना चाहिए अपने अपने 24 आवर्स कैसे हम बिताएंगे, सोच विचार करके आगे पांव बढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारे कर्तव्य निभाना है, हमारी जो भी जिम्मेदारियां है हमको उसको निभाना है, वो हम 24 आवर्स में ये सब करते हैं। सभी को ये मिलता है, बचपन में या जवानी में या बुढ़ापा में, हम सबको एक कर्तव्य होना, एक बोलते हैं मिशन है, हमको एक कुछ काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए पॉजिटिव, कुछ हमको फायदा हो, कुछ लोगों को फायदा हो, हमारे परिवार को फायदा हो, हमारे देश को फायदा हो, ये मुझे कहना था। थैंक यू वेरी मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। तो श्रोतागण, आज हम समय के बारे में बात कर रहे हैं, आइए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको हम सुनते हैं। हेलो।
4: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
4: सब चल रहा है, ठीक से चल रहा है, सबसे ठीक रहा है। और आई जो प्रोग्राम रख ले
0: हाँ।
4: बहुत बढ़िया बा मतलब, और बहुत नरम और गरम है प्रोग्राम हुआ। हमने अटेंड कर सा हर जमोस के ना, सब बहुत आते रही सब है, हाई जितना छोटा लोग सब अच्छी करे लन सब बहुत आते रही सब बहुत, और हमने के लेसो मिले ला नहीं गो। हाँ, तो हाई अभी लेता हूँ जैसे चला भाई कलयुग के लेता हूँ चला बा, मतलब हाई लेता हूँ कोई मानी पीले कर ले बा, लिमोन में कितना होशियार से हो चीज, कोई मानी पीले कर ले बा जो भगवान के बना वाला
0: नहीं,

0: जब काम करबे तो पैसा मिली ना, नहीं काम करबे तो कहाँ से पैसा मिली।
1: hmm.
0: और पैसुए तो धर हमने के एगो अथी अक मजे एगो बहुत अथी अक मजे बहुत अथी रिसों अक मजे बहुत वाले के चीज।
1: hmm.
0: तो अब पैसा मिली तब ना हमने सब कुछ करब सा नहीं रही तो का हुई।
1: hmm.
0: समझ लो तो हीरा मोती है।
1: hmm.
0: और चाहे ला हमने के निमन से लेते अथी करे के ब्रिद ब्रिद गंवाई के नहीं चाहे ला।
1: hmm.
0: बहुत प्रेसियो है बहुत वाले है। और हाँ ये हमारे को छोटा सुन संदेश बा। और सब छोटा लोग के धन्यवाद करत है। और तोरो धन्यवाद करत है सब लेकिप के लेकिप है जो एम्बेसी बा लेकिप के पॉस्किट है हमने के काजो मिलता ना तो ये नहीं करत है सब काजो मिलता समझ लो।
1: हाँ जी।
0: और हमारे को हवे गीत डाल दिया कम दा बिचित खा ले पीले कुछ नहीं बा
1: नहीं।
0: काम कर हार्ड वर्क और खा ले पीले कुछ जिंदगी में का नहीं बा
1: नहीं,
0: घोड़ा उड़ा सब छोड़ के परी जाए के
1: आज त्योहार पसंद नहीं हुई काहे कि आज संत कबीर पर एगो जोन है एगो विशेष कार्यक्रम हुई तो खाली हम और आप हो आज आज त्योहार पसंद नहीं नहीं हुई।
0: हाँ तो बहुत धन्यवाद
1: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक और श्रोता है लाइन पर चलिए उनको हम सुनते हैं। हेलो
2: हेलो नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते जी आपका शुभ नाम।
2: इंदिरा में बैक से
1: इंदिरा जी आपका स्वागत है।
2: और देखनी टेलीविजन पर पकवान पर हाँ खूबे निमन निमन हो ये हम सीखनी अभी बोगस के हो जब डाले डाले अभी हम बोली ना समय के अनुशासन पर जाना जी की जैसे बोले ना एगो हो जब हम कॉलेज रहनी तो टाइम इज मनी सवे जे जैसे फजरे छः बजे तो मामा उठी बुरी पूजा पाठ करे के कैसे पहले के हो मैं वित्तीय देवे ऐसे गोल ले रहा लेको तब मैं जी ले मौजे तब सीजे शांति पाठ हो संध्या तब सीजे आदमी से दे तब सब लेका लोग खाए हो से कुमाजे तो अब कहाँ ना कोताओ सब सचिया भाईवा बोलक अब तक कल युग चलल बा अब तक लेका कैमे कब खाता कब देखबा तो कोनो चीज मुँह में डाला ता को मजा ऐसे अनुशासन ताप में नहीं बा देख अभी ये है बरिस देख तो वह छः महीना छ गल खाली छः महीना बाहू छः महीना में छा जाने के अब मैं क्या करब सब कौन पोगरे करब सर कैसे हमने के जिंदगी ले जाब सर निमन से सुखी जीवन उसका दुखी जीवन चाहे ना सोचे के सब एगो निमन विषय निकल जाए हाँ हम बोली ला हम भी टाइम इज मनी देखते जैसे हई जगह पहुँचलवा कैसे जाता हर रोज फजरे हम बोली ला ओकर पिताजी से देखा कैसे हर रोज है जगह जाता हाली हाली
1: हाली हाली
2: समय शुभ विषय धन्यवाद आपको
1: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
2: शुभ
1: संध्या आपको भी बाय। और ये सच है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आइए एक और श्रोता है लाइन पर उनको हम सुनते हैं। हेलो
3: नमस्ते
1: नमस्ते जी आपका शुभ नाम
3: माला
1: माला जी कहाँ से
3: फ्रांस
1: फ्रांस से
3: je parle créole je veux pas parler indien
1: ओके आप जो भी हैं बोलिए
3: मैं écoute un programme Loléa mon bien content d'un programme là comme Léa quand n'importe qui a fait qui nous fait c'est un interview si nous lever grand matin c'est Léa c'est guide Léa on comprend qu'il me peut dire
1: bolie
3: et puis après n'importe qui a fait qui nous fait c'est Léa
1: nous
3: allons Léa c'est la fait n'importe qui comment quoi explique où il y a plusieurs affaires hein puis ça c'est pour ça qu'ils m'ont téléphoné pour ce programme là
1: बहुत बहुत धन्यवाद माला जी आपके इस विचार के लिए। आपने सच ही कहा जो भी हम करते हैं टाइम पर ही करना चाहिए। ये जो है अनुशासन बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में क्योंकि अनुशासन नहीं होंगे तो हम अपना कार्य इधर उधर कर लेंगे। और आपके इस विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माला जी। नमस्ते
3: नमस्ते
1: नमस्ते। एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको हम सुनते हैं। हेलो
4: हेलो नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार जी कैसे हैं
4: आप? हाँ हम अच्छा है तो कैसे हो हम संगीता
1: संगीता जी आपका स्वागत है जी बोलिए।
4: हाँ अच्छा विचार अच्छा अच्छा बोली आने रहा अच्छा लगेगा सुने के

0: स्प्रे करेला चार बजल हम जाप सुने पूजा बतियाई ना
1: पूजा
0: बहुत अच्छा गया तू हंसे लता बहुत जल्दी से हंसे
1: धन्यवाद धन्यवाद
0: हाँ देखा समय के बात बोला था सच के समय तो बहुत बहुत जल्दी जल्दी चलता बहुत जाने ना जन चीज हमने के करे के बा काल आज चाहे कर देगी आज करब तो अभी अभी चाहे कर देगी चाहे ना हमने के ये सब ओब्लीजे बा चाहे ना जोन चीज कर देखा कोई बीमार बा बोल आज जब देखे कहा जाबे जाके चाहे देख के चलाई के हाँ वो जस्ती अच्छा देख ले बता नहीं सागा हुई बा हाँ उरी हाँ जहाँ ले सक बता ले बुली ला सा अच्छा अच्छा कमने के काम करेगी अच्छा अच्छा काम कर अब सा चाहे ला अब हमने कौपो इला सा चाहे ना हमने के लिए स्पेयर लेकु लोकेशन संस्कार सिखा हुआ सब के अच्छा निमन से चले के निमन रास्ता में चले के निमन से बतियाए कि सबसे प्रेम प्यार से जाने रे लावी धी दिन दू दिन की बातें सोच बता कुछ नहीं बा हमने संगे कौन चीज जाए कुछ नहीं जाए ये जन जन करत है सा है ये ना ये सोच बता कुछ है नहीं कर महिया पर ही दुनिया में कुछ नहीं कर कुछ नहीं किन बा कुछ नहीं कर से मावी बोले जाने सक बता तब मन के ला पहन लेके घूम लेके जाने ना कोई नहीं जाने ना आगे कुछ बा आना अपन लासांते अच्छा रख बा अच्छा चाहिए रखे के घूमे के तनी सुन सब फैमिली सबसे आसपास सबसे भी ऐसे रहे के और ये हम लिखे रह जाए ना जाने ना है ये बड़ी अंसर ना और कैसन रहा कैसन आदमी रहा हाँ कि नहीं पूछा जी
1: हाँ जी
0: हाँ ये ना हाँ ये हम तो ऐसे बताएं कि बड़ी खुशी रही
1: धन्यवाद धन्यवाद संगीता जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
0: शुभ रात्रि है
1: शुभ संध्या आपको भी चलिए नमस्ते नमस्ते एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं धनी जी नमस्ते
2: नमस्कार पूजा जी नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार
2: ठीक है
1: जी मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं
2: ठीक है बिल्कुल ठीक है
1: चलिए बताइए
2: देखिए पूजा जी इंसान के जीवन में मानिए तीन अवस्था आती है हमारे बचपन जवानी और वृद्ध हो जाते हैं बुढ़ापा तो बचपन में माता पिता की जिम्मेदारी में होते हैं परंतु हमारी जो बचपन का जिम्मेदारी है वो पढ़ाई पढ़ाई लिखाई अच्छे से पढ़ना आगे बढ़ना और जवानी है मेहनत करना मेहनत करना ये एक अवस्था है जहाँ बुढ़ापा के लिए ताकि कुछ न कुछ न कुछ नहीं रहना रहना है कुछ कुछ भी आएगा बुढ़ापा में परंतु मेहनत करना है जवानी में आगे का बढ़ना प्रगति करना खासकर प्रगति करना आगे के समय के लिए जहां तक हो सके समय को ना गंवाएं जो कल करना है वो आज कर दीजिए जो आज करना है वो अभी करो शुरू करो हाँ शुरू करो तुरंत समय को ना गंवाओ न जाने दो हाथ में से ये क्योंकि ये नदिया का पानी है फिर से नहीं आएगा जो चला जाता है चला जाता है अब बुढ़ापा आएगा तो कम से कम थोड़ा आराम मिलेगा कम से कम थोड़ा आराम मिलेगा और चिंता नहीं होगा अगर जवानी में समय गंवा दिया जो कुछ करना है नहीं किया तो पछताओगे पछताओगे अवश्य पछताओगे धन्यवाद
1: धन्यवाद धनी जी
2: नमस्कार
1: एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं हेलो
3: हेलो
1: नमस्ते
3: नमस्ते पूजा जी
1: नमस्ते जी कैसे हैं आप
3: हम ठीक हैं
1: चलिए ठीक होना ही चाहिए चलिए बताइए आपका क्या कहना है
3: हाँ समय के बात होते हैं ना समय तो देखते देखते हम लोग जवान से इतना उम्र हो गल हमने के जब काम करे जाएला सा तो समय के दिखिला सा कया कब समय हो जल्दी से उठ के जब से काम करे नींद नहीं लगी सब काम उम करके जब से सुते फजीर के अब भैये कर अब से कब कब लेती हो बेरा हो हाली से उठ के काम उम करके लड़का लोग के सब के जे के सब संझुए के सब सपरा के रख देव अब से फजीर के उठ के तेरा बीस लेवे के धो

0: दिन तबीत गौ धोपते धोपते साँझ के आपसे तो समय पर अपन आप सब अपन काम सब करब स कहूँ जाए के रही तो अपन समय देख के अपन पकावे के कहूँ परी जाप स शादी मियाँ में कुछो कहूँ कहीं रहता अपन समय देख के जाप स ऐसने तो दिन बीत गल लड़का लोग के देख के सब चीज करके ऐसने तो दिन बीत गल कौन सी बोल ये इतने रहल हम के पास
1: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद और एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं आशा जी नमस्ते
2: हेलो नमस्ते पूजा जी और समस्त श्रोताओं को भी मैं सादर नमन करती
1: हूँ आपको भी चलिए बताइए आपका क्या कहना है
2: जी विशाल विशाल बद्दु शब्द जोड़ना चाहती हूँ इंसान के जीवन में अच्छा समय भी आता है बुरा समय भी आता है बस जरूरी इस बात को ध्यान में रखना है कि जब बुरा समय आए तो अपना धीरज नहीं खोना चाहिए और अगर अच्छा समय आए तो अहंकार नहीं करना चाहिए अपने आप में अहंकार को हावी नहीं होने देना चाहिए क्योंकि अगर यह अहंकार आप पर आ गया ना तो अभी जो यह अच्छा समय आपके लिए आया है पल भर में यही अच्छा समय आपके लिए बुरा वक्त बन जाएगा क्योंकि जब अगर हमें अहंकार आ जाएगा तो हम जो नहीं करना चाहिए वो कर देंगे यानी कि छल करना झूठ बोलना ईर्ष्या करना रिश्तों को तोड़ना किसी का अपमान कर देना बुरे अच्छे भले को ना समझना तो समय तब बदल जाएगा अपना रूप बदल ले ये पता ही नहीं चलता और आज अगर आप पर कोई बुरा वक्त आया है तो धीरज इसलिए धरना चाहिए क्योंकि इस बात का संतोष रखना चाहिए मन में कि कोई बात नहीं आज बुरा वक्त है तो ये चल ही जाएगा आज नहीं तो कल अच्छा समय हमारे लिए भी जरूर आएगा क्योंकि हर एक दिन एक समान नहीं होता जैसे घड़ी की सुई अगर रुक जाएगी सिर्फ 12 बजे तक रुक जाएगी तो न दिन होगा न रात होगी यानी कि समय के जिस तरह से घड़ी की सुई नहीं रुक सकती है हमारा वक्त भी एक समान नहीं हो सकता आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त जरूर आएगा बस जरूरी ये है कि कहते हैं ना अभी हम कलयुग में जी रहे हैं सच में इस समय में बहुत चारों ओर आप देखेंगे छल कपट झूठ कपटी ये सब कुछ है पर कैसे कहते हैं ना समय के साथ हमें चल तो रहे हैं बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें अपनी ओर से जहाँ तक हो सके अच्छा कर्म करना चाहिए खुद अपने लिए अपने समय को अच्छा रखना चाहिए और अपने रिश्तों के लिए आने वाले कल के लिए अपने भविष्य के लिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए जिसके लिए हमें कोई पछतावा ना रहे बल्कि ऐसे कर्म करना चाहिए जो आने वाले भविष्य के लिए एक सबक एक सीख बन जाए तो यही कहूँगी पूजा जी कि समय चाहे जैसा भी हो और जैसे कि समय तो नहीं रुकेगा ना जैसे प्रकृति समय पर अपना काम करती है हमें भी समय को गंवाना नहीं चाहिए पल पल समय का हिसाब करके अपने कर्म को करना चाहिए ताकि हम सही सदुपयोग से समय अगर हम समय का को मान देंगे तो समय हमें अनमोल जरूर बनाएगा बस यही
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी इस विचार के लिए और आज हम श्रोतागण हम बात कर रहे हैं समय पर तो आपका जो भी विचार है 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं आइए एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं हेलो
3: हेलो
1: नमस्ते
3: नमस्ते पूजा और पूजा
1: हाँ जी नमस्ते
3: आई यो पूजा तो हम हूँ तो लोग तो लोग दूंगे पूजा
1: धन्यवाद धन्यवाद
3: तो हर बोली तो हर बोली तो हर सूरत पारे
1: धन्यवाद
3: बड़ी खुशी सुनी जाता हर बोली का
1: धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद
3: अभी हम कागज छुटू काटा थे जला लौसी के डाले के था अब बुझा था तनी लालिन मिली कि नहीं मिली
1: मिल गल ना मन
3: कर के अभी तोरा सुने कर लिए अभी हम
1: हां बोला
3: समय पर बदल ले हवा
1: हां समय
3: समय बहुत बलवान बा बहुत बड़ा बात हर कितने पैसा रही कितने कुछ रही समय के तुम नहीं सकबाओ के पकड़े नहीं सकबाओ के आगे के करी पैसों से नहीं हुई तू नहीं जान बा दिन भर में कितना काम कर ले हवा सब अच्छा कर ले बा कौन बखत हर समय चला जाए के अब तू नहीं जान बा उसी समय ये सब करी ना सब वही करिया लो उनका से गिराई चाहिए कितनो तू कुछ करत हो पूजा पाठ सब कुछ करत हो सब हमकर ध्यान में डले रहल ही भगवान कौन घरी हमर समय चले अब जाए के कैसे जा बाब लेंदी से दिमाग ले है सात दिन में तेरे को समय ला हमरो ना हो बस जीवन हमने के साथ ही दिन के है महीना दिन के बड़ी दिन के नहीं है जब लेंदी के तोहरा बीत गया था जनिया मंगल के होल मंगल आल तब बुध होल रोज के जो सोते रहा तो मत थोड़ा ध्यान रखे चाहे कौन समय तो और बेरा आज आज में हमने के बहुत भय रह चाहे चाहे डर में रही चाहे आज अच्छा अच्छा बात बतियावे चाहे कोई के जमे को तू चुपचाप हो गए तो हर चल गल आत्मा का हाई बोलिया रह गल समय लेके कई कर देला खाई घड़ी तू बोले रहला आ तू चल गईया हाउ समझवा में तू पैसा नहीं होला यहाँ तू हाई बोली बोल के चल गईया हाई चाहना बहुत टॉ टॉ करके बोले के आगे भगवान बुद्धि देले वहां कई कुछ सोचे चाहे तोरा हाई मुंह में से वो बोली निकली कई कुछ सोच के तब जाके निकल गया नहीं सोचा कि वो निया मोबे बाव के हमू बोल दे वो बोली जमे वो करो कुछ हो गई वो मोबे बाते तो कर संगेगा तू अपन ध्यान डाला कि तू निकाल नहीं एगो चौका बात कि जमे ओके घाव लगी ओके जमे लगी तो कुमार जो सकेला मुड़ी ने मार दी बोली यारी हम तो ऐसा बात करते कहियो नहीं बोले तो याद हमारा बोल देना कैसा जोली बात बोल देला सकेला घरी सुधरियो जाए हमारा ये विचार बामा धन्यवाद बहुत धन्यवाद एमबीसी के सब के बहुत जोली प्रोग्राम
1: धन्यवाद धन्यवाद ये सच्चे बात है जो भी हम बोलते हैं जो भी हम करते हैं जब भी किसी को चोट देते हैं तो समय किसी को दर्द देकर उसको ना उस दर्द को कम कर लेता है पर जो दर्द देता है उसका भी समय आता है इसीलिए अपने कर्मों पर हमेशा आप ध्यान रखें कि आप जो भी कर रहे हैं ये कुछ क्षण के लिए ही है फिर आपका भी समय आता है आपको भी रोना पड़ेगा आपको भी कष्ट मिलेंगे इसलिए सब में प्यार बांटें नफरत ना परंतु प्यार बांटें किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी को गम भी मत दीजिए इसीलिए उनके साथ आप समय बिताएं जो आपसे प्यार करते हैं जो आपको मानते हैं उनके साथ नहीं जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं समय के साथ जो भी बदल जाता है वो साथी ही कैसा साथी तो वो हैं जो समय के साथ आपके साथ चलते रहे चार 4028085 पर अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हम और आप कार्यक्रम जारी हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आज हम समय के बारे में चर्चा कर रहे हैं आइए लाइन पर एक और श्रोता है उनसे हम मिलते हैं हेलो
4: हेलो नमस्ते बहन जी
1: नमस्ते धनेश्वर जी कैसे हो अच्छा हो ना
4: हाँ अच्छा है
1: हाँ अरे बोलो
4: तो हम भी कुछ जोर देवो है
1: अरे जोर दो बोलो
4: आसमान धरती से कहता समय बड़ा बलवान। हाँ, चाहे पेड़ में रोज सौ दीवा पानी।

0: ही जलब मैं फल त समय जबाई तब मिलेगा। एक समय बचपन फिर जवानी और बुढ़ापा। जवानी में चेहरा मेहनत करके उसकी वो फिर से नहीं आई, विवाह करके शादी करके और बच्चा भी पैदा करके और बच्चा के पढ़ाई के सब देखभाल करे, तब बुढ़ापा तो और बड़ी जोरी से बीती। और बुढ़ापा में अपन थोड़ा बहुत जो सकब काम उम करे कर और जो कुछ मिला था उसी में संतोष कर, तब तोहर बुढ़ापा जोरी से अपन भजन गाव आरती सुन। और जवानी से जे थोड़ा संस्कृत जनब थोड़ा हिंदी भाषा जनब तो हारमोनियम तनी जाना रो सीख ले लोटो को जगह करे जान गई लो। तो जब इन्हें भाषा के माध्यम से श्लोक जोली से उच्चारण करब और कविता हिंदी भाषा के माध्यम से कबीर भजन कविता श्लोक मंत्र तो ये सब रामायण का चौपाई दोहा सब बहुत जोली से बोलब, सब आदमी जब प्रवचन करब अपन भजन गईब तो सब कोई थोड़ा खूब ध्यान से सुनी। धन्यवाद बहन जी, मौका मिल हमरा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद धनेश्वर जी, शुभ संध्या आपको।

0: कहते हैं घड़ी की सुइयां कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जो समय की कद्र करता है समय भी एक दिन उसकी कद्र करता है, और जो समय को यूं ही गवा देता है वही बाद में कहता है काश थोड़ा और समय मिल जाता। आज हम बात कर रहे हैं उस अनमोल खजाने की, जिसे ना खरीदा जा सकता है, ना उधार दिया जा सकता है, और ना ही वापस पाया जा सकता है, और वो है समय। आइए लाइन पर एक और श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: मैं हूँ देव।
0: देव जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं रिविया शिपस से बोल रहा हूँ।
0: आपका स्वागत है। बताइए।
1: तो मैं अब जो धारा बह रहा है आपके इस प्रोग्राम में, उसके विपरीत नहीं, उससे कुछ हटकर अलग बोलूंगा समय ही के विषय में।
0: बताइए।
1: कभी कभी कोई लोग ऐसे रहते हैं कि कुछ काम में लग जाते हैं और सोचते हैं अरे ये काम तो समाप्त नहीं होगा, और निराश होकर छोड़ जाते हैं उस काम, छोड़ देते हैं, अच्छे ही काम रहता है। तो कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ चीज हमने शुरू किया अपने जीवन में, तो वहाँ पर समय का न परवाह करते हुए उस काम में लगे रहना चाहिए, और कभी न कभी उस काम में हम सफलता पाएंगे। और ये भी हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो एक जन्म में नहीं समाप्त होते हैं, वो दो तीन चार जन्मों में समाप्त होते हैं, पांच जन्मों में। और इसका प्रमाण जो है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे अर्जुन, अगर कोई आध्यात्म के रास्ते में चलते चलते मोक्ष को प्राप्त नहीं किया तो फिर उसका क्या होगा? तो वहां पर श्री कृष्ण जी उत्तर देते हैं कि अर्जुन देखो, कोई अगर इस राह में चलता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं किया है तो फिर क्या होता है, ईश्वर उसे पुनः फिर ऐसे वातावरण में डाल देता है अगले जन्म में। तो जिस तरह पर उसने ये काम शुरू किया है तो वहां पर वो काम अगले जन्म में वो वातावरण में जारी रहेगा। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, जो कुछ लोग अज्ञात के रास्ते पर चलकर क्या होता है, निराश हो जाते हैं, देखो मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो फिर निराश नहीं, जो अध्यात्म के रास्ते पर हैं, निराशा उन लोगों का बड़ा दुश्मन है। तो वहां पर समय का न परवाह करते हुए उस राह पर चलते जाना चाहिए और परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस विचार के लिए। बीता हुआ समय सिर्फ यादें छोड़ जाता है, आने वाला समय सिर्फ उम्मीदें देता है, लेकिन आज का समय ही हमें कुछ करने का अवसर देता है। इसलिए कहा जाता है हर पल की कीमत समझें। प्रणाम नानी।
2: प्रणाम नानी। आशीर्वाद बेटी।
0: अच्छा हवा।
2: अच्छे है, चाहे बोले के अच्छे है, अच्छा है। तो लो कैसा हुआ?
0: अच्छा है दानी, हम अच्छा है बोला। आज समय पर हमने चर्चा करा था, जा कौन सी बोले के मन करे करा था नानी बोला था।
2: हाँ समय के अच्छा अच्छा भाव भी आवा थे बेटी।

0: मुझे है काम इस वर से जग तरूठे तरूठन। समय चल गल बा लेकिन कुछ याद बा, कुछ याद बा तो बोला था जा। तो पहले के बतवा बहुत बड़ा बड़ा बात रहल, माँ बाप बतिया तलन जा, भगवान के ध्यान करत लन जा, लड़का लोग सिखावत लन जा, और बहुत अच्छा रहल बेटी। हम तनी सन एक लाइन बोल देनी है जे भगवान के याद करब तो पहले ही के बात हो, हम भी चलते आवता। हाँ उसने ही चले और आगे भी चले, यही बोला था बेटी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नानी।

0: तो आइए लाइन पर एक और श्रोता है, उनको हम सुनते हैं। शुभ नमस्कार नवीन जी।
1: शुभ नमस्कार पूजा जी,
0: कैसे हैं आप?
1: गला कुछ खराब है
0: जी,
1: फिर भी कोशिश करता हूँ, समय निकालता हूँ।

0: पूजा जी,
1: जी
0: मैं आपका आधा प्रोग्राम आधा कार्यक्रम रास्ते पर सुनता हूँ और आते ही रेडियो को खोल करके मैं आपको सुनता हूँ और बचा हुआ समय जो है आपके आपके लिए निकलता हूँ कुछ सुन सुन करके। तो आपसे मैंने कहा थोड़ा समय क्षमा करिए, सीधा आता हूँ विषय पे। सब कुछ के लिए हम समय निकालते हैं
1: जी,
0: चाहिए धन कमाना, ये तो बहुत जरूरी बहुत आवश्यक बात है, बहुत है जीवन में ये बहुत आवश्यक है धन, उन्हें के लिए हम पढ़ाई भी करते हैं, इससे इससे बहुत अच्छा है। पर हमने कभी सोचा है किस काम के लिए हम तनिक भी समय नहीं निकालते? ये कभी किसी ने सोचा है? ये सोचना चाहिए हम जो आवश्यक काम है उनके लिए हम समय नहीं निकालते हैं, उनकी सेवा के लिए कहते हैं कि समय नहीं है। अपने पूरे माँ बाप जो राम स्वरूप राम सीता स्वरूप घर में है उनको विसार करके हम बाहर पूजा जाते हैं करने जाते हैं, तो ये भगवान स्वीकार ये यह पूजा स्वीकार करेंगे भगवान जी? कभी नहीं। अपने माता पिता ये माता पिता कभी नहीं कहा कि हमें समय नहीं है और हम माता पिता के लिए समय टालते रहते हैं, कहते हैं कि समय समय नहीं है, यह जिंदगी बहुत छोटा है, हम सोचते नहीं ये जो माता पिता सेवा अगर हाथ से निकल गया तो हम जीवन पर पश्चाताप करते रहेंगे। हम रुपये पैसों के विषय में तो बहुत सोच विचार करते हैं पर समय को नष्ट करते समय हम तनिक भी नहीं दुखी होते हैं। प्रत्येक कार्य जब हम करते हैं प्रत्येक पार पर ही होना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर पश्चाताप होगा। मैं बोल रहा हूँ उससे और कहूंगा आपसे कि समय जो है उसका सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति जो अपने समय को नष्ट कर देते हैं तो वो तो राष्ट्र को भी दुखी तथा पतनशील बना देते हैं। व्यर्थ की बातें करना, नशीले द्रव्यों का सेवन करना, आलस्य में पड़े रहना, बुरी संगति करना, बुरे आसन में लगे रहना समय का दुरुपयोग है जिससे हमारे स्वास्थ्य धन और बुद्धि का नाश होता है। तो इसलिए अंत में कहूंगा कि समय के सदुपयोग से हम उन्नति के शिखर पर पहुंचने में समर्थ हो सकते हैं। वास्तव में क्षमा कहिए मैं ना भी कुछ समय वास्तव में मैं कहूंगा कि ये वही आदमी वही मनुष्य बुद्धिमान है जो अपने समय का सदुपयोग कर उन्नति के पथ पर अपने कदम दृढ़ता के साथ रखता हुआ निरंतर गतिशील रही समाज की सेवा में लगे रहना और यानी कि अपना समय अपने देश के लिए नौछावर के समाज के माध्यम से और अपने घर की देखभाल करते हुए ये सब समय का सदुपयोग है और ऐसे आदमी जीवन में धन्य होते हैं। बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया कुछ कहने के लिए, हालांकि कुछ देर हो गई मुझे क्षमा करिए, कहूंगा आपको धन्यवाद। शुभ संध्या।
1: शुभ संध्या आपको भी। नमस्कार आपको भी।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी अवसर देते हैं। हेलो
2: हेलो
1: हेलो नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते सुदेवी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ आप?
2: बढ़िया है,
1: धन्यवाद।
2: मैं समय की बात ना, समय की सब कुछ करना चाहे समय में पकाने को कहूँ जाने को ना और है पूजा करने को सवेरे सवेरे जाकर भी ये समय है ना, समय में कहूँ जाना है। समय समय जब हम सुनते हैं तो जल्दी जल्दी चलाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्ते। तो चलिए इसी के साथ हम और आप कार्यक्रम में यहीं पर समाप्त हुआ और जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए उन सभी को पूजा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद।
3: हम और आप।
1: चलिए इसी के साथ जो है आप हम बढ़ेंगे एक और विशेष कार्यक्रम की ओर, संत कबीर नीतू शाह की

0: प्रस्तुति में आइए इसे सुनते हैं। और मेरी ओर से सभी को नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: कबीर जयंती के संदर्भ में बंतिया बाकवा के कबीर मंदिर कबीर धर्म महासभा द्वारा आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
3: बंदों सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय जासु ज्ञान दिन करनि कर भ्रम तम देत नशाय भ्रम छुड़ा।

नाम। परम श्रद्धालु श्रोतागण, यह कार्यक्रम कबीर मंदिर बुंदेल वाकवा की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। कबीर प्राकट्य महोत्सव 29 जून को बड़े ही धूमधाम से कबीर मंदिर बुंदेल वाकवा में मनाया जाएगा। साथ ही आज हम कबीर साहब के उन चुनिंदा भजनों पर अपना विचार रखेंगे। सद्गुरु कबीर साहब के भजन शाखी, दोहा, चौपाई जितने भी हैं सभी गागर में सागर हैं, जीवन के दर्पण के समान हैं। सद्गुरु कबीर साहब आज से 625 वर्ष पहले काशी के लहर तारा तालाब में कमल पुष्प पर अवतरित हुए। गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर, जलज माहि पौढ़न किए सब पीरन के पीर। सद्गुरु कबीर साहब ने काशी से ही अपनी सद्ज्ञान शिक्षा वहीं से शुरू किया और भारत के कोने कोने में, तथा उस समय भारत बहुत बड़ा एक देश हुआ करता था, जो आज मक्का, मदीना, बलख, बुखारा, म्यांमार सभी उस समय भारत देश ही कहा जाता था। तो वहाँ पर साहेब भारत के अलावा भी कोने कोने में जा कर के सद्गुरु कबीर साहब अपने अमृत वाणी का प्रचार प्रसार किए। आज के समय में हम देखते हैं कि भारत के अलावा भी सुदूर देशों में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, सिंगापुर, फिजी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मॉरीशस, साउथ अफ्रीका, केन्या, गयाना, सूरीनाम, अमेरिका, कनाडा, ट्रिनिडाड, वेस्ट इंडीज, दुनिया के अधिकतर देशों में सद्गुरु कबीर साहेब के पद, उनके भजन बड़े ही प्रेम से गाया जाता है। सद्गुरु कबीर साहब का मूल ज्ञान मनुष्य केंद्रित, आत्म केंद्रित रहा है। सद्गुरु कबीर साहब ने सत्य, अहिंसा, विश्व बंधुत्व और भाईचारा का संदेश पूरे प्राणी मात्र पर दिए। सद्गुरु कबीर साहब ने शब्द श्रुति योग साधना की बात कही, जिससे मनुष्य ध्यान में बैठ करके, एकांत में बैठ करके शब्द साधना श्रुति योग के द्वारा उस परम तत्व के मुकाम तक पहुंच सकता है। सद्गुरु कबीर साहब ने अंतिम समय अपना मगहर में, जो काशी से लगभग 240 किलोमीटर है, वहां पर जा कर के अपना शरीर त्याग किए। और उसके बाद भी सद्गुरु कबीर साहब समय समय पर ये संसार में आते रहे। और ऐसा कहा जाता है दादू साहेब, पलटू साहेब, दरिया साहेब, अनेक संतों को सद्गुरु कबीर साहब ने समय समय पर दर्शन दिया।

सद्गुरु कबीर साहब निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे और सद्गुरु कबीर साहब ने अपने वचनों में राम की बड़ी महिमा गाई। साहब कहते हैं, इस जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण को दर्शाते हुए कहते हैं कि बाल्यावस्था खेल में चला गया, जवानी नींद भर सोने में चला गया और बुढ़ापा अवस्था में आपकी दसों इंद्रियां काम करना बंद कर दे रही है। तो आम लोगों से साहब कहते हैं, तुम अब कब सुमिरोगे राम? हे मनुष्य, हे साधो, तुम अब कब सुमर करोगे? तुम राम का भजन कब करोगे? राम का तात्पर्य सद्गुरु कबीर साहब ने निराकार राम की बात कही, जो निर्गुण राम की बात कही। निर्गुण राम का तात्पर्य है सगुण राम से अलग। निर्गुण राम जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से परे हो। साहेब राम के संदर्भ में कहते हैं, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम है शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि एक राम तो वह है जो दशरथ के आंगन में खेला करता था और एक राम वह है जो हर प्राणियों के घट में विराजमान है। हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी के घट में विराजमान है। एक राम है शकल पसारा, जो सभी जगह पेड़ पौधे, नदी नाला झरना, हर कण कण में भगवान है, राम है, उसकी बात करते हैं। और एक राम है सबसे न्यारा, जो इस जगत के नियंता है, जो इस जगत का पालनहार है, जो आकार होते हुए भी निराकार है, जो इस जगत का कारण होते हुए भी आकारण है। सद्गुरु कबीर साहब ने उस राम की बात कही और उस राम को तुम कब सुमरण करोगे? और सद्गुरु कबीर साहब जिस राम की बात करते हैं, वह राम कहीं बाहर नहीं है, हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, हमारे घट में है। मो को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना काशी कैलाश में, खोजी होए तुरत मिल जाऊं पर भल की तलाश में। सद्गुरु कबीर साहब ने उस राम की बात कही है। मनुष्य का जीवन ऐसे ही बाह्य भौतिकवादी युग में धीरे धीरे धीरे धीरे, कब बच्चा से जवान हुआ, जवान से बूढ़ा हुआ और बूढ़े से अंतिम जाने की तैयारी आ गई, ये पता नहीं चलता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि ये जीवन दो दिन का मेहमान है। आज व्यक्ति जन्म लिया है, पहला दिन हुआ, लेकिन कब जाना है इसका कोई अता पता नहीं रहता है। और जिस दिन जाना है उसको साहब ने दूसरा दिन कहा। मनुष्य की अवस्थाओं पर साहेब प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि लाठी टेक चलत मार्ग में, सहियो जात नहीं घाम। कहते हैं, तुम लाठी लेकर के शरीर वृद्ध हो गया, तुम रास्ते पे चल रहे हो, घाम भी तुम्हारे से धूप सहा नहीं जा रहा है, कान भी बहिर हो गए, नयन भी नहीं सूझ रहा है और दांत सभी गिर गए हैं। इस अवस्था में आकर के भी अगर तुमने भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तो ये जीवन आपका व्यर्थ है, बेकार है। इसीलिए इस जीवन की क्षणिकता को समझते हुए व्यक्ति को राम का सुमरन करना चाहिए, अपने इष्ट का आराधना करना चाहिए, भक्ति में लीन रहना चाहिए।

सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है, तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी तो छाया है। सदगुरु कबीर साहब की मूल फिलॉसफी यही है साहेब ने कि जितने भी वचन हैं सब आत्म केंद्रित है, और आत्म केंद्रित होने के नाते साहब ने कभी नहीं कहा कि आप मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारा में जाओ, चर्च में जाओ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जिसको तुम बाहर ढूंढते हो वो हमारे हृदय में है, हमारे घट में है। हमसे अलग उसका कोई अस्तित्व, मनुष्य से अलग उसका सत्ता बाहर नहीं है, हमारे हृदय में ही है। और जिसको हम अपने में ना ढूंढ करके, अपने में ना खोज करके अपना प्रयास नहीं करते हैं, और उसको हम बाहर ही खोजते रहते हैं, बाहर ही ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो बाहर है नहीं वो हमें कैसे मिलेगा? वो तो हमारे हृदय में समाया हुआ है। उसको साहेब कहते हैं कि वस्तु अंतय खोजे अंतय, क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख रखिए साथ। उदाहरण देकर साहेब समझाते हैं कि वस्तु कहीं और रखा है और आप उसको खोज कहीं और रहे हो। जब वस्तु ही दूसरे जगह रखा हुआ है और आप दूसरे जगह ढूंढ रहे हो तो क्यों कर आवे हाथ, वो आपके हाथ में कैसे आएगा, वो आपके पास में कैसे आएगा? तो

वस्तु कहीं और है अपने से इतर, उसको पाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु ही हमें बताते हैं कि वह वस्तु कहीं बाहर नहीं है, हमारे घट में है, हमारे भीतर है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि उस परमात्मा को ढूंढने के लिए कोई तीर्थ जाता है, कोई मूर्ति में ढूंढता है, कोई

एको पाप न काटिया लादे 10 मन और। मनुष्य तीर्थ जाता है, घर से जब निकलता है तो 1 मन लेकर के जाता है कि हम तीर्थ जा रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं। लेकिन जब तीर्थ यात्रा से वापस अपने घर को लौटता है तो 10 मन लेकर के लौटता है। 10 मन करने का तात्पर्य है कि हम यहाँ गए, वहाँ गए, हमने ये देखा, वो देखा, ये सुना, यहाँ पर चले, यहाँ पर बैठे, यहाँ पर उठे, हमने यह खाया, यह पिया। इसी को साहेब कहते हैं कि लादे 10 मन और, एको पाप न काटिया। लेकिन मन का मैल ख़त्म नहीं हुआ और बल्कि मन में मैल भर करके हम ले आए। साहेब कहते हैं कि आपको तीर्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है, आपको दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नित पास तेरे तू दूर फिरे, वो तो तुम्हारे पास है और तुम दूर दूर फिर रहे हो, क्योंकि तुमको किसी ने भरमा दिया है कि वह तुम्हारे पास नहीं है, वो तो बाहर है। तू बाहर जतन हजार करे पर भीतर न उजियार करे। साहेब कहते हैं कि अपने मन को पवित्र बनाओ। अगर आपने बाहर कितनों भी तैयारी कर ली, कितनों साफ कपड़ा पहन लिए, कितनों अच्छा भोजन कर लिए, लेकिन अगर आपके मन में मैल है, आपका मन में अंधेरा है, आपके जीवन में अंधेरा है, तो बाहर जितना भी जतन करने से इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ज्यों सूरज चांद दिखे जल में, तालाब कूप गागर जल में, त्यों राम रमे सत नाम रमे। सदगुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर समझाते हैं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर सब जगह विराजमान है। सब घट मेरा साइयाँ सूनी से जन कोय, बलिहारी वह घट की जाघट परघट होए। कहते हैं कि वह सूरज में है, चांद में है, जल में है, तालाब में है, कुआं में है, यहाँ तक कि गागर जल में है, सब जगह है, सभी जगह कण कण में राम है। लेकिन इस कण कण में राम को, इस कण कण में जो परमात्मा है, इसके भेद को कोई समझ नहीं पाया है और उसको बाहर व्यक्ति ढूंढ रहा है। बन सके दया कर दे आराम, कर प्रेम शकल घट रमे राम। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर परमात्मा को पाना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को समझना है, तो हर प्राणी मात्र पर प्रेम करो। जीव दया अरु आत्म पूजा, सद्गुरु भक्ति देव नहीं दूजा। प्राणी मात्र पर दया करो, जीव हिंसा मत करो, हिंसा की भावना को त्याग दो और अपने अंदर के अहंकार को त्याग करो। जिस दिन अहंकार को त्याग कर प्रेम प्राणी मात्र पर प्रेम करोगे, उस दिन वह बैठा हुआ परमात्मा हमारे भीतर प्रकट होगा और वही हमें दर्शन देंगे, दिखाई देंगे। इसीलिए साहब कहते हैं, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। वो तो हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, हमारे घट में है, उसको बाहर ढूंढने फिरने की ज़रूरत नहीं है।

आया गुरु जी मैं शरण तुम्हारी। सदगुरु कबीर साहब का ये बहुत ही सुंदर भजन है। आया गुरु जी मैं शरण तुम्हारी। भक्त की जिज्ञासा होती है, भक्त की आकांक्षा होती है, भक्त अपने गुरु जी के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपने गुरु के पास कहता है कि गुरुदेव अब तो मैं आपके शरण में आ गया हूँ। और जो गुरु के शरण में एक बार आ जाता है, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए, कहते हैं उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता ये संसार का, वो निडर हो जाता है। क्योंकि गुरु जी का होना एक शिष्य के जीवन में सुरक्षा कवच होता है। गुरु जी का आश्रय, गुरु जी का हाथ। साहेब धनी धर्मदास साहेब जब सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए तो कहते हैं गुरु जी मोहे बहुत निहाल कियो, नाम की कंठी गले बीच डाली सिर पर छत्र दियो, गुरु जी मोहे बहुत निहाल कियो। गुरुदेव आपने मुझे निहाल कर दिया, अर्थात मेरे जीवन में जितने भी बुराइयां थी, जितने भी विकार थे, जितने भी अवगुण थे, उसको आपने दूर करके एक पवित्र बना दिया। क्योंकि मैंने ये संसार को देखा कि संसार में लोग, परिवार, कुटुंबी, नाते, रिश्तेदारी, ये तो सब स्वार्थ के साथ ही है, ये तो सब माया के लोभ ही है। शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि बालस्तावत क्रीणा सक्तस्तरुणी तावस्तरुणी रक्त वृद्धस्तावत चिंता मग्ना परमे ब्रह्मणि कोपिन लगना भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। कहते हैं कि ये जो संसार है, मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो दोए। मनुष्य के जीवन में संतों का मिलना और हरि का कथा ये बड़े ही दुर्लभ होता है। क्योंकि यही दो तत्व है जो मनुष्य को सांसारिकता माया मोह से अलग करता है। और मनुष्य इसको न समझते हुए संसार के माया मोह में हमेशा फंसा रहता है। लेकिन अंत समय में ये जो संसार में जितने भी नाते रिश्तेदारी कोई किसी का काम नहीं आता है। इसीलिए भक्त अपने गुरु से कहता है गुरुदेव मैंने दुनिया को देख लिया, मैंने दुनिया को समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, और इसको पहचानते हुए, इसको जानते हुए, जान करके मैं आज आपके शरण में आ गया हूँ। क्योंकि ये दुनिया नाना प्रकार के विश्वास दिलाती है। कहते हैं कि जप तप का विश्वास दिलाती है, तीरथ का विश्वास दिलाता है, मूर्ति का विश्वास दिलाता है, नाना प्रकार के विश्वास दिलाता है, लेकिन अंत में उसके निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन गुरु जी का जो विश्वास है, गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे जीवन में सदा सहायक है। धर्मदास साहेब कहते हैं कि मेरे दाता तुम ही सहायक हो, संत सदा हितकारी जी। सदगुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची समर्पण लिए हुए धर्मदास साहेब कहते हैं कि हे गुरुदेव जब से मैं आपके शरण में आया हूँ

मैं तो पाछे पाछे जाए था, लोक वेद के साथ आगे से सदगुरु मिले, दीपक दिन हो हाथ। जब से आपका दर्शन हुआ, जब से आपका दीदार हुआ, मेरे जीवन में आगमन हुआ, तब से मेरे जीवन का अंधकार हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया।

बोले काया में सुगनवा बन के लहरी। सदगुरु कबीर साहब इस जीव के मुकाम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये मनुष्य का शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है। पांच तत्व क्षिति जल पावक गगन शमीरा, और पांच तत्व पांच इंद्रियां और एक मन, तो ये 11 हो गए। और इनके बीच में एक आत्मा का निवास होता है। साहब कहते हैं, बहुत ही सुंदर रूपक उदाहरण दे करके कहते हैं, बोले काया में सुगनवा बनके लहरी। पांच तत्व के पिंजरा वाके तामे सुगना बोले, अर्थात ये जो हमारा शरीर है पांच तत्व से बना हुआ है, जिसमें सुगना अर्थात ये हमारा जीव है, इसमें बोल रहा है, डोल रहा है, और कभी कभी मस्ती में आकर के दिल के जौहर खोले। जौहर मतलब होता है हीरा को कहते हैं, जैसे जौहरी जो होता है नाना प्रकार के गहने का निर्माण करता है, सुंदर सुंदर गहना बना देता है, इसी को साहेब कहते हैं कि ये जीवात्मा हैं, मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके संध्या और बिहनवा सुबह शाम डोल रहे हैं, अर्थात मन को स्थिर नहीं होने दे रहे, मन इस जीवात्मा को डोला रहा है सुबह शाम इधर उधर। पांच तत्व के पिंजरा वाके तामे 10 दरवाजा, और मध्य सभा में लगा के 8 आसन बैठे बन के राजा। कहते हैं कि पांच तत्व के पिंजरा में हमारा 10 दरवाजा है, और उस पिंजरा रूपी महल में हमारा जीव मध्य में बैठ करके विराजमान है एक राजा की तरह, और प्रेम के झूलना रूपी झूलनवा से वह जीवात्मा जो हंस है वह डोल रहा है, इसी को साहेब कहते हैं। अपनी सेवा खातिर में राखे 9 पट रानी। कहते हैं कि 9 पट रानी, 9 अर्थात कहते हैं कि 9 जो पांच तत्व है और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 और भी हैं जो हमारे चित्त के अंतःकरण हैं, ये आपस में सब बात कर रहे हैं और सभी हुंकार भर रहे हैं, तथा सभी उन्हीं के कहने के अनुसार से सब चल रहे हैं। तो साहेब कहते हैं कि ये जो आत्मा है हमारे शरीर में हमेशा विराजमान है। जिस दिन ये आत्मा इस पिंजड़े रूपे शरीर से उड़ करके चले जाएंगे और यम राजा के हाथ में पड़ जाएंगे, तो कहते हैं कि अश्वन से मुख धोई है, अर्थात आंसू उनकी इतने गिरेगी कि उसी से मुख अर्थात चेहरा को धोना पड़ेगा, चेहरा धुला हुआ दिखाई देगा। इसी को साहेब कहते हैं कि काया में सुगनवा बन के लहरी। ये तो एक रूपक के माध्यम से साहेब ने बताया, वस्तुतः ये आत्मा है, अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाश।

वासी है। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नामानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्यानि शयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने शरीर को त्याग करके, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण करता है, ठीक इसी प्रकार यह जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर में प्रवेश करता है। आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। और जब ये शरीर बूढ़ा हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, तो आत्मा भी जैसे जैसे व्यक्ति कर्म किया रहता है, वैसे वैसे उसको दूसरे जन्म, दूसरे फल भोगों की प्राप्ति होती है। इसीलिए मनुष्य रूपी सुंदर जीवन को पा करके इस आत्मा को अर्थात अपने मन को मैल ना करें, अपने मन को पवित्र रखें, अच्छा रखें और बढ़िया सुंदर कर्म करते हुए अपने जीवन को निर्वाह करें।

0: सद्गुरु कबीर साहब प्रेम की बात कहते हैं और परमात्मा से एक भक्त पुकार कर कहता है कि हे गुरुदेव, मेरे जीवन को ऐसा रंगो कि दुनिया का कोई भी रंग उसमें और ना चढ़े। सद्गुरु पिया मोहे रंग दे चुनरिया, मेरी जीवन रूपी चुनरी को आप ऐसा रंग दो कि दुनिया की रंग लाल, हला, पीला, नीला कोई दूसरा रंग चढ़े ही ना। क्योंकि जीवन रूपी जो चुनरी है उसमें नाना प्रकार के दाग लग जाते हैं। दाग कहने का तात्पर्य है नाना प्रकार के विकार लग जाते हैं, और उस विकार को मैं जितना भी धोऊं वो छूटता नहीं है। लेकिन जब सद्गुरु के भक्ति रूपी रंग हमारे चुनरी, जीवन रूपी चुनरी में जब चढ़ जाता है कि दुनिया का कोई दाग फिर उसमें दिखाई नहीं देता, दुनिया का कोई भी दाग उसमें लगता नहीं है, उसमें चढ़ता नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सद्गुरु हम सूरीझ करी एक कहिया प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सद्गुरु ने हम पर कृपा करके अपनी प्रेम रूपी वर्षा से हमको भक्ति के रस में इतना भिगो दिया कि वो रंग फिर कभी छूटने वाला नहीं है। लाल न रंग हो, पीला न रंग हो, साहब कहते हैं कि जितना बाहर के रंग है उस रंग के नहीं, भक्ति रूपी रंग से रंगने की साहेब बात कहते हैं। और वस्तुतः जो भक्ति के रंग में रंग जाता है उस भक्त का दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। चार चिन्ह हरि भक्त के प्रकट दिखाई देत, दया धर्म आधीनता पर हित पर दुख हरि लेत। साहेब कहते हैं कि जो भक्ति रूपी रंग में रंग गया उसके जीवन में दया, धर्म, आधीनता और दूसरे के दुख को हर लेने की ताकत आ जाती है, क्षमता आ जाती है। और इसीलिए साहेब कहते हैं कि मुझे भक्ति रूपी रंग में रंगो गुरुदेव, ताकि मेरा जीवन अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए। सद्गुरु कबीर साहब के इन भजनों को का आशय आज हमने सुना। और मैंने पहले ही कहा कि साहेब के भजन एक दर्पण के समान है। अगर एक भजन को भी हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो आपका जीवन पवित्र होगा। सद्गुरु कबीर प्राकट्य जयंती, जैसा कि आप जानते हैं, 29 जून को दिन सोमवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हम सभी श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि अपना समय निकाल करके उस दिन ज़रूर आप कबीर मंदिर बोंथिर पधारें। 29 मंडे को दिन में 11 बजे सात्विक यज्ञ चौका आरती गुरु पूजा कबीर साहब के परंपरा के अनुसार से होगी, और भोज भंडारा भी उस दिन होगा, अनवरत चलता रहेगा। साथ ही इस कबीर जयंती के मुख्य जजमान के रूप में राज सीसरन और अमृता सीसरन फैमिली ने बड़े अपने तन मन भाव भक्ति से इसको लिया है, रिस्पॉन्सर किया है। तो उनके तरफ से भी हम सभी श्रोताओं को निमंत्रण देते हैं, आग्रह करते हैं कि आप सभी कबीर जयंती में अवश्य कबीर मंदिर बोंथिर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। बंदगी साहेब।
1: कबीर जयंती के संदर्भ में बुंदिया वाकवा के

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार और आदाब, शाम के 6 बजे हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने आज सेशल के राष्ट्रपति पैट्रिक कैमिनी और उनकी पत्नी वेरोनिक कैमिनी की दावत में हिस्सा लिया। एडन आइलैंड पर यह मुलाकात मॉरिशस और सेशल के दरमियान गहरी दोस्ती के आधार पर की गई। अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर सेशल गणराज्य के राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर की कि सभी सेशलवाई लोग जश्न करें। महीना भर द्वीप समूह पर तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन। अब से माहवार तौर पर औसतन आमदनी हासिल करने वाले लोग भी मकान मालिक बनने का ख्वाब देख सकते हैं। जो स्कीम सिर्फ कम आय प्राप्त करने वाले लोगों के लिए थी, उन्हें दूसरी श्रेणियों के लिए बढ़ाया गया है। विदेश में वेनेजुएला में कुदरती आफत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 1400 के पार। नमस्कार आदाब, और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी ने आज सेशल के राष्ट्रपति पैट्रिक कैमिनी और उनकी पत्नी वेरोनिक कैमिनी की दावत में हिस्सा लिया। ईडन आइलैंड पर यह मुलाकात मॉरिशस और सेशल के दरमियान गहरी दोस्ती के आधार पर की गई। दोनों छोटे टापू देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध हैं। इस साल डॉक्टर नवीन राम गुलाम और राष्ट्रपति पैट्रिक कैमिनी की ये दूसरी मुलाकात है। मार्च में राष्ट्रीय पर्व के मौके पर सेशल के राष्ट्रपति मॉरिशस के औपचारिक दौरे पर आए थे। इस लंच के दौरान अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ भी मौजूद थे। अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर सेशल गणराज्य के राष्ट्रपति ने इच्छा जाहिर की सभी सेशलवाई लोग जश्न करें। महीना भर द्वीप समूह पर तरह तरह की गतिविधियों का आयोजन किया गया। माहे टापू पर शुक्रवार से जश्न मनाया जा रहा है। आज एक फूड फेस्टिवल लगाया जा रहा है। रात 9 बजे यूनिटी स्टेडियम में स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में एक पैरेड किया जाएगा। करीब 12 मॉरिशन पुलिस अफसर हिस्सा ले रहे हैं। एमबीसी पत्रकार वालेरी काली और कैमरामैन ऋषि सिरतन वहां मौजूद हैं। उनकी रिपोर्ट पेश है।
2: औपचारिक समारोह से 24 घंटे पहले राष्ट्रपति पैट्रिक कैमिनी के सामने अलग अलग इकाइयों की जगह निर्धारित किए जाने पर एक नज़र। उनके मेहमानों से शेषवासियों किस जगह पर होंगे, हर हरकत पर भी ध्यान। कई मॉरिशन पुलिसकर्मी परेड में भाग लेंगे। मॉरिशस में ही इनकी तैयारी शुरू हो गई थी।
3: Quand défiler pour une parade, qu'est-ce que ça demande à un policier, hein? Comment les besoins tenir, comment les besoins étaient?
4: Premières affaires, nous besoin smart, nous besoin fier et nous besoin discipliné. Nous besoin faire honneur à l'île Maurice et à la force policière mauricienne.
2: मॉरिशस और साथ में भारत का भी प्रतिनिधित्व दो कंटिंजेंट्स की तरफ से, रूस और चीन से भी सदस्य सेशल्स वाली इकाइयों के बगल में गर्व के साथ मार्च करेंगे। संगीत की धुन पर हर कदम से कदम मिलाना है। साउंड इंजीनियर हेनरिक फ्रेमिनोट माइक और केबल को बार बार चेक कर रहे हैं।
5: Especially for the parades, they need very good sounds from the coming out from the brass band for them to know their steps. So, yeah. So if they don't hear the sounds properly, they might not walk correctly.
2: प्रोटोकॉल समारोह के अलावा सेशल्स वासियों को महीने भर के लिए अपनी स्वतंत्रता मनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। सप्ताहांत के दौरान संगीतमय वातावरण छाया है, साथ में फूड फेस्टिवल भी, क्रियोल पकवान, संगीत भी, साथ में सेशल्स वासी।
6: Nous avons fait sortir une nouvelle collection à l'occasion de sa grosse fête après 50 ans. Il est vraiment un moment marquant de l'histoire de notre pays. Alors, nous avons décidé de faire sa collection de variété couleur, variété style, bon t-shirt.
7: Ce week-end, pas travail, ce week-end, week-end la fête.
8: Il donne l'opportunité aux amis, la famille, la population, la communauté pour venir ensemble. Faire descendre là, mais

0: très très content. Hein? C'est différent auprès des années précédentes.
1: रविवार रात भर जश्न का माहौल बना रहेगा, सोमवार 29 जून की सुबह तक। 29 जून सेशेल्स की आजादी की 50वीं वर्षगांठ का दिन।
2: वेनेजुएला में भूस्खलन की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 1430 तक पहुंच गया है। 3230 लोग घायल हुए हैं। माहिरों का कहना है कि गए 123 सालों में वेनेजुएला में ये सबसे गंभीर कुदरती वाकया पेश आया है। बचाव कार्रवाई तेजी और ठोस तरीके से की जा रही है। अदिति गनुअवतार।
3: भारतीय वायुसेना की एक राहत टीम वेनेजुएला में मदद के लिए पहुंची है। भारतीय विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने उम्मीद जताई कि इस फील्ड हॉस्पिटल यूनिट द्वारा पहुंचाई जा रही दवाइयों की खेप और राहत उपकरणों से भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की जनता को थोड़ी राहत पहुंच पाए और इस पहल से बचाव कार्यवाहियां और तेज हों। गुरुवार को वेनेजुएला में पेश आए 7.2 और 7.5 अंकों की तीव्रता वाले दो जोरदार भूकंप के झटकों से मरने वालों की संख्या 1430 पार कर गई है। राजधानी काराकास में कई इमारतें ढह गई हैं और लोगों को मलबों से निकालने की कार्रवाइयां जारी हैं, जहां हर तरफ तबाही का मंजर पाया जा रहा है। कुछ इलाकों में बचाव कार्यों में आई देरी को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ रहा है, क्योंकि टीमों को राहत कार्यों के लिए औपचारिक अनुमति का इंतजार करना पड़ा। इस बीच अमेरिका ने मदद के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें भेजी हैं, जिसके तहत प्रशिक्षित स्नीफर डॉग्स भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है कि इस आपदा से 6.7 मिलियन लोगों को जल्द ही आवास, भोजन और दवाइयों तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की सख्त जरूरत पड़ने वाली है।
2: फ्रांस में तेज गर्मी के चलते रेड अलर्ट जारी है। मरने वालों की तादाद 1000 से पार है के पार है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है। गए 24 घंटों में फ्रांस में 104 मौतें दर्ज हुई हैं। फिर से स्थानीय स्तर की खबर। बहुत सालों से सार्वजनिक आवास योजनाएं कम आमदनी वाले घरों के लिए ही विकसित की जाती रही हैं, लेकिन बजट 2026-2027 में औसतन आमदनी वाले परिवारों के लिए भी नए कदमों का ऐलान किया गया। करीब 1000 आवास बनवाए जाएंगे और बुनियादी मूल ढांचों के साथ 100 जमीनों को तैयार किया जाएगा। शुक्रवार को राष्ट्रसभा में आवास मंत्री ने कहा कि इन कदमों का मकसद 48,000 रुपये की माहवार तनख्वाह कमाने वाले लोगों के लिए है जो मकान मालिक बनना चाहते हैं। शहजाद जुमन, रजनी भेकर।
4: जमीनों के दामों में बढ़ोतरी, निर्माण और आवास संबंधी खर्च, इन सब के चलते आज मध्यम आय प्राप्त करने वालों के लिए मालिक बनना काफी मुश्किल हो गया है। आवास मंत्री ने बताया कि सामाजिक आवास के लिए एलिजिबिलिटी सीलिंग को पार करने वाली मॉरिशनों की कैटेगरी को अब तक जैसे भुला दिया गया है। आवास एवं भूमि मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा,
5: those who earn more than 48,000 rupees, those who earn and are youngsters who don't have homes and who cannot take a loan because of the high prices of property, the affordable homes.
4: मॉरिशस में एक वर्ग के लोगों को जैसे भुला दिया गया हो, जो लोग 48,000 रुपए से अधिक का मासिक वेतन प्राप्त करते हैं, जो नौजवान काम करते हैं, कोई घर नहीं है और मकान की बढ़ती कीमत की वजह से एक कर्ज नहीं ले सकते हैं। हम बुनियादी मूल ढांचों से युक्त जमीन उपलब्ध कराना चाहते हैं। शुरुआत में उन्हें सहायता प्रदान करने के बेहतरीन तरीकों पर विचार कर रहे हैं, जैसे कि मसलन 1 मिलियन रुपये दें ताकि वे मकान बनाने का काम शुरू कर सके, साथ में 2 से 3 मिलियन रुपए का लोन ले सके, यही अंतर लाना चाहते हैं। इसके अलावा बजट 2026-2027 में बुनियादी मूल ढांचों से युक्त 100 टुकड़ी जमीनों की व्यवस्था का भी प्रावधान है, साथ में करीब 1000 आवासीय इकाइयों के निर्माण का भी, जो इंटरमीडिएट आय प्राप्त करने वाले के लिए है। निजी सेक्टर की साझेदारी से इन्हें बनाया जाएगा। मंत्री शाकिल मोहम्मद ने आगे बताया, हम उनके लिए जमीन उपलब्ध कराएंगे उपयुक्त मकान बनाने के लिए, बशर्ते कि वे बेहतर कीमत पर इसे बेच सके। निजी सेक्टर के साथ साझेदारी के सिलसिले में सरकार इस संभावना की जांच कर रही है ताकि प्रमोटरों को वित्तीय सुविधाएं दी जा सके, ताकि उन्हें परियोजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सके। वे भी इन प्रावधानों के तरीके निर्धारित करने हैं।
2: गोल्डन

0: नामक नाली में प्रदूषण के चलते अधिकारी जांच कर रहे हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कार्यों की शुरुआत से पहले वाली प्रक्रियाओं में कमी नोट की। प्लेटफॉर्म मोरिस लाविरोनमों का मानना है कि जिम्मेदारी सभी सतह पर होनी चाहिए। संतना पोसनो, यचना मिश्रा।
1: 10 जून को पॉइंटसाब्लक के गोल्डन कनाल में गंदे पानी के प्रदूषण के मामले में जांच जारी है। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अनुसार बासाल्ट सोलर लिमिटेड ने सीवरेज पाइप्स के पास खुदाई कार्य से पहले अनुमति नहीं ली, जबकि दोनों पक्षों के बीच तय समझौते में ये निर्धारित है। वेलीवर एग्रीमेंट के तहत दोनों कंपनियों की जिम्मेदारी है WMA से इजाजत मांगना, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं दी। WMA का कहना है कि यदि इस प्रक्रिया का पालन किया गया होता तो इस घटना से बचा जा सकता था। किसी भी खुदाई कार्य से पहले स्वीकृति जरूरी है। हमने WMA के कार्यों के खर्चों के लिए कॉन्ट्रैक्टर को अंतरिम क्लेम भेज दिया है। वही दूसरी ओर प्लेटफॉर्म मोरिस लाविरोनमों का मानना है कि इस घटना की पूरी जिम्मेदारी केवल निर्माण कार्य करने वाली कंपनी पर नहीं डाली जानी चाहिए। संगठन का ये भी कहना है कि यदि संबंधित अधिकारियों ने समय रहते हस्तक्षेप नहीं किया होता तो कई अधिक गंभीर परिणाम हो सकते थे। हमारा यही सवाल है कि क्या जायज है GECC कॉन्ट्रैक्टर को कागज देना या फिर सोलर फॉर्म को ही सभी कार्यों का भुगतान करना चाहिए था।
2: La ferme solaire qui se posait gain tout par autorisation et paye pour tous mes travaux y compris travaux CEB.
1: फिलहाल बाजाल्ट सोलर लिमिटेड ने हमारी प्रतिक्रिया संबंधित मांगों का कोई जवाब नहीं दिया है।
0: मॉरिशस में बड़े पैमाने पर मछली मार करने की बात एक बार फिर चर्चित मुद्दों में आ गई है। अप्रैल से 3 मॉरिशन कप्तान दुनिया के बेहतरीन फिशिंग गाइड्स में शुमार हैं। फिशिंग बुक द्वारा प्रतिष्ठित एंग्लर्स चॉइस अवार्ड 2026 में उन्हें ये एजाज मिला। पोएंट ओबिश में पिरामिड फिशिंग बोट से कप्तान माइक सिब्लें भी इनमें शामिल हैं। आज कबीर जयंती है। इस साल क्लेमेंसिया में मॉरिशस का पहला कबीर मंदिर बनाया गया, जो वादियों में छिपा एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ लोगों का आना जाना भले ही कम हो, लेकिन यहाँ की कहानियाँ कभी कम नहीं पड़ती। यहाँ का इतिहास कभी मिट नहीं सकता। यचना मिश्रा की ये खास रिपोर्ट।
1: यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं, लेकिन इस जगह के महत्व को जानने वाले यहाँ का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। पहाड़ियों में खोई हुई शांति से भरी ये जगह जहाँ की शक्ति अपार है। इसकी दीवारें पुरानी अवश्य हैं, लेकिन इसकी दास्तान, इसका इतिहास उतना ही समृद्ध है। क्लेमेंसिया में देश का सबसे पहला कबीर मंदिर।
3: तो जब यहाँ पे गिरमिटिया मजदूर बस गए तो गिरमिटिया मजदूरों में कबीरपंथी लोग भी आए हुए थे। तो जैसे अन्य गाँव में भी मंदिर बनना शुरू हो गया, धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया, उसी प्रकार यहाँ पर बोला जाता है कि जो नॉर्थ प्रांत हैं, जो उत्तरी भाग हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कबीरपंथी भाई बहन बसे हुए थे। इसी निमित्त आप देखेंगे यहाँ जो क्लेमेंसिया मंदिर है, बताया जाता है कि मॉरिशस का सबसे पुराना कबीरपंथियों का एक आस्था का केंद्र है।
1: 1860 में इसका निर्माण हुआ, जहाँ कबीरपंथी और कई महंत उपासना करने आए। उस समय भारत से आए गिरमिटिया मजदूर कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बीच उन्होंने संत कबीर की शिक्षाओं में आत्मिक शक्ति, आशा और जीवन जीने की प्रेरणा प्राप्त की। मान्यताओं के अनुसार भारत में भी ऐसी ही जगह है जहां की गुफाओं में महंत तप करने जाते हैं।
3: बताया जाता है इसका एक रेप्लिका मंदिर जो है वो भारत के बांधवगढ़ राज्य में पाया जाता है, जो उसका आप गुम्बद वहाँ ऊपर आप देख रहे हैं, छत जो बनाई गई है, और जो इसका जो छवि है, जो प्रतिरूप है, जो आकार है, जो शिल्पकार है इसका, सब बराबर जब आप देखेंगे भारत का जो मंदिर है। बांधवगढ़ जो मंदिर है वो पहाड़ पर है, और ये जो मंदिर आप देखें, हम सभी को रास्ता पार करके ऊपर आना पड़ा मंदिर, और फिर जो आप इसके जो द्वार जब देखते हैं, आपको उसको झुककर अंदर में प्रवेश करना होता है। तो बांधवगढ़ में भी ऐसी हैं, जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो जितना भी हमारा अभिमान है, जो भी है, हमको

0: उसको छोड़कर सिर झुकाकर मंदिर में अंदर प्रवेश करना होता है। फिर अंदर में जब आप जाएंगे तो एक गुफा आपको मिलेगा, जो गूढ़ ज्ञान है, रहस्यमयी जो ज्ञान है, वो कबीर साहब ने धनी धनदास साहब को वो गुफा में दिया था। तो ये गुफा आपको यहाँ पर भी मिलेगा।
1: जगह के बारे में मुझे बचपन से पता है, जैसे कि लेकिन आ नहीं सकते थे कि जैसे कि इतना भी एक्सेसिबल नहीं था पहले तो, लेकिन हर बात हम सुनते थे कि हाँ एक मंदिर है कबीर पंथ का क्लेमौशा में, वहाँ पर बड़े बड़े साधु ये सब वगैरह थे। अभी लगभग जैसे कि 5-6 साल हो गया कि हम हर बार जैसे कि एक यात्रा बनाते हैं दिसंबर में।
2: आज 1.5 शताब्दी से भी अधिक समय बाद क्लेमौशा का यह ऐतिहासिक कबीर मंदिर मॉरिशस की बहुसांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल प्रतीक बना हुआ है।
3: जो मंदिर है हमारे लिए जैसे कि एक तीर्थ जैसा है, और हर साल हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ध्यान भजन सत्संग सब कार्य हम लोग करते हैं। हमारा ये जो कबीर पंथ है मॉरिशस में, हम लोग उसी सत्य का प्रचार करते हैं। ये ऐतिहासिक जगह को हमारी फेडरेशन की ओर से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सरकार इसको अपनी विरासत में ले लें, ताकि हम इसका अच्छे से देखरेख कर पाए और मतलब सभी लोग इसका लाभ उठा सके।
2: संत कबीर ने अपने दोहों और उपदेशों के माध्यम से मानवता, समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एकता और सद्भावना का मार्ग दिखाती हैं।
4: अमेरिका के दक्षिण पूर्व में कंटकी में जबरदस्त बार उतर आई है। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई, पुल ढह गए हैं और दर्जनों बचाव कार्रवाइयों की शुरुआत की गई है। अधिकारियों ने कहा कि अगर और ज्यादा बारिश हुई तो हालत बदतर होगी। कंटकी में आपात स्थिति की घोषणा भी की गई है। उधर अफगानिस्तान में भी कुदरती आफत मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन पेश आए हैं। कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अफगानिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बहुत से लोग घायल भी हुए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत, दक्षिण पूर्व से आ रहे कुछ बादल रह कर स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात के दौरान घने बादल होंगे और पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। बाद में मौसम अच्छा होगा। कल दिन के दौरान बारिश होती रहेगी पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दक्षिण और पश्चिम वाले लगूनों में दूर समुद्र में न जाने की दरखास्त है। तापमान, सेंट्रल प्लेटों में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, शहरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 22, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:40 पर सूरज ढल जाएगा।

तो ये थी अब तक की खबरें आपके तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभागों और हमारे तकनीकी साथी आवी दारी की मदद मिली है. आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. एमबीसी के साथ जुड़े रहिए. नमस्कार और आदाब. शोक समाचार सुनिए थोड़ी देर में. रॉयल रोड पुस्तुफ्लाक में 79 साल की 79 years old श्रीमती देवंती उचिगाडू. श्रीमती देवंती उचिगाडू पैदाइशी नाम कुदी सिंह जो साबित के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थे कल सुपहर तीन बजे इनके बेटे राजेश उचिगाडू के घर रॉयल रोड पुस्तुफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मौलोबीन बेलमो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 3 PM सेवक सिंह लेन गोकुला में 87 साल की 87 years old श्रीमती माउती दुर्गा. श्रीमती माउती दुर्गा पैदाइशी नाम रावा जो माउती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि

छुट्टी हो गई हैं अर्थी। कल दिन के 11 बजे इनके बेटे रंजीत दुर्गा के घर सिवक सिंह लेन गोकुला से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामीचे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो आती 11 AM। ला लुव्रिया स्ट्रीट फ्लोरियाल में 73 साल की 73 years old श्रीमती शारदा देवी छट्टू, श्रीमती शारदा देवी छट्टू पैदाइशी नाम बिसिसा जो गरीब के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे एलियनसन रॉयल रोड बुबासा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगागा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। महात्मा गांधी रोड स्टैनले रोजहिल में 76 साल की 76 years old श्रीमती हेमंती रिदोई पैदाइशी नाम रतन जो बसंती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल उठाई जाएगी, वक्त बाद में बताया जाएगा। कॉम्बेला नंबर एक अंगियता वाकुआ में 68 साल के 68 years old श्री विवेकानंद बालगोबिन जो विवेकानंद के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थे कल दोपहर बाद एक बजे इनकी पत्नी शोभा बालगोबिन के घर कॉम्बेला नंबर एक अंगियता वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में 71 साल की 71 years old श्रीमती आशा देवी गमन पैदाइशी नाम गुलोब जो आशा के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई हैं। इनकी अर्थी कल मुंबई में उठाई जाएगी, समय बाद में बताया जाएगा। शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, रेडियो मॉरिशस,
1: MBC रेडियो 24 आवर्स अ डे।

सीबी की ओर से एक जरूरी विज्ञप्ति सुनिए। सुदनक कटरबोन के इन इन इलाकों के ग्राहकों को सूचित किया जाता है। अवेन्यू बेंगाली, डोडो, कॉजिनाल, एपेवियर, फ्लामो, मोसलमो, मारुमा, इरोंडेल, कीवी, इबिस, पेयजिक्स और अवेन्यू इलक्रेस्ट और एसेसोर अवेन्यू के एक भाग को इन सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि सोमवार 29 जून 2026 के प्रातःकाल के 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। सोमवार 29 जून 2026 सुबह के 9 से लेकर दिन के 12 बजे तक सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि मरम्मत कार्य जैसे ही समाप्त हो जाएंगे तैसे ही बिजली की आपूर्ति फिर से जारी कर दी जाएगी बिना कोई पूर्व सूचना से। सीबी इन सभी असुविधाओं के लिए अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। ये थी एक विज्ञप्ति सीबी की ओर से।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: सत्यार प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 29 जून को घोंबुआ आर्य समाज में शाम के 4:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

日归于山野，心事藏进晚风。一曲听版温柔仍在延续，接下来继续在歌单里共度松弛的周日黄昏。

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: समस्त सुनने वालों को हमारा सादर प्रणाम। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। तो चलिए कार्यक्रम जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी सेवा में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कहते हैं श्रोताओं कि विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी उम्मीद की जो रोशनी है जलाए रखता है। तो चलिए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं।

भजरे प्रभु का नाम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं, ईश्वर पर किया गया विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, वही सही समय पर सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। अगर जिंदगी में

कठिनाइयों का हम सामना करते हैं तो विश्वास के साथ जो है उनको हमें पूछना चाहिए और डट के आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए, विश्वास से भरा मन, भय से नहीं साहस से निर्णय हमें लेना चाहिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले भक्ति गान की ओर हम बढ़ रहे हैं।

श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही श्रद्धापूर्वक के साथ आप हमारे साथ निभा रही है। तो चलिए, आपकी ये अगली भेंट, विश्वास की नींव जितनी भी गहरी होगी श्रोताओं, जीवन की इमारत उतनी ही मजबूत होगी।

विश्वास टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसे दोबारा बनाने में समय और सच्चाई दोनों लगते हैं। तो चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। साथ निभाने के लिए धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से खैर वाफियत से हैं। आइए महफिल शब का आगाज़ इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन दुनिया में मेरे दो फूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी आँखों की ठंडक और दुनिया के खुशबूदार फूल करार दिया। इससे अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, हर नसब और सबब क़यामत के दिन मनक़ता हो जाएगा सिवाय मेरे नसब और सबब के। अहले बैत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक एक ख़ास फजीलत हासिल है। शुहदाए करबला इस मुबारक ख़ानदान के चश्म चराग थे, जिन्होंने दीन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया।

मोहतरम सामीन, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। आइए प्रोग्राम के आखिर में सलाम का नजाना पेश करते हैं। इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बख़ैर और

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3।
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का तुहर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा।
1: गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो।

सब संगतालों के आउचे प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो और मनपसंद रेडियो चैनल और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस एमबीसी के दुगो रेडियो चैनल है रेडियो मनोरंजन 94.95 MHz 98.2 MHz और रेडियो मॉरिशस 819 KHz पर। तो एमबीसी रेडियो पर तो लोग के स्वागत बार संगतालोग सबको के नमस्ते और सलाम। और जय प्रताप सिंह अदमिक सभी से लेकर रात के 11 बजे ली भोजपुरी तड़का प्रोग्राम बेशक तो लोग के मन चाह भोजपुरी गीत हम चलाओ अब सर। और ये प्रोग्राम में ढेर कुछ चल रही सर, नाच गाना म्यूजिक और ढेर कुछ तरह बताओ अब जा। ये प्रोग्राम के दौरान ही प्रोग्राम चला रोज के लेंदी से लेके दिमाग के रात ले रात के 9 बजे से 11 बजे ले और एम फ्री रेडियो मनोरंजन और AM2 रेडियो मॉरिशस पर। आज है दिमाग के रात गमट करब से तलों के संगे संगे और बीता सांझ के 3 बजे से गमट करते ही सर 3 बजे कर ली सा ऐसा भी होता है और रेडियो मनोरंजन पर। फिर सांझ के 6 बजे कर लीजा नई सोच और रात के 7 से 9 बजे कर ली सा दिलों की आवाज़ और अभी 9 से 11 बजे ले हमनी थलों के नचाओ अब जा ढोलकवा के जोर पे। और बेशक त्रिफोन करके पसंदीदा गीत मांगे चलो शुरू करे जा भोजपुरी तड़का प्रोग्राम के लीलो सरिया के गीत के साथ। गीतवा गैले हवन बिस्वानी दीपवा चल एक साथ सुने।

लीलो सरिया बरिए चुल की तरह ना। हाँ अभी रात के समय बार तो लोग हमने के साथ देवत हवा ठंडा बड़ी करता रोज किसे ठंडा ठंडा ना। तो संग अब हमने थोड़ा बताओ अब जा कि कौन कौन से पब्लिक अभी रही आज से लेके यही साल के अंत तक 15 उत के मनाव सम्शन दे कौन सी पब्लिक रही। फिर मंगर 15 सप्ताह के हो गणेश चतुर्थी को मंगर के दिन रही। फिर लेंदी 2 नवम के रही अराइवल ऑफ इंडेंचर लेबरर्स। फिर दिमास 8 नवम के रही दिवाली। मतलब बोले रहा ना कि अगर दिमास के कौन सी पब्लिक पड़ी तो लेंजी के कौन से मिली होय होय होय होय। फिर फ्राइडे शुक्रवार 25 दिसंबर के हमने मनाओ सर क्रिसमस। और फिर पोमिये जोंविये सामजी रही हाँ कि नहीं नहीं पोमिये और दे जोंविये रही वनरेडी और सामजी। पोमिये जोंविये 2027 रही एगो शुक्र के दिन और ले दे जोंविये रही एगो सामजी के दिन 2027। तई सरल हमने के जो पब्लिक हॉलीडेज रही जैसे कि बोली असम्पशन डे फिर गणेश चतुर्थी अराइवल ऑफ इंडियन लेबरर्स दिवाली क्रिसमस और ले पोमिये जोंविये रही एगो वनरेडी के दिन 1er janvier 2027 के दिन और सामजी 2 janvier रही सामजी के दिन तो वनरेडी ले पोमिये और जोंविये ले दे कौन से पब्लिक रही हाँ कि नहीं। तो इसे ही अपनी गमट करते रहो सर चलो के संगे संगे पूरा साल। और अभी अगला गीत जो है नाचेला गावेला बहुत ही खूबसूरत गीत है। गीत चलाओ अब सर राविश मंडू की ओर से कर पापा कर मामा भाई भौजी और सब मंडू परिवार के नाम है। गीत चली सैंपिया के आफेज खातिर गोजीदा हवन हाईलैंड से मेहजबीन पोर्ट्री से और इब्राहिम भाई वो भी हमने के साथ देवन भाई राफिक मोहित आप हवन तायाग से राफिक मोहित तायाक से वो भी हमने के साथ देवत हवन। तो चला है गीतवा तो लोग के नाम चलावत है जा और सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की संगत यालो के नाम जो हमने के सुना था नाचेला गावेला गिरीश की आवाज़ में।

बांके पायल या नाचेला तो सखिया भी नाचेला और हमने तो लोग के साथ देवत ही जा जी हाँ भी रात के समय हमने रात और के साथ देवत ही सब हो चुकी तरह कार्यक्रम में रात के 9 से 11 बजे ले और अभी आज तक ले वैचवित शाह दिमास फिर वैतिव थौत और पहली जुलाई से मॉक एग्ज़ाम शुरू हुआ था ग्राद नेफ ग्राद ओंस और ग्राद थ्रेस के लिए कालों कंपोजी करी दो सप्ताह के मॉक एग्ज़ाम्स और उसके बाद जिसे जुएत से कॉलेज के लिए कालों की कौनसी मिली एक महीना के कत समय कौनसी मिली तो लोग अभी अपन पढ़ाई में ध्यान दिया जा रिविजे करिया जा अपन टाइम टेबल मन से देखिया कह कह के कबो भुला जाला सा लेकर लोग भुला जाला कि टाइम टेबल छा देखे के निमन से कबो कबो पापी फजीर के रहेला कबो पापी आपके मिजी रहेला तो देखिया निमन से तो हाईलाइटर लेके हाईलाइट कर दिया कि है तारीख के है पापी बा तो छा आधा घंटा लास्ट साल एग्जाम में छा चल

कि अब जैसे पापी वित्तीय बा फजीर के तब वित्तीय घर से नहीं निकल जा एगो सेतीय घर से निकल जाए जब मैं वित्तीय एगो सेती आदमी ने चल जाए बलिकोल अपन आराम से रिलैक्स कर जैसे 8 बजे पापी शुरू हो तक मौसे से करब। अब कब कब फजीर की पापी नहीं रही पापी रह आप जी कैसे 1 बजे से 2 बजे ले तब फजीर से बोने रही तो नहीं जेबा ना हाँ तो सकबा एगो 12 बजे निकले ताकि एगो मिजेज में चल जेबा तब आराम से अपन इन्हें अपन नसल में है कि अपन एग्जामे करिया और एग्जामे कौन छे मॉक एग्जाम कौन छे वही जो सब क्लास में कर ले हवा वही उम्मीद आता है एग्जाम एक से और कुछ नहीं बोलेगा तो निमन से रिविजे करिया ताकि तू एग्जाम में अच्छा से काम करबा जैसे कि बिबली खाद निफ के लेकर लोग एग्जामे करी खाद 11 और घाट 13 मॉक एग्जाम्स और हाउ जो ठीक क्लास वन वन से जैसे घाट 7, 8 घाट 10 घाट 12 ये लोग के टेस्ट हुई थ्रा टेस्ट हो ला सेकेंड टर्म में तो लोग के टेस्ट आ रही बराबर पर है जैसी ज़रूरी है घाट 9 घाट 11 और घाट 13 का है कि इस साल के अंत में घाट 9 लोग NC एग्जाम्स करियन से और SC HSC के एग्जाम्स में घाट 11 और घाट 13 लेकर लोग पार्टिसिपे हो तो दिमन से अपन टाइम टेबल देखिए एरे नहीं करिए एरे कर दे बता जाने लगा होला पर हाई लिखाई में ध्यान दिया और ऐसे में सुनब जाए अगला गीत जीना ईश्वर दत्त गैले वन गीतवा भोजपुरी और एक गीतवा हमने चलावत ई सब संगत आलो के नाम चाची प्रभावती लोल हवन नोवेल फ्रांसे चाचा आत्माराम चाची ललिता कुशल सब्जी राखन परिवार ककतिया परिवार हरकू परिवार ये सब रहे थैयो ले तो चले एक साथ सुने है गीत भोजपुरी।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: On the hour, every hour,
2: Radio Mauritius.
3: जी हाँ, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर चला था एक कार्यक्रम भोजपुरी तड़का और जज्जे की तड़का लगावा थी सर और बोली रहा सर संगतियालो की समय पर चहला भोजन करे के जब समय पर भोजन नहीं कर तब पेट में का समास से अब का समास ले तब गासी को जाए अब दुखते लगे जाए और कबू दुखते बोले छापे राशन करे के पेट में गास के बुल हो गल बा तो ये सब का ही चहला ये कहते बोल रहा सर कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजी लेकर अच्छा बोलक बा कि फजर के तू बन रहे उठ बा उठ के अपन ब्रेकफास्ट कर लेला अपन काम करते हुआ दिन के अपन लंच कर ला और रात के डिनर समय पर सब कुछ हो रहा है। फजर के ब्रेकफास्ट दिन के लंच और रात के डिनर समय पर अगर भोजन कर बात तो पेट में गैस नहीं रमासी थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो। अब दिख रहा फुपामाल जी बार फजर के जहाँ फजर के उठे के 5 बजे तक तो दिन के 10 बजे उठाते हुआ अब कई बजे ब्रेकफास्ट कर बा 11 ब्रेकफास्ट कर बा मिजी लंच कर बा तो सब दीवारों से हो जा रहा। और खासकर हमने देखने से हमने कि नौजवान लोग हमने के जो जिनिस हम वन सब लोग इसी करे रन सब लोग एगो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। हम नहीं बोलते सब जिनिस इसी बा पर ज़्यादातर जो नौजवान है वो लोग के डिसिप्लिन बोलबा तो वो लोग के अच्छा नहीं लगेगा। पर हमने बड़ा आदमी से लड़का लोग के चाह सिखा कि बाबू फजी के चाहे बोनरे उठे के एगो समय रहेगा ब्रेकफास्ट करे के एगो समय रहेगा स्कूल जाए के एगो से। अब स्कूल में भी हवा तो थोड़ा जाने के कि जब थोड़ा लंच ब्रेक में रहता रिक्रियाशों तब ओले हुआ चाहे खाए के अब नहीं कि रिक्रियाशों में तू नहीं खाता हुआ साख में रोटी बार रोटियाँ इसने सान के रख गए तो माँ बाप तो काम करता माँ बाप नहीं जाना था लड़का लोग खाता कि नहीं तो ये खातिर लड़का लोग जब कॉलेज जा लें खासकर लिखो जा लें तो छह समय पर अपन अपन लंच लेके कैसे दिन के 11 आदमी मुको ना हाँ 11 आदमी कहाँ पर 11 सुने होला तो अपन लंच ले लिया सनी मन से और भरपूर भरपूर खाया जा ताकि पेट भरल जा पेट भरल रही तो कक्षा में सकब स्वीप करे तो तुहर पेट में खाए कि नहीं बा है तो कैसे क्लास में पढ़बा बोला था। तो यही खातिर माँ बाप से मांग करते हैं कि जब फजीर के तू लोग उठा तो नींद से तो लड़का लोग के खाए कि डाल दिया धेरे का कबू ओके दुगो रोटी खा ला एगो रोटी सके 11 बजे खा या एगो रोटी एने आ दुगो बाइक मिला एगो 11 आदमी आमी जी और एगो एने आ एने कैंस तो लड़का लोग कि कबू भूख लगे तो दुगो रोटी डाल दिया था कि लड़का खाए ओकर पेट भरल रही ठीक बा पेट भरल रही स्वास्थ्य अच्छा रही तनी मन से लिजकाशों सीख बा अब पेट में खाली रही तो कौन लिजकाशों सीख बा बोले था। और बेशक चलो अब अगला गीत हमने सुनब जा बाप दादा के बच्चा चंद्रदेव जी बोधन गीतवा गए लेवन है गीत गुरुदेव और राज मन्ना खतीर स्टीव लॉन्ग छिबोग राजा श्याम मंगल प्रवीण भैरव जाली मुतुस्वामी स्वीटी फिरदोस रवि और है गीत चलावती साइलेंट की ओर से। जी हाँ साइलेंट की ओर से गीत चली

ओकर बेस्ट फ्रेंड हरीश नारायण के नाम आप रहिलन मिडलैंड्स और बहुत बहुत प्यार से उनके साथ जुड़ल हवन। तो हरीश नारायण गीत तोहर बेस्ट फ्रेंड साइलेंट की ओर से तोहर खातिर बाप दादा के बतिया।

सच्चे के बाप दादा के बच्चा में सच्चाई बा। हमने की बाप दादा लोग काफ़ी अनुभव रहा, लड़का लोग के हमेशा अच्छा अच्छा बात सिखावत रहन सर। आजकल दादा दादी तो दिखते लुप्त हो जाता, कह के दादा दादी ढेर कोई के भगवान के प्यारा हो गल बा। बड़ा आदमी लोग सब धीरे धीरे जात हवन सर। तो खातिर अब हमने बड़ा आदमी से हमने के जहाँ लड़का लोग के सिखा कि बड़ा लड़का लोग नहीं जानी। और साइंस विज्ञान बोलेला कि दूगो ऐसा जानवर बा दुनिया में जकर में सचिमो बा और उनके मेमोआ बहुत स्ट्रांग है वह।

मुर्गी और कुत्ता। तो मुर्गी और कुत्ता के खासियत ई है, ये लोग हमने के पैट्स हवन सा पालतू जानवर हवन सब निके पोसी ला सा। तो मुर्गी और कुत्ता जो है अपन मवार के जाने नन सा, अपन मेत के जाने नन सा। जैसे एगो एगो एगो व्यक्ति अगर कुत्ता पोसा था या मुर्गी पोसा था, तो अपन हाथ से मुर्गिया के खाए के रोज के देवता या कुत्ता के रोज के खाए के देवता, तब कुत्ता वो रिकोनेट करेला कि हाई ओकर मालिक है। मुर्गी में भी एक कैपेसिटी बा इतना कि वो पहचाने ला कि हाई ओकर मालिक है, और जैसे पर मालिक के देखे ला धौगले आवेला पर मालिक के देखे कब देखिए फजीर की जब मुर्गी के खाए के देवता ऐसे हाला का तो आ आ आ आ आ, आ तो मुर्गिया धौड़ल आवेला और बड़ी दुलार से देखेला। ये हम नहीं बोलते, ये साइंस विज्ञान बोला था, और विज्ञान तो हमेशा सच बोलेला। तो दुगो जनावर है, एगो है मुर्गी और एगो है कुत्ता। ये लोग के सोची में दूसरे है, ये लोग अपन मालिक से ढेर ढेर प्यार करे रहता अपन जिंदगी से भी ज़्यादा। और जो है कुत्ता और मुर्गी अपन मालिक के वो लोग के शरीर के पौफा से पहचानने वन से कि हाई वो लोग के मालिक है और पर मालिक लगे चला वन से। और यूट्यूब पर तू देख ले बा कैसे कबो कबो एक व्यक्ति जब प्यार से अपन मुर्गी की बात मुर्गी छटक के और गोदी में चला हुई या कुत्ता के बोला था कुत्ता थोड़ा गोदी थोड़ा छटक के सकी थोड़ा गिरा दी और दुलार करी, हाँ कि नहीं। ये सब साइंस की बात है, हमेशा याद रखे अगर पालतू जानवर बात और लगे प्यार से रखेला तो लोगों में वो लोग के दिल में वो लोग एगो दोस्ती बनावेला हमनी से। हाई एक मुठ्ठी खा के देबा मुर्गी कुत्ता के तो वो जीवन भर थोड़ा याद करी, हमेशा थोड़ा आशीर्वाद दे, सोचेला बात है, हाँ कि नहीं। और ऐसे में चला अगला गीत सुनब जा, बहुत ही प्यारा सन गाना है आज के ज़माना। सवरत रागिनी और लीलो माथुर गीत गेले हुआ है, गीत चलावत ईसा साइलेंट के रसोक मारीता और पत्नी बारानी बेटी परी और सब सीतालु परिवार के नाम और इंदिरा चिंताराम जी है गीत थोरो नाम। बहुत बहुत प्यार के साथ आज के ज़माना।

सगर चलो कब कब इमरजेंसी नंबर्स याद कर बता अच्छा है नहीं जन कब कौन प्रॉब्लम हो जाए तो है जो निम्हो इमरजेंसी के हमने के देश में थोड़ा चला हमेशा याद करे के जैसे कि बोलब सर पुलिस के तो पुलिस के नंबर है 999 या 112 निफ निफ निफ पुलिस के नंबर है। फिर हमने के सामू जो एम्बुलेंस के नंबर है वह है एन एन कार्ट यानी कि 114। फिर फायर रेस्क्यू है 115 या कहूँ कहूँ पर निफ निफ 5। और मितियो हमने के जो मितियो वाकवा में है ओकर निमेरो है 171। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट के नंबर है 113 113। और फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट के नंबर है NNF। और नेशनल कोस्ट गार्ड के नंबर है 212-27-47। ये सब नंबर इमरजेंसी है जो कबो भी सकेला काम पर यू है पुलिस के नंबर सामू फायर रेस्क्यू मेथियो स्टेशन चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट और फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट और नेशनल कोस्ट गार्ड। तो ये सब नंबर चला हमेशा याद रखे के कहे कि कबो भी एक सकी हमने के काम चलाए ये सब नंबर नोट कर लिया फिर से नंबर वन बोला थे ताकि तो लोग एगो काये में सक बजा नोटे कर ले। और पुलिस के नंबर है 999 या 112 सामू के नंबर है 114 114 फिर फायर रेस्क्यू है 115 115 और मौसम विभाग मेट्रो स्टेशन है 171 यानी कि N7N चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट है NN3 113 फैमिली प्रोटेक्शन यूनिट के है NNF यानी कि 119 और नेशनल कोस्ट गार्ड के नंबर है 212-27-47। तो ये सब नंबर हमेशा याद करिए वो काई में नोट कर लिया ताकि कबू भी थोड़ा काम भरी तो ये सब नंबर के सकब उपयोग करे कबू कबू एगो सिचुएशन चलावेला इमरजेंसी तो नहीं जाना तो कि ला पुलिस की निम्हो कौन ची है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की कौन ची है कोई कि घर में आग धरे लगता फायर सर्विसेज के कैसे जनाब सा तो ये खाती सब नंबर हमेशा चेला याद रखे के समझदार की इशारा काफ़ी बा। अगला गीत ज्वाला बिजादन गैले हवन अजब तोरे लीला और है गीत तो हमने खासम खास चरावती सब श्रोतालों के नाम जो हमने की सुना हवन शास्त्री बुनमाली है गीत तोहर घरोली तोहर बेटा विवेक बेटी दामाद और सब बुनमाली परिवार के नाम होरीलाल दिनू है गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम चंपा और देविका रामगतिया है गीत तो लोग खातिर तो लोग के पति और लड़का सब रामगतिया परिवार के नाम वंदना घुमानी है गीत तोहरों खातिर और सब घुमानू परिवार के नाम चलावती सर। और जितना कोई रात के बिमन की सुना था थोड़ा नींद नहीं लगता इधर करवट बदलते हुआ उधर करवट बदलते हुआ तो गीत तोहर नाम और जितना कोई भी गाड़ी चलावा ड्राइव करते हुआ धीरे धीरे गाड़ी चलैया और हमने के साथ है गीत तो एकदम चकाचक बा अजब तोहर लीला

अब संगत लोग बात करें सर हमने बॉलीवुड के बारे में, कौन कौन फिल्म रिलीज हुई के बाद आने वाले दिन में, आने वाले महीना में, लाफ में कौन कौन फिल्म रिलीज हुई के बाद, और जाने ला सर कि जुयत में लड़का लोग के कौन सी मिली तो लड़का लोग सिनेमा फिल्म देखे मम्मी पापा के साथ या संगत लोग संगे। तो 3 जुलाई की रिलीज होता एगो नवा फिल्म धमाल 4, एकर में रही अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशाद वारसी। 10 जुलाई की रिलीज हुई फिल्म अल्फा, एकर में दिग्ब अलिया भट्ट, शर्वरी, बॉबी देओल के। और 24 जुलाई की रिलीज हुई फिल्म रफ्तार, एकर में तू दिग्ब कीर्ति सुरेश और राजकुमार राव के, नया नया कलाकार दिख भजा। और अगस्त के महीना में रिलीज़ हुई बटवारा 1947, ये फिल्म के नाम है कातोस उत के फिल्म रिलीज़ हुई, फिल्म में रही सनी देओल, प्रीति जिंटा। और 14 अगस्त के रिलीज़ हुई मातृभूमि फिल्म, और एकर में रही सलमान खान। फिर 14 अगस्त के रिलीज़ हुई आवारापन नंबर 2, ये फिल्म के मुख्य कलाकार रैयन इमरान हाशमी, दिशा पतानी। फिर 28 अगस्त की रिलीज़ हुई व्यान फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये फिल्म में दिग्ब तमन्ना और सिद्धार्थ मल्होत्रा के। घोसला का घोसला ये फिल्म के नाम है घोसला का घोसला नंबर 2, ये फिल्म रिलीज हुई वैचित उत के 28 अगस्त के, ये गो लोकप्रिय कॉमेडी फिल्म रही। तो थोड़ा मन लग गया, थोड़ा अच्छा लगेगा हंसे के, मुस्कुराए के, खुशी रहेगा हंसे के, खूब कॉमेडी के, कॉमिक करे के। तो फिल्म देखिए स्ट्रेस दूर भगैया, फिल्म के नाम बा घोसला का घोसला 2, और फिल्म रिलीज हुई इंटरनेशनली 28 अगस्त के, क्या बात है। और फिर रामायण फिल्म भी बना था अभी, काफ़ी हाई बजट वाली फिल्म रही रामायण मूवी। और तो रदीजा बोल नहीं सकी है रामायण जो फिल्म है एगो ऐतिहासिक फिल्म है और एपिक फिल्म है रामायण हिंदी मूवी। और फिल्म में ढेर पैसा लगता और जो फिल्म जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म रही, कहे कि है फिल्म के निर्देशन करले व नीतीश तिवारी जी हाँ। और एक में राम के श्री भगवान श्री राम के रोल निभायन रणबीर कपूर, माता सीता के रोल निभायन साई पल्लवी,

रावण के रोल में तू दिग्विजय की और हनुमान के रोल में सनी देओल। हाँ क्या बात है, देखा सकता है क्योंकि पिछला जो रहल रामायण ओकर में दागा सिंह हनुमान के रोल निभा रहा था। आई जो नया रामायण फिल्म बना था एकर में हनुमान के रोल निभायन सनी देओल और लक्ष्मण के रोल में दिग्ब रवि दुबे के। और फिल्म में भगवान श्री राम के जीवन की प्रमुख घटना पर आधारित है। श्री राम के जन्म, सीता स्वयंवर, 14 वर्ष के वनवास, सीता हरण, हनुमान का लंका जाना, राम रावण युद्ध और अयोध्या वापसी। और सूत्रों से पता चला था कि यह फिल्म रिलीज हुई दिवाली के है बड़ी जब दिवाली मनाओ सर दिवेंसिस के तब फिल्म रिलीज हुई एकर पार्ट वन और एकर पार्ट टू रिलीज हुई दिवाली देमिल वेंसेट के। तो फिल्म दो को भाग में रही एक एपिक फिल्म है रामायण और है भारत सिनेमा के सबसे महंगा फिल्म में रही। और फिल्म में आधुनिकतम VFX की प्रयोग करवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकी विशेषज्ञ अपन सहयोग दे रहे हवन सर और ये फिल्म एकदम जोरी रही और सकेला बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रही। तो समय ही बताए पर अभी के लिए सुनब जाए अगला गाना। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सन गाना सुम्बावती दुमन गैले हवन बहुत प्यार के साथ सास के करा करा बोलिया। अब सास का ही करा करा बोलिया बोलेरा ये तो बहु लोग जानी और सास लोग जानी कि का ही करा करा बोलिया रहेला। तो गीतवा जिन सास के करा करा बोलिया चलावत ऐसा सैंट थॉमस SSS कॉलेज के सब संगतियालों के नाम मिस दीना, मिस प्रतिमा, मिस्टर साजू, मिस्टर वीरापन, मिस्टर रोसाई रुसाल, मिस्टर अपाया, मिस्टर गंगू, मिस्टर एडू, मिस शबनीज और मिसिस बंगादू के नाम। तो चले एक साथ सुनाई प्यारा संगीत सास के करा करा बोलिया।

बोले तो संगत यार लोग कैसे बुझाता प्रोग्राम में एकदम चकाचक बना। हाँ सब कोई नाचता गावता झूमता मी के संगे संगे और बेशक जब हम नहीं आए रहा सर रेडियो पर तो सब कोई के नचाई रहा सर। तो बचत भाषण में सुने रहला कि अब जब कोनो कोंजी बिक रही दिमाग के तर लेंजी के कोंजे मिली और मैटरनिटी कोंजे जोन है 12 महीना गो काम करवा औरत जोन काम करवा महिला जोन काम करे रहा तो के 12 महीना मिली मैटरनिटी लीव और फादर लोग की मिली 6 महीने पैटर्निटी लीव। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सरकार के देवत है कि इतना अच्छा अच्छा लालवा निकल लगभग बहुत अच्छा बात है। हमने क्यों को वाजी करेला और बहुत अच्छी बात है। आहा और बेशक कभी अपनी साथ देवत इस तलो के रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और तलो के भी अच्छा लगा था प्रोग्राम सुने के हमियों के भी अच्छा लगा तलोक से बात करके। और अगला गाना है सास ससुर के धनुआ संजय हरिचंद की तो आ गए थे वन बहुत बहुत प्यार के साथ। और ये गाना चलाती से सब संगत्या लोग खाते जो नबी नाइट शिफ्ट में काम करते हुए जैसे कि क्लिनिक में अस्पताल में जितना नर्सिंग ऑफिसर बा डॉक्टर लोग काम करता और मिथियो स्टेशन में यानी कि मिथियोलोग लोग काम करता फिर कॉल सेंटर में फायर सर्विसेज में ढेर कोई काम करता पुलिस विभाग में हो तो जितना कोई भी रात के काम करता लीजिन में ढेर कोई काम करता है कोनो कंपनी बार रात के काम करता तो जितना कोई काम करता है 20 समय रात के काम करता हो सा और सुनत हो हमने के तब तो लोग के सब की बड़ी सब बोकुहाश हमने के आशीर्वाद हमने के प्यार तो लोग के संग संगे बा। अभी ढेर कोई नाइट शिफ्ट फिनी कर दे लगभग शायद घर आवत वन या ढेर कोई अब जाते वन सर नाइट शिफ्ट में का फजित के 6 बजे काम करिए सर तो सब कोई खातिर रखला गीत चली सास ससुर के धनुआ में के बैठल बा। चला संजय हरिचंद के सुनब सा ई गीतवा में

0: continuous music.
1: RM3 800 and 19 kilowatts. This is Radio Mauritius.
2: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर कमर धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर
3: भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
4: रात के 10 बज गल बा और एक घंटा बाद लोग के साथ देखते भोजपुरी तड़का प्रोग्राम और जय प्रताप सिंह के साथ MBC रेडियो रेडियो और RM3 रेडियो मनोरंजन पर और AM2 रेडियो मॉरिशस पर। अब धर कुछ रहता है रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन कौन चीज है तो ये जो रेडियो मनोरंजन है या आगे ताल FM रहल तो ताल FM कन्वर्ट हो गल बा रेडियो मनोरंजन में और बेस FM कन्वर्ट हो बा रेडियो मस्ती में और रेडियो मॉरिशस रेडियो मॉरिशस ही रगल बा ओके AM2 रेडियो मॉरिशस वही जा सर तो ये नुवो इतना नहीं सर ताकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपन श्रोता लोग खातिर अच्छा जोरी जोरी प्रोग्राम चलाओ अब सर हाँ कि नहीं और अभी रात के समय तो लोग हमके साथ देव तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जानी ना सर फजीर के बुनरे उठे के बा पर नींदवा लगी तब ना कोई सूती अब दहर के बोला था प्रताप जी अब तक गम्मत करब सब तो लोग के संगे कोई बात नहीं।

गीता। चला अभी अगला गीत हमने सुना जा किशोर कुमार रमी सर गैले वन गीत अच्छा तू कर ले। अब कौन सी अच्छा कर ले, चला एक साथ सुनब जा। और गीत हमने चलावत इस प्रेमिला के नाम आप हिरन का ट्रबोन शोभा वन बाकवा से शोभा पोम्पलीमुस से। और ये गीत हमने चलावत इस उस सब संगत आलो के नाम जेके सर्दी खांसी जुकाम होलबा और आजकलता ये सब वायरस है जो नाफी के फीवर जो हर टॉक ऑफ द टाउन बन गल बा जहाँ देख बा एगो घर में अगर एक जना के लाफी हुआ था तो सब कोई के लाफी लड़का के लाफी हुई तो माँ बाप के हो जाए, माँ बाप के लाफी हुई तो लड़का लोग के हो जाए, तो ए एन प एन सब के लाफी हुआ था। तो हम बोला जब थोड़ा लाफी हुई तो तुरंत शायद डॉक्टर लगे जाए के पिकिया उकिया करा लिए दवाई ववाई ले लिए ताकि ठीक हो जाए। अभी लड़का लोग एग्जामे करे खातिर लड़का लोग से बोला जाए कि ग्लासे नहीं पिए के एगो टाइम उसमें गर्म पानी रखिए या गूद में गर्म पानी भर के जइया लिकोल तब तुरा मन करी तो अपन गर्म पानी पिए, ठंडा पानी नहीं पिए के ग्लासे सब नहीं पिए के कहे के भी ठंडा करता तो अच्छा बिसे होता। और बेशक यहाँ मॉरिशस में तो अच्छा बिसे होता पर यूरोप में फ्रांस में भारत में बाप रे बाप वहाँ तो आग की गोला वहाँ के तो अच्छा 40 से 45 डिग्री। और लाफ्रांस में कुछ दिनों इतना गर्म करता इतना गर्म करता कि गर्मी से कई लोगों की जान चल गई बा। जरा सोचा इतना गर्मी करे रहा दूसर पे ही में कि अब गर्म से इंसान की मौत हो जा रहा ऊ लाला वेरी डेंजरस हो कि नहीं। चलो भगवान से प्रार्थना कर अब से केसन सिटी नहीं हुई। और यहाँ पर तो कप कप ही हुआ था ठंडा लगता सब कोई के आहा हम जा रहे गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के आए तू सुनाएगी तो किशोर कुमार अमी सर की आवल अच्छा तू कर ली।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: मोहनदास करमचंद गांधी को बहुत महान इंसान रलन, वो अहिंसा पर बहुत बात करलन और भारत खातिर और दुनिया खातिर भी बहुत कुछ करलन और उकर वचन जुन रहल हमेशा सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत हो। और गांधी जी के तीन गो बंदर ई गो सैम्बोलिक है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। ये गांधी जी सिखा के अमनी की गलबा। पर आज के इंसान का करा था सब ले कौंथे का हो भैया। बुरा ना देखिए, बुरा ना सुनिए, बुरा ना करिए, अगर इंसान हुआ तो इंसान की तरह जिए, हाँ कि नहीं। पर आजकल देखे से कलयुग है भैया, अभी जहाँ देखो आदमी की जहाँ को ना अच्छा चीज बोलला तो आदमी अहिंसा करे लगा, व्यूलों हो गल का जी नहीं का ही। आजकल छोटा छोटा बात में आदमी बात के बटंगर बना देता, झगड़ा हो लगे भैया, महाभारत हो लगेला, इतना मूवी आदमी हो गलबा। पर भगवान से प्रार्थना कर रहा कि हमने के मन में जितना मूवी बा, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब दूर रही और सबके मन में प्यार हो और सबके मन में एक दूसरे के प्रति प्यार अपनापन हो, तब से कब से हमने बोले कि हमने इंसान है सर। अब कब छोटा छोटा बात में देखबा कि वो कोई के थप्पड़ मार दिलक या छुरी से भोंक दिलक या कोई के चोरी कर दिलक, तो ये सब कौन चाहिए, सब नहीं चहला। हमने की चेहरा इंसान ही सर, इंसानियत दिखाई कि कोई मदद मांगता तो मदद कर, नहीं कि कोई मदद मांगता तो हंसी उड़ावत हो। अभी दिखते इसे को फैशन लिखा होगा बाकी बुफोने करे न सर आदमी लोग, प्लेजिया ले सर, तो ये नहीं अच्छा है। गांधी जी के तीन गो बंदर ही गीतवा गए लेवन कई से का गिर जानन और गीतवा चलावत इसे सब कोई खातिर जितना कोई हमने की सुनाता दुनिया भर में जहाँ तक हमने की आवाज़ आता है, कर मेरे को बहुत बड़ा मिसाज बा। बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सुनो, तुम इंसान हो, इंसान की तरह रहो। इंसान हुआ इंसान की तरह ये भैया, शैतान नहीं बनिया। हगी चाहते इस लाहौजा के संगीता के नाम बहुत बहुत प्यार के साथ, उकर माँ रहेलन कास्तेल, उकर भाई दान आजी और वर्षिका वंशिका वर्षिता हेमा शांति और सब अमीरन और मोहन परिवार खातिर। ज्ञान की ओर से चली कर पत्नी चित्रा विश्राम के नाम है गीत, कमला जी ने मोहताबा से अवन होकर नातिन आरोही खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई महात्मा गांधी की फॉलोवर्स हवन सर और एक जना को एक हालांकि संगति अंक बोली रहा वंस ए गांधियन ऑलवेज ए गांधियन। जितना कोई महात्मा गांधी संस्थान MGI कॉलेज में पढ़ाई कर ली है वन सर फॉर्मर स्टूडेंट्स या अभी के स्टूडेंट्स और वहाँ के जितना प्रोफेसर बा वहाँ के लड़का लोग MGI कॉलेज मौका के गीत लोग के नाम और वहाँ पर ही हम भी स्टूडेंट रही फॉर्मिंग से लेके अच्छे से वहाँ पढ़ाई कर ली और आज हम गर्व के साथ बोलते हैं वंस ए गांधियन ऑलवेज ए गांधियन। वहाँ पर हमने के अध्यापक रलन डॉक्टर झमन जी, मिसेस बंधन, मिसेस जुमादा

Mrs. Naik, Mrs. Gopal, Mrs. Ning. हमने कि जितने अध्यापक लोग ललन कोटि कोटि प्रणाम तलोके बदौलत आज हमने समाज में ऊंचा स्थान पाई ली है जा कोटि कोटि धन्यवाद कोटि कोटि नमन।

गांधी जी के तीन गोबंदर सब कोई जाने रहा, पर जान के अनजान बने रहा। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी हमने के सीख दे के गलबा, और ये सब सीख हमने के छा सीखते रह के और हमने के नवा पीढ़ी के सिखाई के कि नहीं। और गमट हुआ था, नाच गाना भी हुआ था, और संगत यार लोग हम बोला तो रहा कि कबू कबू तो लोग काम में इतना व्यस्त है रह सा कि अपन ख्याल रखे के भूला जा रहा सा। अरे भाई मौका मिलता थोड़ा सुन जाइए ब्यूटी पार्लर, थोड़ा सुन जोली दिखिया, मेकअप वेकअप करिए और अपन के सुंदर बनैया, कह के काम के पीछे काम काम काम काम तो कितना काम करब, थोड़ा सुन आराम करिए, जाइए ब्यूटी पार्लर, जोली जोली कपड़ा पहनिया, फाशाल करिया, ब्रशिंग करिया। अच्छा अच्छा बात है ये सब, चेहरा अपनों की जोली बनाई कि ना, अब खाली काम के पीछे करते करते करते बुढ़ाओ जब से भैया, एक काम को वो समाप्त नहीं तो समय मिनट अपन ख्याल रखिए, जाइए ब्यूटी पार्लर में खूब लापू लाकर मुक्रम दलिया जाइए घूमे, बॉडी बिल्डिंग करिए, जाइए जिम में सब, और जोरा तो अच्छा लगेगा, ढेर कोई खुशी लामे जाए के तो लामे जाइए घूमे, ढेर कोई खुशी रहेला परिवार लगे जाए के गपशप करे के तो जाइए, ढेर कोई खुशी सिनेमा जाए के शॉपिंग करे के, ये जीवन मिलल बा भैया, एक ही जीवन है, तो जीवन में जो है खूब गमत करिए, अपन ख्याल जरूर रखिए, कभी कभी दूसर के ख्याल रखते रखते हमने अपन के ख्याल रखे के भुलाएला जाए, भूल जाए रहा सा कि हमने को इंसान ऐसा हमने के चाहता रहा जोड़ी दिखे के, हाँ सुन ला ना, नहीं बोलिया कि नहीं जाने ला अब देखो बोले ला कि देखा ना समय नहीं मिलेला, ना ही समय चेहरा खोजे के, तू भी थोड़ा सुन जोड़ी से आप ये हो

0: जुड़ी जुड़ी साड़ी चूड़ीदार सब पहनिया मिशे लोग नया नया जूता घड़ी और है क्या बात बा। तो चलो अपन ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए और सुनो अगला गीत भोजपुरी हमारे महाराज कमल चिंतामणि गीत गेले वन और बहुत बहुत प्यार से गीत गेले वन। तो गीत छी अनिता लाल जी खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ मौदल में रहेलन फिर अनिता हवन फ्लिक ऑफ फ्लैग से गीत थोड़ो नाम
1: भोजपुरी हा हमर माँ भोजपुरी हा हमर।

सच है कि भोजपुरी है हमार माँ, भोजपुरी हमने की माता है, और भोजपुरी भाषा हमने सीख सीख के बराबर से हमने की मातृभाषा भोजपुरी, तेई भाषा के कबो नहीं भूलैया। और अब हमने बात करब स एगो एगो सब्जी और एगो फल के बारे में, दोनों है, ये सब्जी भी है फल भी है। आप लोग सोचते कौन सी ऐसी जो सब्जी भी है एगो फूई भी है एगो लेगीम भी है, तो वह काहोत जो कि हमने हिंदी में गाजर बोली रहा सर, तो गाजर के ढेर गाजर जो है एगो अत्यंत पौष्टिक सब्जी और फल है। एकर में बीटा कैरोटीन बा और एकर में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, पोटाशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी बा। और कैरोट खैबा गाजर खैबा तो आँख के लिए लाभदायक है और शरीर में विटामिन ए लावेला और सामान्य दृष्टि के हमने की अच्छा बनावेला। जब कोई की आँख से कमती रखेला तो उससे की काहोत के जी बना के पिए या काहोत हापी करके खाए अच्छा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावेला ई सहायक है। एकर में विटामिन सी बा, विटामिन सी बा और हमने के प्रतिरक्षा प्रणाली के मजबूत करेला, हमने की इम्यून सिस्टम के स्ट्रांग बनावेला। और फाइबर और पोटाशियम रक्तचाप के नियंत्रण में रखेला, हमने के ब्लड प्रेशर के बीपी के कंट्रोल करेला और हमने के डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्प करेला कारोत गाजर। जी हाँ, त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है, हमने के लापो खातिर हमने के लापो के सुंदर बनावेला कारोत के बता लापो जरूरी होला। और वजन नियंत्रण में हमने के सहायता देवेला, जे कोई ओबेज रहेला ढेर मोटा रहेला तो काहोत खेबा तो तोहर वजन कम रही। और गाजर में कैलोरी गाजर खेबा तो कैलोरी कम करेला तो कैलोरी जरावेला। हड्डी के लिए भी बहुत अच्छा है, कर में विटामिन का बा तो हड्डी के स्ट्रांग बनावेला। तो गाजर के ढेर तरीका से सकब से के तैयार करे, ऐसे ही सकब से गाजर कच्चा गाजर खाए काहोत तो के सफा से धो के गादे करके सकब खाए। ओका सलाद बनेला गाजर के जूस बनेला, जी काहोत काहोत के भुंजाला काहोत के लासूप में भी से भी होला। काहोत कापी कर देबा कदुआ को पिटी बूट थोड़ा पिटी बूट मुर्गी अब जोड़ी से ओके डाल देबा तो वो लासूप बन जाला। गाजर के हलवा भी बनेला, ढेर कोई बनावे अगर नहीं जाना तो बनाए तो यूट्यूब पर देख कर गाजर के हलवा बनैया, पर ढेर चीनी नहीं डलिया, गाजर के हलवा भी बनेला। तो मॉरिशस में देखी रहा सर ढेर नौजवान लोग है कागोत नहीं कुछ अंसर खाए के, तो लड़का के हम देख रहे हैं ची बाबा के खाए के जो पिघे रहेला और में कागोत खाजे करके डाले रहें जमीले का लोग आ बिचे हो। तो कागोत जो है जैसे बोली एक में दूगो अलामता है, वो फ्री भी है एगो लेगीम भी है, ओके सकब फुई के सामान खाए और लेगीम की तरह भी। तो भूले नहीं रोज की एगो गाजर खाइया, ये तोहर आँख के तोहर दृष्टि के अच्छा रखी, तोहर लापो के जोड़ी बनाए और तू हमेशा स्वस्थ रह। तो भूले नहीं बाजार जेब तो गाजर यानी कि कागोत जरूर खरीदिए और हमने की सोचा जा। और बेशक रात के 10:25 होता हमने चलो के साथ देवत है जा और रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर और भी 11 बज रहे तलो के साथ देव जा। अगला गीत राजकमल चिंतामणि, राजकमल चिंतामणि गेले मन बुझावल और ये गीत चलावत है जा वीना कुपुस्वामी के नाम रहे रन मायबू कर घरोला बेटा पतो बेटी चीजों सब कुपुस्वामी परिवार के नाम है ये गीत चलावत है सा सुलमान दुखी के नाम उकर बेटी नबी हा और उकर घरोला और उकर उकर बेटी के नाम विश्वानी बाबूलाल आखोजा सेवन गीत और खातिर निशांत सिंह चुबा हवन थाबुचिक से गीत और पत्नी तोहर बेटा बेटी दामाद सब परिवार खातिर लिस्काली की उमा जगनायक लो गीत और खातिर तोहर बेटी दिष्टि तोहर दामाद चीज ऑफ लोग सब बहादुर परिवार के नाम है गीत चली बुझावल। अब कौन बुझावल है चल एक साथ सुने।

इटामनी सब कोई जानी रहा सा कि गर्मी के मौसम में जब समुंदर के तापमान बढ़ेरा तब बादल गरजेला बिजली चमकेरा। पर तू कबो सुने वा लीवे में बादल गरजेता? हाँ ता आज हाल वेंचुई ता वेंचुई था दिमाग के ता सुख के यानी कि वेंसित वेंसिस वेंसिस जन यानी कि दो दिन पहले आज से जन कहते मोटा पानी बरसा रहल बिफे के रात से लेके सुख के फजीर ले हाउ पानी जन कहते बरसा था और बादल गरजता थम खोमेफा देख ले हैं मॉरिशस में खोमेफा देख ले कि इतना ठंडा करता रही ठंडा के मौसम में बादल गरजता भाई ये अचरज नहीं है तो कौन चीज है तेकरे बोल जरा क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग और अभी गो न्यू फास शुरू हो एल नीनो ई जुलाई महीना में कर में प्रवेश कर सा ई तो बड़ा खतरनाक है एल नीनो एकर में तो और क्लाइमेटिक चेंज होला तो ई जो होला क्लाइमेटिक

छेंजत एलिनो है तो कोंग-कोंग पर जबरदस्त पानी बरसेला बाढ़ आवेला बड़ा बड़ा तूफान पैदा होला कहूँ कहूँ पर सूखा सकेला दस महीना ले कोनो कोनो इलाका में सूखा पड़ रही तनको पानी नहीं बरसी और कबू कबू कोनो कोनो इलाका में इतना पानी बरसी कि जल थल एक हो जाए। तो हम सोचा था ही कि मॉरिशस भी एक ग्लोबल वार्मिंग से बचल नहीं बा कहे कि हम देख ली जो कहते पानी बरसता मोटा पानी है जेजी की रात के नॉन स्टॉप पानी बरसते रह सुख के फजीर के साथ आठ बजे रे और पनिया जो कहती बरसत और बादल गरजता तो बाप रे बाप बुझाता हमने लेते में ऐसा और सिक्लोन के पानी इतना बरसता ये सब ग्लोबल वार्मिंग एक खातिर बोल रहा सर कि प्रदूषण नहीं करेगी डोंट पोल्यूट तो अभी लोग सुने ना नहीं जब पोल्यूशन कर प्रदूषण कर तो क्लाइमेटिक चेंज होला सब कहते समझ मौके मार्ची को हमने के परेरा सही के तो चल अब सुन अब जाए गो प्यारा संगीत आज के जवनवा विजय राव गीत वगैरह है वन और है गीत हमने चरावत इस खास कर विशाल मंडप के नाम प्रहरण इटली ओकर बेटी ओकर पत्नी ओकर माँ और बहन सब मंडप परिवार जो मॉरिशस में रहे न जा मोताबा में और मंडप परिवार जो इटली में हवन है गीत उतलो खातिर विकास नारायण है गीत थोरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ आज की जवनवा

बेशक आज के जवनवन के चेहरा मेहनत करे के काहे की देश के बागडोर तिलोक के हाथ में रही और ये भविष्य तिलोक के हाथ जवान लोग केवल अब सब काम करिए काम करते रहिए और मेहनत करिए पढ़िया लिखिया बड़ा आदमी बनिया और देश के बागडोर संभालिया। और जब कोई छोकरी शादी करके जा रहा था बहुत सपना संजो के जा रहा अपन ससुराल वो सोचे रहा कि ओके सास लगे माँ के प्यार मिली ससुर से पिता के प्यार मिली पर कभी कभी सपना पूरा नहीं होला रहा कि अरे जो छोकरी है दूसर परिवार से अलबा और जब दूसर परिवार में प्रवेश करेरा तो देखे रहा वहाँ पर कितना फिहौस रहे रहा था कभी कभी का सपना टूट जाला पर का सकब सक करी। और बेशक जब छोकरी जाला तो धे मना सपना लेके आवे रहा और वो सोचे रहा कि ओके सास ससुर के घर में माँ ओके बाप माँ के प्यार मिली कोनो कोनो परिवार में ससुराल में मेरे रहा प्यारे नहीं बोलते कि नहीं तो चला भाई गीतवा सुनब जा ससुराल शर्मिला बोधा गीतवा गई देवन है गीत चलाओ तो इस माधव के ओर से कोई चाचा जान साइरन के नाम कोई चाची रानी खादिर अपन चाचा चाची से बहुत प्यार करेगा राधा शिवालक है गीत हर बेटा प्रशांत और बहू बेटी शिल्पा और सब शिवालक परिवार के नाम चलो एक साथ सुने गीतवा ससुराल।

देखला कैसे एगो माँ अपन बेटी के सिखावा था कि ससुराल जेबे तो अपन सास ससुर की सेवा करिए, पति की सेवा करिए। बाप अभी की छोकरी सास ससुर की सेवा करी? सास भी कभी बहू थी? नहीं नहीं, कोनो कोनो छोकरी अपन सास की सेवा करे रहा। हम कहला राजो में छोकरी लोग अपन सास खातिर गीत मांगे रहा, कोनो कोनो सासु में अपन पतियों खातिर गीत मांगे रहा। बोले से लोग माँ बेटी दिखा रहे हैं से, पर कोनो कोनो बाप रे बाप सास पतियो है कहती झगड़ा। झगड़ा तो जितना होला महाभारत। हम जहाँ दिख रहे महाभारत हम भागी रहा वहाँ से। हाँ तो सास बहू में जो नॉर्मल है ना, स्वाभाविक है कि सास कौन सी बोलकर पतियों नहीं माने रहा, पतियों कौन सी बोलते सास नहीं माने रहा। और अगला गीत चली रानी सुदाम गीत गए रहे हवन माँ पर। एगो माँ की जो जगह है तक कोई नहीं सके रह रही, वो चाहे इंसान हो जानवर हो, जो माँ रहे रहा तो अपन लेका के पोतीजी करेला अंतिम समय तक। और माँ जो है कभी कभी दुर्गा के रूप काली के रूप भी धारण करेला अपन लेका के रक्षा करे खातिर। त माँ के कबू नहीं भूलैया, माँ जो है भगवान के दूसरा रूप है। रानी सुदाम गीत गए वन माँ पर है गीत चरावती इस अनुषा जी के नाम, फिर रोशनी की ओर से ओकर माँ ओकर बहन और दादी खातिर, श्रीमती हवन सुयाग से गीत तोहर खातिर तोहर सब परिवार के नाम। और जितना चाची नानी दादी लोग हमने के सुनाता है गीत लोग के नाम, दादी सतवंती हवन त्रियोले से हाय दादी है गीत तोहर खातिर, दादी उर्मिला हवन कैटोबोन से, और दादी सुनिधि, दादी सुनिधि हवन हवन मेबक से। तो दादी ये गीत है तोहर नाम माँ, बहुत प्यारा संगीत माँ। चला सुना रानी सुदाम की गावत गीत।

तो हमेशा से माँ की पूजा होला और माँ के देवी के रूप में सरस्वती माँ, काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, सीता माँ के रूप में अपनी पूजा कई रहसा और माँ के स्थान कोई नहीं सकेला ले। और इस समय चला था भोजपुरी तड़का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर MBC मुका से उनकी प्रसारण चला था। यहाँ पर तो बड़ी ठंडा करता और पानी भी थोड़ा बहुत बरसा था, एक बावजूद हमने जैकेट तो के डाल का नहीं सर तो लोग शादी खातिर कार्यक्रम जा ही ना सा कि चलो तो खुशी रह रहे से उनकी प्रोग्राम सुने की हाँ कि नहीं। अब हम थोड़ा को कहानी सुना फाबदुल्ला फोतेन के। कहानी के शीर्षक है कौवा और लोमड़ी कौबोरियो गिना। तो बहुत साल पहले की बात है, घना जंगल में गो कौवा रहत है, एकदम करिया रहल और वो पनीर के गो टुकड़ा अपन चोंच में लेके वो जाके गो घोंची में बैठ गल, घोंची की दाल में बैठ के अब जाता खाई। तो उसी समय वहाँ से कुछ चालाक लोमड़ी गुजरत हल। तकर मन में चलाल कि काश है पनीर के छोटा सा टुकड़ा के मिले

हम खा लीजिए, हमारा पेट भर जाए। पर लोमड़ी सोचता कभी हम कौवा से मांगा पर पनीर था वो नहीं दे, तो वो एगो योजना कर लग, का कर लग वो कि कुयो नहीं कर लग। अब बोला था लोमड़ी, बोला था कौवा महाराज तू बड़ी ही सुंदर हवा, तो हर पाँव कैसन जोरी जोरी बा, और इस जंगल में सबसे सुंदर आवाज़ तोहर बा, जब तू गावे रहा ओए होए सब सब कोई नाचे लगे रहा। कौवा जब सुबह प्रशंसा सुनलक तो फूल के ठेकवा हो गल, मन में सोचा था सच्चे की बोला था हम सुंदर गायक हैं। बस सच्चे के जैसे अपन चोंच खोलला काँव काँव करला गीत गाय के, तब पनीर के टुकड़ा नीचे गिर गल। अब लोमड़ी जोन रहल तुरंत पनीर के टुकड़ा उठैलक, हंसते हुए कौवा के बोललक धन्यवाद कौवा महाराज, आज तू उनके अपन खाए की देला, पर हमेशा याद रखिए जोन व्यक्ति झूठा प्रशंसा करेरा ओकर प्रशंसा पर नहीं जाइए, वो थोड़ा कुयो नहीं कर दिलक। इतना कह के लोमड़ी जोन है पनीर के टुकड़ा खा लिलक और भागल वहाँ से। कौवा के अपन भूल पर पछतावा तो हो, पर काश की कौवा करे तो उस दिन से कौवा जे भी ओकर प्रशंसा करेरा तो वो नहीं मानेरा, कहे के है लोमड़ी ओके ठग दिलक। एक ना धीरे आदमी ठगेला कोनो चीज पाई खातिर, तो आके ठगियन से ए ता तू बहुत अच्छा हवे, तू कितना अच्छा आदमी हुए, तू इतना निमन काम करेली, और तू लोग कोनो चीज़ खोजेला। तो देखिए आदमी जब तोरा तोरा प्रशंसा करी तो ठेकवा लेखा फूल नहीं जाइए। देखला कौवा का करला, कौवा जो है लोमड़ी जो है कौवा के कुयो नहीं कर दिलक, और जैसे कौवा चौंच खोलक काँव काँव गिर गए थे तो लोमड़ी और पनीर लेके भाग गल। तो तू जो है हमेशा माले बनिया कुयो नहीं बनिया। चला मेरे को गीत सुन जा, बेचू बे जानन के गावल गीत है हमर जान, चल एक साथ सुने।

हरि गीत के संगे भोजवितर का प्रोग्राम ये पड़ी समाप्त हुआ था। सांझ के 3 बजे से लेके अभी ले हमने के साथ रजा और 2-3 मिनट में रात के 11 बज जाए, 11 बजे सुन बजा सुने रिपल और रात के 12 बजे से कल फजीत के 6 बजे ले नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने के तलों के मुलाकात हुई अब मंगल के रात के मंगल के सांझ के 6:15 पर नई सोच दिनों की आवाज़ रात के 9 बजे ले और फिर रात के 9 से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है। तब मंगल के शाम की मतलब शाम के 6 बजे से रात के 11 बजे ले नई सोच दिलों की आवाज़ और भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है। तब तक हमने की इजाज़त जितना कोई प्रोग्राम में भाग ले रहे हैं तो लोग के फ़ोन कॉल्स करते तो लोग के साथ करते शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भोजपुरी तड़का सुनने खाते प्रताप सिंह और जी प्रताप सिंह से तालु की ओर से सबको की प्यार भरा नमस्ते सलाम शुभ रात्रि सबको की बाय नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गिनेशा का प्यार भरा प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का बड़े प्यार से स्वागत है इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो मोहम्मद रफ़ी जी, लता मंगेशकर, किशोर दा और मुकेश दा के गीतों को दिल से पसंद करते हैं, तो आज का ये प्रोग्राम आपके लिए एक खास तोहफा है। तो चलिए शुरू करते हैं सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर।

पुराने गीतों की बात ही कुछ और होती है, इनमें मोहब्बत है, इनमें जज्बात है और जिंदगी के हर रंग छुपे हुए हैं। तो आज रेडियो मॉरिशस पर हम मिलकर सुनेंगे वो गीत जो हर जनरेशन के दिल में अपनी जगह बना चुके हैं। बिल्कुल जी, सुनहरे पल में कुछ गिने चुने नगमे खासकर हमारे प्यारे म्यूजिक लवर्स के नाम।

हम तो चाहते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सोचे वो जमाना जब कैसेट चलती थी, रेडियो पर गाने रिकॉर्ड किए जाते थे और हर गीत दिल में उतर जाता था। आज सुनहरे पल में हम उसी खूबसूरत दौर को फिर से जिंदा करेंगे, तो साथ बने रहिए और लुफ्त उठाइए इस संगीतमय सफर का, किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आपके प्यार और साथ के बिना ये महफिल अधूरी है। आज फिर हम लेकर आए हैं यादों का, जज्बातों का और सुरों के सजी एक अनोखी महफिल। सुनहरे पल में आपका दिल से तो हमने स्वागत कर लिया, तो चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये अगला नगमा हमारी तरफ से खासकर आपके लिए सुनहरे पल में।

जिंदगी कितनी भी क्यों ना आगे बढ़ जाए मेरी जान, कुछ यादें कभी पुरानी नहीं होती। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमें वापस लेके जाते हैं उन दिनों में जब जिंदगी थोड़ी सी मासूम थी, रिश्ते थोड़े से गहरे थे और खुशियाँ बहुत छोटी छोटी बातों में मिल जाती थी। आज सुनहरे पल में हम उन्हीं यादों को फिर से महसूस करेंगे, तो बस दिल को हल्का कर लीजिए, मुस्कुराइए और चलिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर पर जहाँ पे हर एक गीत हमने कर दी है आपके नाम।

उम्मीद करते हैं कि हर एक गाने को आपने आज दिल से एंजॉय किया। फिलहाल के लिए हमारा तो वक्त हो चला जाने का, आप हमें इजाजत दीजिए, फिर से मिलेंगे एक और सुनहरे पल में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बस ऐसे ही साथ देते रहना ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस
2: चल जाएगी।
3: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूँ शाका।
4: दिल जले, दिल जले और लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

हो रानी, वो मेरी वो दीवानी, रोज खिलाए मुझे चिकन बिरयानी, कभी स्वीट कभी हॉट कभी लगे कोल्ड, अपनी अदा से करे मुझे क्लीन बोर्ड, खुला है उसके लिए दिल का ये गेट, दिन रात उसका ही करता हूँ मैं वेट।

0: धारा इश्क तेरा मस्ती।
1: You're listening RM Free Radio.

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस